ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹ।

ब्रह्म सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रे आए तन देग तेग फतेह बिरद की पैज

ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ

दो ब्राह्मण को कर लावो को ब्रतर ना जाय तो टिक्का तै जप माली तान मले सखाय अंतर पूजा पड़े कते बा

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया 9870 किलोहर्ट्ज़ ते. तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो. प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे. डिटेल्स कुझु निकिता आहिनि. थोरी देरि में तव्हां हमेशा भगत कौरम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तसरो पेश कंदा, पोइ तव्हां प्रोग्राम अॼु जो महिमान प्रोग्राम तहत जनाब दादा धूमराज दुखायल खां शेरो शायरी जो ॿुधंदा. ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं. इन खां प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया. हींअर छो त भगत कौराम साहब खे ॿुधूं.

de zabka ayo lagu matela ga bala

मोहम्मद कलाम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम दिल आकाशवाणी जी सिंधी सरसाए हिंदर पेश है तफसरो भारतीय सरकार जे शहरी जवाज शहरी हवाई यात्रानी वजरात अहमदाबाद खां मंगल लिहारे हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कई इन तरह से यो मुल्क जो टों हवाई अड्डो है जैमें आर्मी मुसाफिर के चिरपर के लिए वाराणसी ए अमृतसर का भारत जो हब एंड स्पोक ढांचो अडियो वो है। इनकी शुरुआत गुजरात के वे वजीर श्री भूपेन्द्र पटेल ए शहरी हवाई यात्रानी वजरात के मरकजी वजीर श्री राम मोहन नायडू एक प्रोग्राम में शरीक थी कर कई। 15 जून 2026 वाराणसी महब एंड स्पोक कार्विंग ऑपरेशन शुरू कई इन तरह से भारत के एविएशन क्षेत्र में एक नव बाब शुरू थो। इन कार्रवाई के हिस्से तौर हब एंड स्पोक कार्विंग अमृतसर में शुरू कई 28 जुलाई 2026 अज अहमदाबाद के जोड़े वो इन तरह से इन डस में एक बो अहम कदम खो है जैसा मुसाफिर बिना कें रुकने के भारत के कें भी इलाके में आलम भर में सफर कर सकन था। हब एंड स्पोक ऑपरेशन्स अहमदाबाद का

हिकु आलमी गांडापे खे मज़बूत कंदा। तंहिंमें फ्लाइट AI-777 मुसाफ़िरनि खे 22 शहरनि सां 22 मर्कज़नि सां ॻंढे थी, ख़ासि तौर से यूरोप, ॾखण ओभर एशिया ऐं विच ओभर में। इन तरह सां AI-1121 सर्विस, जेका शाम जो 8 लॻे हलंदी आहे, सां ॿियनि 17 खेत्रनि ताईं वेंदी, 17 ॿियनि मर्कज़नि ताईं वेंदी, से आहिनि उत्तर अमेरिका, ओभर एशिया, ॾखण ओभर एशिया, ऑस्ट्रेलिया ऐं यूरोप। शहरी हवाई जहाज़रानी वज़ीर श्री राम मोहन नायडू जंहिं ॿुधायो त अहमदाबाद जे मुसाफ़िरनि खे हेल ताईं, जेकॾहिं दिल्लीअ मां पैरिस, टोरंटो या सिडनी वञणो आहे, त पहिरीं 10 उॾाम वठी करे दिल्ली वञणो पवंदो। उते पहुची बि अलॻि सां बुकिंग करणी पवंदी। उते वञी ॿीहर खां लगेज यानी सामान जेको आहे सो खणी वञणो पवंदो। ॿीहर इमिग्रेशन जी लंबी लाइन में एयरपोर्ट ते बीहणो पवंदो ऐं कॾहिं कॾहिं ॻंढींदड़ फ्लाइट मिस पण थी वेंदी, छुटिजी वेंदी। पर हाणे हब एंड स्पोक प्रोग्राम तहत, ऑपरेशन्स तहत, इमिग्रेशन लगेज बैगेज जेको बि आहे सो सभु अहमदाबाद में कार्रवाई पूरी थी वेंदी ऐं बैगेज जेको आहे सॼो हुननि जे आख़िरी हंधि आख़िरी मुक़ाम ताईं पहुची वेंदो, हिननि खे किथे कोई मटाइणो न पवंदो। सरकार जे आलमी एविएशन हब हिकमत अमली पॉलिसी तहत हब एंड स्पोक हिकु ख़ासि कार्रवाई आहे। तंहिं सां भारत साल 2030 ताईं भारतीय मुसाफ़िरनि लाइ हिकु चहीतो एविएशन हब थी पवंदो ऐं आलमी एविएशन मर्कज़ साल 2047 ताईं थी वेंदो। भारत जी हिकमत अमली जोग्राफिकल बीहक ऐं वसीअ एयरपोर्ट जो ढांचो ॻंढापे खे वधीक मज़बूत बणाईंदो। इन ढांचे तहत आलमी मुसाफ़िर पंहिंजी चेकिंस, इमिग्रेशन ऐं न्यू कस्टम जूं फॉर्मेलिटीज़ हवाई भरंदड़ उॾाम ॾे खां ई शुरू करे सघंदा आहिनि, जेको पंहिंजो पाण में हिकु हवाई आलमी हवाई अॾो थींदो। भले पुसंदा उॾाम आलमी उॾाम भले किथां बि थींदी हुजे, हवाई अॾे ते पहुची करे हो सिधी पंहिंजी आलमी उॾाम में वञी सघनि था बिना कंहिं इमिग्रेशन या ॿिए कंहिं कार्रवाई जे या कस्टम कार्रवाई जे। हिते घर जो लगेज सामान पिण सिधो सिधो संदन उॾाम में पहुची वेंदो ऐं जिते लहंदा उते खेनि पंहिंजो सामान मिली वेंदो। श्री नायडू ध्यानु चकंदे चयो त गुज़िरियल साल 1.6 करोड़ मुसाफ़िर अहमदाबाद खां दिल्ली आया ऐं पोए पंहिंजे ॿियनि आलमी उॾामनि तां विया। मोदी चयो त इन जो घणो फ़ाइदो अहमदाबाद जे कपिड़ा, दवान, डायमंड ऐं क़ीमती पथर इंजीनियरिंग खेत्रनि खे पवंदो। हब एंड स्पोक मॉडल जा घणा ई फ़ाइदा पवंदा। इन सां आलमी ॻंढापो टीयर 2 ऐं टीयर 3 शहरनि जो वधंदो, मुसाफ़िरनि खे बहितर आज़मूदो थींदो, बहितर सहूलियतूं मिलंदियूं, हवाई जहाज़नि जूं कारवायूं उॾामूं पिण सहूलियूं थींदियूं ऐं भारतीय एविएशन खेत्र वधीक चटाभेटीदार ऐं सघारो थींदो। इन जो फ़ाइदो फ़क़ति एविएशन खेत्र ताईं कोन आहे पर ॿियनि खेत्रनि खे पवंदो, ख़ासि करे गुजरात जे वापारी क़ौम खे, रवानगी कंदड़नि खे जेके हीरनि जी रवानगी कंदा आहिनि, हैंडीक्राफ्ट जी रवानगी कंदा आहिनि, सीड़पकार, सैलानी, शागिर्द, एतिरे क़दुरु जो आलमी मार्केटनि ऐं मर्कज़नि जो पिण लंघ मज़बूत थींदो। सैर सफ़र वधंदो, इलाइक़े जी माली तरक़ी थींदी, इन तरह सां गुजरात जी पिण तरक़ी थींदी ऐं गुजराती हिकु आलमी ॻाल्हापे वारो सूबो बणिजी पवंदो। हिन वज़रात पारां कयल चकासनि मां ख़बर थी पए त एविएशन मर्कज़ मां लॻभॻ 2.4 मिलियन सिधियूं ऐं अणसिधियूं नौकरियूं पैदा थींदियूं, जंहिं सां भारत जी GDP में साल 2030 ताईं 30 बिलियन अमरीकी डॉलर जो वधीक योगदान थींदो। साल 2047 ताईं इन जो असर जेको आहे सो नतीजे तौर 16 मिलियन सिधियूं अणसिधियूं नौकरियूं मिलंदियूं ऐं इक़्तिसादत में इन जो योगदान पहुची वेंदो 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर। इन मौके ते इंडस्ट्री एसोसिएशन जा, होटल ऐं हॉस्पिटलिटी जा, ट्रेवल पार्टनर्स, सैर सफ़र खेत्र जा AFC ऐं ॿिया घणनि खेत्रनि जा AFC हिते प्रोग्राम में शुमार हुआ। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: ਇਹ ਅਲਾਵਾ ਤਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੀ ਸਿੰਧੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਂਡ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਬੁਧੀ ਸਕਦਾ ਆਯੋ।
1: पेशा प्रोग्राम अदबी को प्रोग्राम सबक अवलचत हुजरत खैल जी आवास में कविता पाठ जैसन
2: दर्द वंदन खां पुछो पुछो दर्द वंदन खां पुछो हिन दर्द जो दारू किथा मिलंदो वैद खां या कै हकीम सुजान सियाणे जे कना मिलंदो किथा मिलंदो दर्द वंदन खां पुछो वैद खां या कंहिं हकीम सुजाण सियाणे जे कना मिलंदो दर्द वारन खां पुछो दर्द वंदन खां पुछो इन दर्द जो दारू किथां मिलंदो साह में सुडको उथे जान में झोरी लॻे जेका साह में सुडको उथे ऐं जान में झोरी लॻे जेका चैन ऐं आराम जे मिलंदो त आख़िर कंहिं वटां मिलंदो साह में सुडको उथे ऐं जान

मिलंदो दाद बे कंहिंखां मिले अहिड़ी न आहे आस काई दाद बे कंहिंखां मिले अहिड़ी न आहे दास का आस का बाक़ी दाद बे कंहिंखां मिले अहिड़ी न आहे आस का बाक़ी जेकॾहिं कुझु आहे मिलणो सो त लाशक पाण मां मिलंदो दर्द वंदन खां पुछो आख बेहद जी सनाख़त करण मुश्किल जीअं ॿिए कंहिं लाइ आहे बेहद जी सनाख़त करण मुश्किल जीअं त ॿिए कंहिं लाइ राज़ ई सारो सलण लाइ राज़ ई सारो सलण लाइ को निरालो राज़दा मिलंदो दर्द वंदन खां पुछो ई दर्द जो दारू किथां मिलंदो ज़ात पंहिंजो पाण खे आहे सफ़ातीअ में छिपायो छो ज़ात पंहिंजो पाण खे आहे सफ़ातीअ में छिपायो छो ही मुंझल सुटको त समुझाए लीअण लाइ अॼु सुभाणे मिलंदो अॼु सुभाणे मिलंदो कॾहिं मिलंदो ऐं किथां मिलंदो।

जहें खयो तो कल जोत रहो, जहें खयो तो कल जोत रहो, तहें के मालिक दो जहां।

शक गुमा कर दूर दिल गुमा कर दूर दिल जा सूर सूहा जे कंदो हलंदे अण पुछो तोखे दुखायल अण पुछो तोखे दुखायल दिल घुरियो सो महरबा मिलंदो वैद खां या कंहिं हकीम सुजाण सियाणे जे कना मिलंदो दर्द वंदन खां पुछो हिन दर्द जो दारू किथां मिलंदो। ॿी रचना पेश आहे आहे आपे में सियापो आहे आपे में सियापो पर जियापो जोग में आहे आपे में।

सी आपो पर जे आपो जोग में मौत को मन जो आथींदो भोग जे विंजो भोग ए विंजोग में आपसी उल्फत के कीड़ो जे लगी कुल्फत संदो आपसी उल्फत के कीड़ो जे लगे कुल्फत संदो रस वने निकरी तबा की छा रखियो आपोग में आए आपे में सी आपो पर जी आपो जोग में जे बुडी वियो हिरस में ही इश्क आमी जो अमीक इश्क आमी जो जे बुडी वियो हिरस में ही इश्क आमी

योग में आग साड़े फाग के पैदा करे पतझड़ छड़े, आग साड़े फाग के पैदा करे

सोग में जो रहन गुरु जी शिकायत समझदार समाज में छो रहन गुरु जी छो रहन गुरु जी शिकायत समझदार समाज में जे जे सजी वर्तन हुजे उन जे सचे सहयोग में छो रहन गुरु जी शिकायत

बचे उपभोग जो उपयोग में आए आपे में सियापो पर जियापो जोग में। एक वधीक रचना है चयो आसाल कन दुनिया सरासर मिसल ख्वाब आहे चयो आसाल कन दुनिया सरासर मिसल ख्वाब आहे असांजी यादगीरन जो लिखियल धुंधलो किताब आहे चयो आसाल कन ॾिसूं पिया था सदाई जे सुवाली राज़ परदे ते

ॾिठो सी को जिते अग हो ॾिठो सी को उते हाणे थो ॾिसजे ॿियो चई सघिबो पुराणे जो नओ निखिरियो शबाब आहे विसारे यादगीरीअ जो विसारो यादगीरीअ जो यादि करणु विसारण जी कोशिश करे विसारो यादगीरीअ जो बि हिकिड़ो रूप ॼणो आहे विसारो यादगीरीअ जो बि हिकिड़ो

बुरा है न आहे, जे भला छाहे कीजे खाल में असबात जो, नफ़ीअ जे खाल में असबात जो वजंदड़ रबाब आहे। मगर आहे ज़रूर आहे न आहे, जे भला छाहे नफ़ीअ जे खाल में असबात जो वजंदड़ रबाब आहे। अगर आवाज़ लाफ़ानी त फ़ानीअ खे न को मतिलब, अगर आवाज़ लाफ़ानी त फ़ानीअ खे न को मतिलब, इन्हीअ मुश्किल मिसाइल जो इहो मुकमल जवाब आहे। जिते जिते कट वंड या कंहिं ज़र

पधरो हिसाब आहे जिते कट वंड जा कहें जर्ब जी काई जरूरत ना दुखायल ही दुनिया अहड़ो सफा पधरो हिसाब आहे चयो आ साल कन दुनिया सरासर मिसल ख्वाब आहे असां जे यादगीरन जो लिखियल धुंधलो किताब आहे आखिरी रचना आहे ॾिसजे थो बेदाद दुनिया में ॾिसजे थो बेदाद हर को पंहिंजे धुन में पूरो केरु ॿुधे फरियाद ॾिसजे थो बेदाद दुनिया में ॾिसजे थो बेदाद हिकिड़ा मेड़नि मालत ॿिया ॾियनि ॿिया ॾिस मानीअ लाइ मुहताज हिकिड़ा मेड़नि मालत ॿिया ॾिस मानीअ लाइ मुहताज पर जे समुझाए तन खे खफ़े थिए थो राज पर जेको समुझाए तन खे

दिसजे थो दुनिया में बेदाद, दुनिया में दिसजे थो बेदाद। हू ॾिस कुर्सीअ में वेठो आहे, हू ॾिस कुर्सीअ में वेठो आहे, पियो थो हुकुम हलाए। हू ॾिस कुर्सीअ में वेठो आहे, पियो थो हुकुम हलाए। कहल कवल कया हुन जे सेवा जा, छॾिया त सभु बदिलाए। हथ त ख़ुशीअ सां वॾे ॾिनासीं, घुरी वरितो बगदाद। दुनिया में ॾिसजे थो बेदाद, बेदाद दुनिया में। शहर कहर जो घर बणजी पिया, ओठ बणिया वेरान। मालिक नौकर बणजी पिया, अॼु बहरूपियुनि जो मान। शहर कर जो घर बणजी पिया, ॻोठ थी विया वीरान। मालिक नौकर बणजी पिया, अॼु बहरूपियुनि जो मान। सभु कुझु

ना अपन रायतो ख्याल का शुरु शर जो समग्री आकाशवाणी जी सिंधी सरस्वती और पेशन खास खास खबरों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ए बेल्जियम जो प्रधानमंत्री पार्ट टे वेवर अज नई दिल्ली में बेतरफियों गालू कंदा भारत रुपये के मजबूत करण के लिए फॉरेक्स स्वैप अरिथान जरिए 136 बिलियन डॉलर कढ़िया नेपाल में ओचितो आयल बोर्ड में मोलन जो तादाद 1250 पहुंची वो है जेतोणीक बजा वारियूं टोलियूं जिंदा बचलन के ॻोल्हण लाइ मशक्कत करे रहियूं आहिनि अहमदाबाद में भारत हुंडई वर्ल्ड और करीब पैरा सीरीज जो पहिरियों भेरो महिमान नवाज़ी करे रहियो आहे ऐं औरतुनि जे क्रिकेट में भारत हांगकांग सां 2020 एशिया कप जेको दुबई में थींदो तंहिंसां सेकेंड ग्रुप ए में मैच में मुक़ाबिलो कंदो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियन प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा

0: राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की कल अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृपया से फिर से सुन लें। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्यभर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरूआत की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bert De Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as the regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived at the national capital last night on a 3-day visit to India. Prime Minister De Wever has been accompanied by Belgian Minister of Defence Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. We have more from a correspondent.
2: India and Belgium share historical ties spanning over 3 centuries. Belgium was among the first European countries to establish diplomatic relations with independent India in September 1947. Belgium is an important economic partner for India in Europe. Bilateral trade reached over $13 billion in 2025-26. Diamond trade, with Antwerp as a major global diamond hub, remains a significant component of bilateral commerce. Belgium is also an important source of investment in India. FDI inflows from Belgium amounted to approximately $4.2 billion between April 2000 and December 2025. Science, technology, and innovation cooperation is an important pillar of the partnership, and India and Belgium have developed cooperation in renewable energy.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 7:10 और पूरे 25 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीत का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शीतल चौहान द्वारा गाए भजन। सबसे पहले मीराबाई की रचना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का, जिसके अंतर्गत आपने सुना शीतल शर्मा द्वारा गाए भजन, शीतल चौहान द्वारा गाए भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस खूबसूरत से भजन को सुनने के बाद आपका मन भी आनंदित हो गया होगा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी दोस्त आरती गौर। कार्यक्रम लेकर आई हूँ गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आप जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और नमस्कार आप सभी का। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, यही मेरी कामना है। और इसी कामना को लेकर मैं आज की इस खूबसूरत सी सुबह में आपके लिए चली आई हूँ। जिंदगी की एक नई सुबह है, नई नई चाय की चुस्की होगी, आपके साथ आपकी दोस्त जुड़ी हुई है और हमेशा की तरह आपके लिए कुछ खास भी लेकर आई हूँ। लेकिन इस खास से मिलने से पहले आइए एक खूबसूरत से गीत की और भी शुरुआत हो जाए। इस गीत को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि बस जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए, प्रेम नगरिया की डगरिया चल चल के।

दोस्तों आज जब रास्ते से मैं आ रही थी तो काफी जगह बहुत सारी सजावट हो रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि कल का दिन क्या है। कल है जन्माष्टमी, हमारे कान्हा जी का जन्मदिन। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कान्हा जी के बारे में ही आज आपसे बात की जाए। कल शायद आपसे मुलाकात ना हो, तो चलिए आज एक किस्सा जो है मैंने कहीं पे पढ़ा था वो मेरे दिमाग में आ गया है, तो उसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि बात बहुत पुरानी है। श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण दिखा जो भगवान कृष्ण का परम भक्त था। वो हर समय कृष्ण का नाम जप करता रहता था, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी यानी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव ये तो आपका सच्चा भक्त है, तो फिर ये इतना दुखी और गरीब क्यों है? आप इसकी मदद कीजिए ना। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन तुम चाहो तो मदद करके देख लो, कर लो। अर्जुन को दया आ गई, उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को एक थैली भर के सोने की अशर्फियां दे दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने घर की तरफ भागा, लेकिन पता है रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में डाकू ने उससे वो थैली छीन ली। ब्राह्मण फिर से वैसे ही गरीब हो गया। इसके बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ साथ में गीत भी तो आएंगे ना।

तो दोस्तों, हम मैं सुना रही थी आपको कृष्ण और अर्जुन की एक दास्तान, एक कहानी। तो उस गरीब ब्राह्मण को जो अर्जुन ने दिया, उसके बावजूद जो ब्राह्मण था वो उसके जो पैसे थे थैली में, जो सोने की सर्फियां थी, वो सब लूट के ले गए डाकू। लेकिन उसके बाद बताया क्या हुआ, अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को दुखी देखा तो उस पर फिर से तरस आया और इस बार अर्जुन ने उसे एक बहुमूल्य जो कीमती रत्न था ना, वो दे दिया। ब्राह्मण घर गया और उसने उस रत्न को एक पुराने घड़े में छिपा दिया ताकि कोई चुरा ना सके। थका हुआ था तो सो गया। दोपहर को उसकी पत्नी नदी से पानी लेने गई और गलती से वही पुराना घड़ा ले गई।

जिसके अंदर उसने वो रत्न छुपाया था। नदी में उसने घड़ा धोया और पता है क्या हुआ, रत्न जो था वो नदी के बहते पानी में चला गया। ब्राह्मण जब जागा और उसने घड़ा गायब देखा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा। उसने कहा कि मैं तो पानी लेने गई थी लेकिन घड़ा तो टूटा हुआ था और पानी भर ही नहीं पाया। अब उसकी पत्नी ने तो बहुत आराम से इस बात को कह दिया, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि इतनी मुश्किल से तो कीमती रत्न मिला था वो भी चला गया, और वो बहुत फिर से दुखी हो गया। उसके बाद क्या हुआ ये कहानी भी आगे बढ़ेगी, लेकिन इस गीत के बाद।

चलिए दोस्तों, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। तो आगे की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि कुछ ही दिनों बाद श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से उसी रास्ते से गुजरते हैं। अर्जुन ब्राह्मण को फिर से दुखी देखता है तो हैरान हो जाता है। कहता है, माधव, मैंने इसकी दो बार मदद की पर इसकी गरीबी तो दूर नहीं हुई। मैंने मुद्राएं दी, मैंने कीमती रत्न दिया, पर फिर भी क्या परेशानी है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, चलो इस बार मैं मदद करता हूँ। तो कृष्ण ने खुद उस ब्राह्मण को दो पैसे दिए। अर्जुन ने कहा, इतने में क्या होगा उसका, इतने में तो उसका कुछ भी गुजारा नहीं होगा। उसने कहा, तुम बस देखो। अर्जुन ने तो मन ही मन सोचा, मैंने सिक्के दिए, कीमती रत्न दिया, तब तो इसका कुछ हुआ नहीं, दो पैसे से क्या ही होगा, भगवान कृष्ण भी कितने कंजूस हैं। इसके बाद जो ब्राह्मण था वो दो पैसे लेके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरा था, वो जाल में फंसी एक छोटी सी मछली को मार रहा है। ब्राह्मण के मन में तो बड़ी दया आ गई। उसने सोचा, दो पैसे से मेरा तो कोई भला होने वाला है नहीं, क्यों ना इस बेजुबान की जान बचा ली जाए। उसने दो पैसे देकर वो मछली खरीद ली और अपने कमंडल के पानी में डाल ली ताकि उसे नदी में छोड़ सके। जैसे ही उसने मछली को कमंडल में डाला, उसके बाद एक जादू हुआ। और वो जादू क्या था वो भी बताएंगे, पहले ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, मैं आपको सुना रही थी कहानी अर्जुन और कृष्णा की। आपको पता है, जब जो वो ब्राह्मण थे, उन्होंने जब कमंडल में पानी में उसको डाल लिया मछली को, और उसे इसलिए लेके चले कि इसे नदी में छोड़ दें, इसकी तो जान बच जाए, मेरा तो पता नहीं क्या होगा। पता है क्या हुआ? मछली के मुंह से वही रत्न बाहर निकल आया जो अर्जुन ने कभी लिया था उन ब्राह्मण को। मतलब ये देखने के बाद ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया, माधव की कृपा से मिल गया। और उसके बाद जब वो ये बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला के खुशी से झूम रहे थे कि मिल गया मिल गया, तो वहां से वही डाकू जिसने सोने की वो मुद्राएं, सोने की वो अशर्फियां चुराई थी, वो गुजर रहा था। डाकू को पता क्या लगा? उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और मिल गया चिल्ला रहा है। डाकू डर गया कि ब्राह्मण तो सबको बुला लेगा तो मेरी हो जाएगी पिटाई। तो उसने तुरंत ब्राह्मण जी के पैर छुए और कहा, भाई अपने जो मुद्राएं हैं वो वापस ले लो, पर मुझे लोगों से मत पिटवाओ, लो रखो। अर्जुन ये सब देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, माधव ये चमत्कार कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन जब तुमने उसे धन दिया तब वो केवल अपने और अपने परिवार के सुख के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसे दो पैसे दिए तो उसने उस थोड़े से पैसे में भी दूसरे के दुख को दूर करने का सोचा। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तो ईश्वर स्वयं आपका भला करता है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, और कृष्ण जी भी हमें यही सिखाना चाहते हैं कि अपने बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन अपने साथ साथ अगर आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचेंगे, उनका भी भला करेंगे, तो आपकी जिंदगी में आपकी तरक्की, आपकी खुशी, आपकी चाहत, आपकी उम्मीदों को कोई रोक नहीं सकता और आप आगे बढ़ते जाएंगे।

तो दोस्तों, मुझे लगता है इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर आएंगे। अब आप अपनों से ज्यादा, मतलब अपने से ज्यादा अपनों के बारे में जरूर सोचेंगे। और जिंदगी में अक्सर यही तो होता है कि हम यही सोचते हैं कि हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, बस हम उसी के बारे में जोड़ घटाना करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम अपनी हथेली दूसरों की मदद के लिए फैलाते हैं तो ऊपर वाला हमारी झोली खुशियों से भर देता है। और जिसने इस बात को समझ लिया उसकी जिंदगी में खुशियों को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर आप अपने दिल को भी खुश कर सकते हैं। करके देखिएगा जरूर।

0: दोस्तों अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन इस कहानी के जरिए बहुत कुछ सीखने का जो मुझे भी मौका मिला और मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएंगे, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके दिल में भी दूसरों के लिए दया की भावना और आप दूसरों के लिए अच्छा सोचने की भावना ले आते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और कहते हैं कि कान्हा जी से अच्छा गुरु तो कोई हो नहीं सकता। सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर ही वही कहलाए थे, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था जो आज तक हम सबके काम आ रहा है। तो उनकी छोटी छोटी कहानियों में भी काफी सारा ज्ञान होता है जो हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है, अगर हम उस कहानियों को दिल से सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि समझें और अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करें। फिलहाल चलते हैं, और कहते हैं कि कृष्णा जी राधे के बिना हमेशा अधूरे रहते हैं, और उनका नाम लिए बिना कृष्ण जी का नाम अधूरा सा फील होता है। तो हम भी चलते चलते राधे जी के साथ कृष्ण जी को करते हैं याद और आपसे लेते हैं विदा इस कार्यक्रम से, ये तो भरी गुड मॉर्निंग से। अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: गोकुल की राधा चली, चली गोकुल की राधा चली, चली चली चली गोकुल की राधा चली करके।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू

0: के सभी पहलुओं और आपस हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेबर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
6: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा साली

0: रेहान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
1: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल सीबीआई को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्यभर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
3: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रूपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगरही, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त

0: नरेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी, गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्तप्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़िया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है, ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart Bart de Wever in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and call for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and developing clear criteria and SOPs for desilting. On dam safety, Mr. Modi stress rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions, and creating awareness among school students, including through

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकाकार से सीखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमनसब बार्ट दे वेवर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर एक माइनस कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आबादी में इजाफे और मुस्तकबिल में पानी की जरूरियात समेत शहरकारी से पैदा होने वाले चैलेंजेस के बारे में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों को हसास और बाखबर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर मुनक्किद करने की तजवीज दी। जनाब मोदी ने कल जल शक्ति की वजारत के जेर एहतमाम पानी के मौजू पर मुनक्किदा दो रोजा कौमी महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन की सदारत की। उन्होंने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तौर तरीकों से आगाही फराहम करने के लिए खसूसी नुमाइशों और वर्कशॉप्स के इनेकाद की भी तजवीज पेश की ताकि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और शराकतदार पानी के मुअसर इस्तेमाल के लिए बेहतर हल तैयार करके उन्हें बड़े पैमाने पर नाफिज कर सकें। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि इजलास से सामने आने वाले काबिल अमल और मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाने वाले निकात पर मुसलसल जायजे और सीखने के अमल के जरिए अमल दरामद किया जाना चाहिए।

0: करने से मुतालिक दर्जाबंदी को एक दर्जा बढ़ाकर बीबीए प्लस से ए माइनस कर दिया है। जेसीआर ने भारत की कंट्री सीलिंग को भी एक दर्जा बढ़ाकर ए कर दिया है। वजारत खजाना ने कहा कि दर्जाबंदी बढ़ाए जाने से भारत की मजबूत मुआशी तरक्की, तरक्की की बुनियाद को मजबूत करने से मुतालिक मुआशी पॉलिसियों की इफादियत और मुआशी निजाम की बेहतर हालत की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ारत खजाना ने कहा है कि दर्जाबंदी से मुतालिक यह इजाफा चैलेंजिंग आलमी सूरतेहाल के तनाजुर में पेश आया है और इससे पायदार तरक्की, मुअस्सर मुआशी पॉलिसियों, बेहतर मुआशी मेयार और एक मजबूत तर मुआशी निजाम के जरिए भारत की मुसलसल मजबूत होती मुआशी बुनियाद की अक्कासी होती है। एक बयान में जेसीआर ने कहा कि भारतीय मईशत ने बढ़ती निजी खपत और अवामी सरमायाकारी के जरिए ऊंची शरह तरक्की को कायम रखा है। एजेंसी ने यह भी उजागर किया कि भारतीय हुकूमत ने डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और अशिया और खिदमत टैक्स के नफाज समेत मुसलसल पॉलिसियां नाफिज की हैं जिनसे भारत की मुआशी बुनियाद मजबूत हुई है। जेसीआर ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत का मुआशी खसारा मुआशी साल 2025 में 4.7% से कम होकर मुआशी साल 2026 में 4.4% रहा। आकाशवाणी न्यूज से जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मुजाफाती इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हो गई थी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दिशा सालियान मौत के मामले में जस्टिस सारंग वी कोतवाल और जस्टिस रंजीत सिन्हा आर भोसले पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कल उनके वालिद सतीश सालियान की तरफ से दाखिल करदा शिकायत की बुनियाद पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी। अदालत ने मजीद वाजे किया कि एफआईआर दर्ज करने की हिदायत का मतलब यह नहीं है कि किसी के खिलाफ जुर्म साबित हो गया है। बेंच ने कहा कि किसी भी शख्स को उस वक्त तक मुलजिम नहीं समझा जाएगा जब तक तफ्तीशी अफसर की राय में तफ्तीश के दौरान जमा किए गए शवाहिद की बुनियाद पर उस शख्स के खिलाफ माकूल शुबा पैदा करने के लिए काफी वजूहात मौजूद न हों। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उत्तर प्रदेश में आज से इस माह की 17 तारीख तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक खसूसी एचपीवी टीकाकारी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। यह मुहिम रियासत के तमाम 75 अजला में मुनद की जाएगी। 14 साल की उम्र के ग्रुप में शामिल तकरीबन 10 लाख अहल नौ उम्र लड़कियों को इस मुहिम के तहत एचपीवी वैक्सीन लगाने का निशाना रखा गया है। लखनऊ के आला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एनबी सिंह ने अहल लड़कियों और उनके वालिदैन से अपील की है कि वो आगे आएं और मुहिम के दौरान वैक्सीन लगवाएं। एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक अहम हिफाजती इकदाम है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1250 हो गई है। इमदादी कारकुन बारिश और मलबे का मुकाबला करते हुए उन अफराद को तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में ख्याल है कि वो भोटेकोशी दरिया के रास्ते में मौजूद सुरंगों और नेपाल में जेर जमीन बिजली घरों में फंसे हुए हैं। वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा कि आलमी बिरादरी के सामने इस कुदरती आफत के आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक को भरपूर अंदाज में उठाया जाना चाहिए। इस दौरान पिछले हफ्ते आने वाले सैलाब के बाद लापता मकामी अफराद के अहले खाना ने अलामती तौर पर उनकी आखिरी रसूम अदा की। लापता अफराद में 583 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों जिनमें नेपाल की फौज भी शामिल है कि मुश्तरका फोर्सेस ने अब तक हेलीकॉप्टरों और जमीनी रास्तों के जरिए 11,993 अफराद को बचाया है। तलाश और बचाव कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 21,314 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब चीन की जानिब नेपाल की सरहद के करीब तिब्बत के गिरोंग काउंटी में आने वाले सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है जबकि 541 अफराद अब भी लापता हैं। शिमाली ओडिशा में सैलाब का नया खतरा पैदा हो गया है क्योंकि बालासोर जिले में सुबर्ण रेखा नदी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। राजघाट के मकाम पर दरिया का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। झारखंड में वाक गरुडीह बैराज से पानी छोड़े जाने के बायस नदी के निचले हिस्से में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया है। محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. بعض اضلاع میں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے. آج مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے. جبل پور، ریوا، شہڈول اور ساگر میں بارش ہو سکتی ہے. بھوپال، گوالیئر، چمبل اور نرمدا پورم ڈویژن کے بعض علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے.

0: इसके अलावा मंडला में मुसलसल बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। खवातीन के क्रिकेट में आज यूएई में दुबई बैनुल अख्वामी स्टेडियम में 2020 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप ए के दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगी। मस्कूरा मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इतवार के रोज खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड के खिलाफ 94 रन की बड़ी जीत से अपनी मुहिम का आगाज किया था। अगर भारतीय टीम हांगकांग के खिलाफ आज मैच में जीत हासिल करती है तो वो 8 टीमों पर मुश्तमिल मौजूदा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सेशन के पार्लियामानी वफद के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बातचीत को नुमाया किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और सेशेल्स के ताल्लुकात सफारतकारी की रवायती सरहदों से बालातर हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी रिश्ते हैं। इसी अखबार की एक और अहम खबर है, इको टूरिज्म के मौके पर मुनक्किदा इफ्तिताही वर्कशॉप से खिताब करते हुए मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि शहरों के तहफ्फुज़ को मुकामी बिरादरियों के रोजगार और पायदार समाजी इक्तसादी तरक्की से जोड़ा जाना चाहिए। ब्रिक्स इजलास के हवाले से रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, ब्रिक्स इजलास की तैयारियां तेज, दिल्ली में कारों के काफिले की रिहर्सल, ये इजलास भारत मंडपम में 11 से 13 सितम्बर को होगा।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज़ को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीक़ाकार से सीखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हममनसब बार्ट दे फेवर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शोडाउन स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरी 10 सेकंड। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे मनोज कुमार शर्मा द्वारा बजाये संतूर वादन का, राग रहेगा तोड़ी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना मनोज कुमार शर्मा द्वारा संतूर वादन, राग था तोड़ी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो समस्याओं को हल करने, पैटर्न पहचानने और फैसले लेने के लिए इंसानी बुद्धिमत्ता की नकल करता है। पहले से तय और सख्त नियमों का पालन करने के बजाय AI सिस्टम बहुत सारे डेटा से सीखते हैं और समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाकर, कामकाज को आसान बनाकर और अकेले या छोटे बिजनेस को बड़ा करके एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देता है। ये बाजार में उतरने की पारंपरिक रुकावटों को कम करता है, जिससे छोटी टीमें भी वैसे ही ग्रोथ और क्षमता हासिल कर पाती है जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए मुमकिन थी। स्टार्टअप, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता समन्वय, इसके बारे में जानने के लिए सुनते हैं नागेंद्र रॉय और दिलीप झा की ये बातचीत।
3: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इस पत्रिका कार्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई बातें, नई नई जानकारियां नए विशेषज्ञों द्वारा पहुंचाते रहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि वे उन जानकारियों से लाभान्वित हों और अपने आसपास के लोगों को भी उसका लाभ दें। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो हमारी पत्रिका का बहुत ही रिलीवेंट विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी ध्यान दिया गया है, के सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप विकसित हुए हैं। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में जो उपस्थित विशेषज्ञ हैं, वे बैंकिंग, फिनटेक, सरकारी संस्थानों, शिक्षा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं इसमें इनका एक विस्तृत अनुभव है, नेतृत्व का भी अनुभव रहा है और उन्होंने अपने नेतृत्व से डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या भविष्य की जो तकनीक है, किस तरह से उसका लाभ उठाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अन्य लोग कैसे उठा सकते हैं, उनके क्या सुझाव होंगे, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नागेंद्र राय जी। नागेंद्र राय जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप आफ्टर एजुकेशन जो एक प्रोफेशन में आए और अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं अमेरिका में, तो ये परिवर्तन आपने कैसे किया, ये विचार इस यात्रा के लिए कैसे आया आपके मन में?
4: बहुत सेंसिटिव प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है मेरी। मैंने जब हमारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मैंने उदयपुर में ली और कॉलेज भी वहीं से पढ़ाई की है। जब हम वहां पढ़ रहे थे तो उस समय इंटरनेट की उपलब्धता नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब हम IT फील्ड में आए तो हमारे को उसकी एक्सप्लोरेशन भी करना पड़ा, उसमें जाना भी पड़ा, समझना भी पड़ा, वो सब हमने काम किया। लेकिन तब तक हमारे दिमाग में ये भी बात नहीं थी कि हम ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर बनेंगे या स्टार्टअप खोलेंगे। लेकिन जब इस दौरान हमने कई संस्थाओं में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम किया, तो इंस्पिरेशन आया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं जो कि दुनिया में वैल्यूएबल होगा, जिससे हम कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकेंगे। वो दिमाग में रखते हुए एक कंपनी की स्थापना की हमने 2019 में, और उसी वर्ष कोविड भी आ गए थे, कोरोना काल चालू हो गया था। लेकिन हमारे जो सहकार्यकर्ता हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन सब ने मिलके उस पे विचार किया, उसको इस तरीके से चलाया कि हम हार न माने और आगे बढ़ते रहें। तो एक जो सजेशंस या रिकमेंडेशन जो होगी कि एंटरप्रेन्योर्स शुरू के 3 साल तक अगर उनको कोई सफलता नहीं मिल जाती है तो वो हार मान लेते हैं। नेवर गिव अप वाला माइंडसेट हमेशा होना चाहिए किसी भी स्टार्टअप को जो रखते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल चैलेंज हो सकते हैं, बिजनेस चैलेंज हो सकते हैं, एक्सटर्नल जो आपके फैक्टर्स हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वॉर सिचुएशंस हो, उनमें ये चैलेंजेस आते हैं। लेकिन उनसे ऊपर निकलना और आगे बढ़ना, वही एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी भी होती है और स्किल भी होती है।
3: बहुत अच्छा, आपने एक स्किल की चर्चा की। स्किल डेवलपमेंट जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा मिशन है भारत सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं युवाओं को जब भी संबोधित करते हैं कि आप रोजगार ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनिए। निश्चित रूप से वो तभी हो सकता है जब लोग अपना एक कंपनी चलाए, अपना स्टार्टअप शुरू करें। इसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो है कई तरह के आर्थिक सहयोग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। आजकल जो है विश्वविद्यालयों में भी इसकी सुविधा दी गई है कि पढ़ते हुए वो किस तरह से एक बिजनेस मैनेजमेंट की ओर जाए, तभी जो है हमारा विकसित भारत का जो स्वप्न है 2047 का वो पूरा होगा जब आर्थिक रूप से ये समृद्ध होगा। आपने बताया कि आप किस तरह से कंपनी फाउंडर के रूप में आगे आए, तो आपकी जो ये कंपनी है क्या है और ये अन्य तरह की कई सारी कंपनियां कार्य करती हैं, चाहे कंसल्टिंग हो या किसी और क्षेत्र में, तो ये किस तरह अन्य से अलग है?
4: ग्लोबल विजन को लेकर हम 2019 में चालू हुए थे और आज चार देशों में अपना काम कर रहे हैं। जिस समय हमने कंपनी की स्थापना की उस समय थोड़ा ग्लोबल अनस्टेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल, लेकिन नेवर गिव अप, जो हम कभी हार नहीं मानेंगे, वो मानसिकता हमने रखी। दूसरा, हमने शुरू से एक पार्टनर जो कोलैबोरेशन वाली जो मानसिकता होती है, जो बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ के या जो पहले से मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके साथ बात करके अपना वैल्यू कहां हम दिखा सकते हैं, कैसे वो जो काम जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर सकें और क्वालिटी के साथ कर सकें, वो एक सक्सेस मंत्र आप बोल सकते हैं कि हम उस मानसिकता को लेकर आगे चले और हमने अपनी निरंतरता को बनाए रखा, प्रयासों में कभी कमी नहीं की और सही टैलेंट है उसको हमने अवसर दिया। और जैसा मोदी जी ने भी कहा है कि इंडिया इज अ टैलेंट फैक्ट्री, तो उस टैलेंट फैक्ट्री को समझना और उसको अपने परिवेश में लेके आना और काम करना, वो एक चीज है जो हम सबको समझनी चाहिए, जो धीरे धीरे आती है, समय पर ही आती है।
3: निश्चित रूप से, और ये जो टैलेंट फैक्ट्री है वो निश्चित रूप से इसीलिए कहा गया होगा कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों ने इस देश से बाहर जाके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और हम कह सकते हैं कि आप एक वैश्विक बिजनेस और टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में आपने स्थापित किया है अपनी मेहनत से। एक हम इसमें ये जानना चाहेंगे, आप अपनी कंपनी के संस्थापक CEO हैं, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट होता है, फिर उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, फिर उसके लिए जो ऑफिस होता है प्राय वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का होता है
4: जी।
3: लेकिन उससे आगे फील्ड पे जाकर इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर जाए, ग्राउंड टू वर्क काम करे, इसको लेके आप किस तरह की अपनी नीति बनाते हैं या किस तरह की नीति बनानी चाहिए?
4: मेरा जो मुख्य रोल है मेरी कंपनी में वो वही है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को अगर चालू करूं या मैं किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूं हमारे क्लाइंट के लिए, तो उसका जो प्रभाव है वो एक एक उसका जो यूजर है जो उसको प्रयोग में लेके आएगा उस प्रोजेक्ट का या उस प्रोडक्ट का, उसके पास क्या इम्पैक्ट जा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारी गणित वहां से चालू करेंगे और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझेंगे तो हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाने की डेफिनेशन प्रोजेक्ट को खत्म करना नहीं है, उस प्रोजेक्ट के प्रभाव कहां कहां पहुंचा और वो किस रूप में पहुंचा, अगर उसका मेजरमेंट हम कर पाए तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल मान सकते हैं। हमारे टर्म में बोलते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स,
3: PMO यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस
4: जी,
3: उसका किस तरह से सक्रिय रोल होना चाहिए और हो रहा है
4: जी।
3: ये आपने बताया। आजकल तकनीक बदल रही है, खास करके हर जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है
4: जी।
3: भारत सरकार ने भी इनोवेशन पे ज्यादा फोकस किया है, तकनीक और नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, ये सारी चीजें किस तरह से एक प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं?
4: बिल्कुल, हेल्प भी कर रहे हैं और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं, उसकी स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें उसी समय में एक बात और ध्यान रखना है कि ये उस चीज का

0: नेगेटिव इफेक्ट भी आपके प्रोजेक्ट पे आ सकता है, वो आपके टैलेंट पे भी आ सकता है। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको कोई भय तो नहीं है कि भाई नवाचार हो जाएगा या कुछ इनोवेशन हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी या हमारा काम कोई और करने लग जाएगा, ये भय निकालना पड़ेगा। बनिस्पत इसके हमारे को क्या करना चाहिए कि हमको वो सीखना चाहिए। अगर हम उस चीज को सीख लेंगे तो हम उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और हमारी रिलीवेंस बढ़ जाएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम इनोवेशन और एक्सीलेंस लेके आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छी बात है पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वहीं से इनोवेशन का प्रादुर्भाव होगा।
1: उद्यमिता को बढ़ाने के लिए या युवाओं को और से और अधिक अवसर मिलने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है भविष्य की और तकनीक क्या आ सकती है इस क्षेत्र में मदद करने के लिए?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा एक काल चालू हुआ है, ये काफी समय से चल रहा है। 2017 में मैंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इसको डेमो किया था कि इसको हम कैसे यूज में लेके आ सकते हैं। लेकिन जहां तक इसका प्रभाव है या आगे की इसकी जो नई टेक्नोलॉजी आ सकती है वो बहुत ही विस्तृत है, इसका स्वरूप बहुत विशाल है, विराट है, और वो पूरे विश्व में एक समान रूप से बढ़ रहा है। और जहां टैलेंट है वहां पे ये बहुत त्वरित गति से बढ़ रहा है, क्योंकि उसको यूज करने वाला ज्यादा है, उनको प्रयोग में लाने वाले ज्यादा है। तो उस सारी डायनेमिक्स को समझने के लिए या समझते हुए हमें अपने आप को उससे एक्वेंटेड करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में इसको डालना पड़ेगा कि ये एक कोई ऑप्शनल विषय नहीं रह गया है, ये हमारे को छोटी कक्षाओं से लेके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस सब में इसको पढ़ाना पड़ेगा, जो आज चालू हो गया है। अभी मैं IIM में भी पढ़ा के आया ये बात, और सारी जो इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें इस तरीके के कोर्सेज प्रारंभ कर दिए गए हैं।
1: आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता है, बहुत सारी चीजें जो है वो शुरुआती दौर के बाद आगे नहीं बढ़ पाती है, आपको क्या लगता है कि असफलता को किस तरह से सफलता में बदला जा सकता है, उस असफलता के कारण क्या है, क्या आर्थिक कारण होते हैं, तकनीकी कारण होते हैं, या व्यक्ति जिसने शुरू किया है संस्था ने उसमें विल की कमी हो जाती है?
0: जब मैंने अपना करियर चालू किया था तब से ही एक बात सीखी थी, वो मैं बार बार बोलता भी हूँ और उसको अपने जीवन में उतारा भी है। वो ये है, इंग्लिश में उसका कोटेशन है कि यू डोंट वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स, यू वांट टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। नए नए तरीके के कार्य करने की जरूरत भी नहीं होती, हमें उसी कार्य को नए तरीके से करने की आवश्यकता है। अगर किसी को सफलता नहीं मिली है तो धैर्य की परम आवश्यकता रहती है, और जो हम काम नहीं मिल रहे हैं उस असफलता के पीछे कारण क्या है अगर उनको हम जान पाएंगे तो फिर हम उसके हिसाब से अपना प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसको हम असफलता को सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। और उसके लिए एक प्रमुख, और जो अभी गुरु पूर्णिमा थी 2 दिवस पहले, तो विश्व में उसकी बहुत महत्ता है, मेरे जीवन में प्रमुख रूप से मैं बहुत मानता हूँ कि हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं, और वो गुरु आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं और कहीं भी मिल सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप गुरु बनाओगे तभी वो गुरु बनेंगे, आपके लिए मेंटर कोई भी हो सकता है, और मेंटर होना अच्छी बात है, और अलग अलग क्षेत्रों में आपके एक साथ 10 मेंटर भी हो सकते हैं जिनके पास आप जाके बात करो। तो मेंटरशिप मिलेगी, आपका माइंडसेट चलेगा, आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होगा, आप अपने कार्य में बदलाव लाएंगे, तो असफलता को सफलता में लाया जा सकता है।
1: किसी संगठन के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नीतियों के सहयोग की या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, गवर्नेंस की जिसको हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है नवाचार के साथ कंपनियों के विस्तार के लिए गुड गवर्नेंस कितना महत्वपूर्ण होता है, और आपने जहां ये एस्टेब्लिश किया है उसका अनुभव कैसा है?
0: बिना गवर्नेंस के कोई भी आप प्रोजेक्ट या एक्टिविटी या इनिशिएटिव आप चलाते हैं वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और अगर हम उस गवर्नेंस को सही तरीके से उस इकोसिस्टम में फॉलो कर पाए तो उसकी सफलता सिद्ध होती है। तो नीतियां होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, और वो अपने एक अनुशासन लेके आता है, वही चीजें हमारे जीवन में अनुशासन लेके आती है, और वो प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो नीति का होना, पॉलिसीज का होना, गवर्नेंस का होना, डिसिप्लिन का होना, स्टैंडर्ड्स का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने शरीर में विटामिन का होना आवश्यक है।
1: आप टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ भी हैं और बिजनेस में भी विशेषज्ञ हैं, 2019 में बताया कि आपने कंपनी एस्टेब्लिश किया है, आपने एक किताब लिखी है PMO रिवाइड, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को किस तरह से आप नए सिरे से एक विस्तार दे सकते हैं या आपस में जोड़ के रख सकते हैं
0: जी।
1: ये इसका शाब्दिक अर्थ है
0: जी।
1: इसके बारे में हमें बताइए कि इसकी मूल भावना क्या है और कैसे आपको ये प्रेरणा मिली लिखने की।
0: तो अगर मैं उसको एक उदाहरण के द्वारा अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता था तो हम किस तरीके से सोचते थे कि उसका जो नींव रखी जाएगी उसके ऊपर कैसे आर्किटेक्चर बनेगा, वो सारी चीजें। अब आज के परिवेश में अगर आप टेक्नोलॉजी को उसके अंदर मिक्स करके देखते हैं तो

0: हमारे को कई तरीके की संभावनाएं नजर आती है कि मैं इस बिल्डिंग को इस छोटी सी जगह में इस तरीके से भी बना सकता हूँ या अलग तरीके से भी बना सकता हूँ। तो वो जो इनोवेशन है, वो जो रिवायर अपन जो सोच रहे हैं, वो सिमिलरली वो अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में। पहले ऐसे होता था कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, 10 प्रोजेक्ट मैनेजर एक पीएमओ डिपार्टमेंट में है, वो अपना अपना काम करेंगे, इस तरीके से करेंगे, उसे करेंगे। लेकिन उसी पीएमओ ऑफिस को अगर हम मॉडर्न बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करना चाहते हैं, जो लिगेसी सिस्टम है उसके ऊपर हम एडवांसमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे को उसको रीवायर करना पड़ेगा। और वो रीवायर करने के लिए ही मैंने ये पीएमओ रीवायर्ड किताब लिखी है, जिसमें मैंने दुनिया के 28 विशेषज्ञों को शामिल किया है। उनके जो पर्सपेक्टिव हैं, उनके जो विचार हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को मैंने उसमें अंदर डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, जो पूरी दुनिया में अच्छी तरह से प्राप्त हुई है।
1: बहुत अच्छा, आपने पीएमओ रीवायर्ड की चर्चा की कि किस तरह से वो आपके प्रोजेक्ट को, मैनेजमेंट के ऑफिस को रीवायर्ड किया जा सकता है। नागेंद्र राय जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने उद्यमिता, विकास, जो वर्तमान की तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन और जो इनोवेशन है, वो किस तरह से इस क्षेत्र में कंपनियों के विस्तार में, रोजगार के अवसरों में बढ़ावा दे रहा है। आकाशवाणी आने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्टार्टअप, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता समन्वय, अभी आप इस विषय पर नागेंद्र रॉय और दिलीप झा की ये बातचीत सुन रहे थे। और इसी के साथ आज का उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का था और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: उद्योग पत्रिका
4: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात

आइए नजर डालें इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। उससे थोड़ी ही देर के बाद सुबगाही प्रोग्राम होगा। आज आप सुनेंगे नाते रसूल पाक। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम नशर किया जाएगा। 9:50 पर खबरें होंगी और 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर उसके गजल प्रोग्राम में

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम सुबह का ही
1: एक नात पेश खिदमत है।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुबुगाही, नाते रसूल करीम पेश कर रहे थे जनाब सरफराज अहमद फराज दहलवी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप समाप्त कर रहे हैं। अब वो पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।

और अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं 3 सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1875 में ब्रिटिश द्वारा पेश किए जाने के बाद पोलो का पहला आधिकारिक खेल अर्जेंटीना में खेला गया था और 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी प्रयोगशाला में दुनिया की पहली प्रभावी एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की क्रांतिकारी खोज की थी, जिसने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को हमेशा के लिए बदल दिया। और 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के 2 दिन बाद ब्रिटेन फ्रांस ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान आज ही के दिन किया था। 1971 में कतर ने 55 वर्षों के ब्रिटिश प्रशासनिक संरक्षण के बाद आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बनने की घोषणा की थी। और अब हम याद करते हैं उन महान लोगों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। हम स्मरण कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे पुरोधा को जो उस वाद्य के पर्याय बन गए जिस पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वो महान संगीतज्ञ हैं, तबले की थाप से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाले देश के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज। काशी में 3 सितंबर 1923 को एक संगीतज्ञ परिवार में कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात को जन्म होने के कारण उनका नाम किशन पड़ा। पंडित किशन महाराज बनारस घराने के वादक थे। तबले के जादूगर होने के साथ पंडित किशन महाराज मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष तथा विद्वान भी थे। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में पिता पंडित हरि महाराज से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पाई। उनके तबला वादन में ठेके में एक भराव था और दाएं तथा बाएं तबले का संवाद श्रोताओं और दर्शकों को भाव विभोर कर देता था। बैकग्राउंड में आप उन्हीं का तबला वादन सुन रहे हैं। पंडित जी ने कई फिल्मों को अपने संगीत से समृद्ध किया।

और अगर पुरस्कार की बात करें तो पंडित किशन महाराज को कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया, जिनमें लय भास्कर, संगीत सम्राट, काशी स्वरगंगा सम्मान और संगीत नाटक अकादमी प्रमुख है। 1973 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। हिंदी और बांग्ला फिल्मों के जाने माने अभिनेता उत्तम कुमार की भी आज जयंती है। उनका वास्तविक नाम था अरुण कुमार चटर्जी। अभिनेता उत्तम कुमार की बतौर नायक पहली फिल्म दृष्टिदान थी। उत्तम कुमार ने फिल्म निर्देशक, निर्माता, गायक और संगीतकार के रूप में भी सिनेमा को अपनी सीमाएं दी। उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई और बंगाली सिनेमा में उत्तम कुमार को महानायक कहा जाता है। उत्तम कुमार की प्रमुख फिल्मों की अगर हम बात करें हिंदी फिल्मों की, तो छोटी सी मुलाकात, अमानुष, आनंद आश्रम, किताब, दूरियां जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इसमें पहले सुनते हैं आनंद आश्रम फिल्म का ये गाना।

और हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में प्यारेलाल जी का भी आज जन्मदिन है। हमारी तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।

उनका वास्तविक नाम था, पूरा नाम था एक है प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। उनके पिता पंडित रामप्रसाद जी ट्रम्पेट वादक थे और चाहते थे कि प्यारेलाल वायलिन सीखें। एक बार पंडित जी उन्हें लता मंगेशकर के घर ले गए और लता जी को प्यारेलाल का वायलिन वादन इतना पसंद आया कि उन्होंने प्यारेलाल को उस समय 500 रुपए दिए थे। उस समय वो बड़ा पैसा हुआ करता था जी। और वायलिन के साधक प्यारेलाल को मुंबई स्थित रंजीत स्टूडियो में बाद में ऑर्केस्ट्रा में काम करने का अवसर मिला और कुछ समय बाद उनकी मुलाकात हुई लक्ष्मीकांत से।

जब दो प्रतिभाएं जब एक हुई तो हिंदी सिनेमा को बेहतरीन संगीत की सौगात मिली। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुदम्मार से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकेकार से सीखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हम मनसब बार्ट डी वेबर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहदाती सैटेलाइट ईओएस 05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए माइनस कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबादी में इजाफे और मुस्तकबिल में पानी की जरूरियात समेत शहरकारी से पैदा होने वाले चैलेंजों के बारे में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों को हसास और बाखबर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर मुनक़िद करने की तजवीज़ दी। जनाब मोदी ने कल जल शक्ति की वजारत के ज़ेर एहतमाम पानी के मौजू पर मुनाक़िदा दो रोज़ा कौमी महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन की सदारत की। उन्होंने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तौर तरीकों से आगाही फराहम करने के लिए खसूसी नुमाइशों और वर्कशॉप्स के इनेकाद की भी तजवीज पेश की ताकि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और शराकतदार पानी के मौसर इस्तेमाल के लिए बेहतर हल तैयार करके उन्हें बड़े पैमाने पर नाफिज कर सकें। वज़ीर आज़म मोदी ने जोर दिया कि इजलास से सामने आने वाले काबिल अमल और मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाने वाले इनेकाद पर मुसलसल जायजे और सीखने के अमल के जरिए अमल दरामद किया जाना चाहिए। दो रोजा तफसीली मुशावरत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास सिर्फ एक मरतबा की सरगर्मी बनकर न रह जाए बल्कि इसके फैसलों और इकदाम का मुसलसल जायजा लिया जाना चाहिए। जन भागीदारी की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने लोगों में पानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने के लिए जल उत्सव को फरोग देने की तजवीज दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के वज़ीर आज़म बार्ट डी वेबर आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी ख्यालात का तबादला करेंगे। बेल्जियम के वज़ीर आज़म कल रात भारत के तीन रोजा दौरे पर राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आज़म डी वेबर के हमराह बेल्जियम के वज़ीर दफा थियो फ्रैंकेन भी हैं। पिछले साल फरवरी में वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है।

मुअज्जिज़ मेहमान कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई के एक कारोबारी प्रोग्राम से भी कलीदी खिताब करेंगे। ये प्रोग्राम भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहदे के तनाजुर में मुनाकिद किया जा रहा है। हमारे नामनगार ने खबर दी है कि उनका यह दौरा भारत और बेल्जियम की शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने और तजारत और सरमाकारी दिफा सिक्योरिटी और काबिल तजीद तवानाई समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को उसर देने का मौका फराहम करेगा। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि जमीन का मुशाहदा करने वाले सैटेलाइट EOS-05 को कल खला में रवाना किया जाएगा। ये सैटेलाइट GSLV-F17 रॉकेट के जरिए कल रात 2:55 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से खला में भेजा जाएगा। जनाब नारायण ने कहा कि यह जदीद तरीन अर्जियाती मुशाहदाती सैटेलाइट है और यह भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे जियोसिंक्रोमियस मदार में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन से भारत के अर्जियाती मुशाहदे की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा और अर्जियाती मुशाहदाती खिदमात की फराहमी बेहतर होगी। इसरो के चेयरमैन ने यह बात कल तिरुमाला में वाक श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। इससे पहले जनाब नारायणन ने GSLV-F17 रॉकेट के मॉडल को भगवान वेंकटेश्वर के कदमों में रखा। उन्होंने कहा कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जापान के कर्जे की दर्जाबंदी करने से मुतालिक एजेंसी JCR ने भारत की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी और मकामी करेंसी जारी करने से मुतालिक दर्जाबंदी को एक दर्जा बढ़ाकर BBA+ से A- कर दिया है। JCR ने भारत की कंट्री सीलिंग को भी एक दर्जा बढ़ाकर A कर दिया है। वजारत खजाना ने कहा कि दर्जाबंदी बढ़ाए जाने से भारत की मजबूत माशी तरक्की की बुनियाद को मजबूत करने से मुतालिक इक्तसादी पॉलिसियों की इफादियत और माशी निजाम की बेहतर हालत की अक्कासी होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मजाफात इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हो गई थी। उत्तर प्रदेश में आज से इस माह की 17 तारीख तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए खसूसी HPV टीकाकारी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। यह मुहिम रियासत के तमाम 75 जिलों में मुनाकिद की जाएगी। 14 साल की उम्र के ग्रुप में शामिल तकरीबन 10 लाख अहल नौ उम्र लड़कियों को इस मुहिम के तहत HPV वैक्सीन लगाने का निशाना रखा गया है। लखनऊ के आला मेडिकल ऑफिसर डॉ NB सिंह ने अहल लड़कियों और उनके वालिदैन से अपील की है कि वह आगे आएं और मुहिम के दौरान वैक्सीन लगवाएं। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अहम हिफाजती इकदाम है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1250 हो गई है। इमदादी कारकुन बारिश और मलबे का मुकाबला करते हुए उन अफराद को तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में ख्याल है कि वो भोते कोशी दरिया के रास्ते में मौजूद सुरंगों और नेपाल में जेर जमीन बिजली घरों में फंसे हुए हैं। वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा कि आलमी बिरादरी के सामने इस कुदरती आफत के आबोहवा की तब्दीली से ताल्लुक को भरपूर अंदाज में उठाया जाना चाहिए। इस दौरान पिछले हफ्ते आने वाले सैलाब के बाद लापता मकामी अफराद के अहले खाना ने अलामती तौर पर उनकी आखिरी रसूम अदा कर दी। लापता अफराद में 583 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी अहलकारों जिनमें नेपाल की फौज भी शामिल है कि मुश्तरका फोर्सेज ने अब तक हेलीकॉप्टरों और जमीनी रास्तों के जरिए 11,993 अफराद को बचाया है। तलाश और बचाव कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 21,314 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ चीन की जानिब नेपाल की सरहद के करीब तिब्बत के गिरोंग काउंटी में आने वाले सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है जबकि 541 अफराद अब भी लापता हैं। ऐवान नुमाइंदगान से खिताब करते हुए वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा कि इस कुदरती आफत की शिद्दत और नौइयत ने आबो हवा की तब्दीली के बायस हिमालयी खित्ते में रहने वाले लोगों को दरपेश बढ़ते हुए खतरात के बारे में संजीदा सवाल खड़े कर

0: अवार्ड से नवाजा गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जिस प्रकार के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं, बहुत लंबे पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं टेंजिबल आउटकम्स में, जब हम दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो उसमें व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो उसमें एक जो अभी व्यापार का हम वॉल्यूम दोनों देशों के बीच में देखते हैं वो कम है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को 5 बिलियन USD तक करने का लक्ष्य रखा है। और हम ये भी ध्यान में रखें कि जब हम उज्बेकिस्तान की ओर देखते हैं तो भारत को क्रिटिकल मिनरल्स और विशेषकर यूरेनियम सप्लाई करने वाला देश है। तो जब हम इस ट्रेड टारगेट को देखते हैं तो फिर इसमें एक प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात भी आती है, ताकि कन्वेंशनल जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कट किया जा सके और दोनों ही देशों के जो निवेशक हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फायदा हो सके। तो एक तो एक टारगेट सेट किया गया 5 बिलियन USD का, प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात दोनों देश कर रहे हैं, ताकि जितने भी टैरिफ से जुड़े हुए और नॉन टैरिफ से जुड़े हुए जो बैरियर्स हैं और जो निवेश में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हुए, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स हुआ, उसके पार्ट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हुए, मोबाइल फोन्स हुए, ये तमाम और कुछ खाद्य पदार्थ जो है उज्बेकिस्तान को भेजता है। वहीं जब हम उज्बेकिस्तान की ओर नजर डालते हैं तो फल और सब्जियां, फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि यूरेनियम शामिल है वो भारत को प्रोवाइड कराता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक का ऐसा नया क्षेत्र उभर के आता है आनंद, जिसमें विशेषकर एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में सहयोग को आगे ले जाने की कई गुना व्यापार बढ़ाने की बात की जा रही है, जो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो ये नोवीस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, विशेषकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और AI है, इसको लेकर के भी दोनों देश और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात करते हुए नजर आए। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के जो अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको हमने कल प्रूफ भी किया, हमारी क्वार्टरली ग्रोथ 7.8% की रिकॉर्ड हुई है GDP की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हर्ष का विषय है। और वहीं दूसरी ओर भारत की जो तकनीकी ग्रोथ है उसकी भी उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने तारीफ की थी जब ये बायलेटरल ऑफिशियल टॉक्स हुई। और इसमें फिर मैं कहती हूँ कि न सिर्फ हम सेंट्रल एशिया की ओर, भारत जब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट करता है दूसरी तरफ जाकर, तो वहां पर भी जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं, फिलीपींस जैसे देश हैं, वो भारत की ओर देखते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें व्यापार में फिर जो है एक पूरा सामरिक क्षेत्र आ जाता है, जिसमें डिफेंस से जुड़े उपकरण, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ये तकनीक को लेकर के सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो व्यापार को 5 बिलियन करने की बात की गई है, उसमें जो ये तमाम जो नवाचारी क्षेत्र हैं इनका भी उल्लेख है, इसमें दोनों देश साथ में काम करेंगे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तर पर, ये दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
1: जी त्रिभुनायक जी, जो ताशकंद वार्ता रही उसमें जो सबसे बड़ा टेकअवे रहा वो उज्बेकिस्तान से भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा तय होना रहा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समझौते के रणनीतिक महत्व को आप कैसे आंकते हैं?
2: देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और भारत एक लीडर के रूप में निकला है जहां तक कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन की बात है, या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने की बात है। तो भारत ने अपना जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नया आयाम किया है, उसी तरह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इस तरह के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी तरह भारत ने अपना लक्ष्य जो है न्यूक्लियर एनर्जी का रखा है लगभग 100 GW बाय 2047। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए आपको जो है यूरेनियम की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाईज, उन सबको करना होता है। अभी हम सिर्फ कजाकिस्तान से खरीदते हैं यूरेनियम, और भारत चूंकि रेडी जैसे अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, और इस वक्त में अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत काफी कुछ चीजों में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में जो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन किया है येलो केक या जिसको बोलते हुए लेंगे वहां से, तो ये हमारी जो ऊर्जा के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, देखिए इस वक्त हमने देखा है जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है, उसमें जिस तरह चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो, बाबल मंदब हो, जब उनके बंद होने से एनर्जी सप्लाईज में बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया।

0: तो अल्टरनेटिव जो हमारे पास है, जैसे INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस सब की वजह से क्या है, आपको अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो है फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कैसे और आगे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी जान रहे हैं कि UPI 10 से ज्यादा देशों में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में भारत के फिनटेक और IT सेक्टर के प्रवेश के जो अवसर बन रहे हैं, उसे आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर का नया हथियार बन रहा है?
2: आनंद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री की पिछली इंडोनेशिया यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खुल के तारीफ की थी, और विशेषकर भारत की इलेक्टोरल सिस्टम और जिस प्रकार से हमने EVMs के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को सहज सरल ट्रांसपेरेंट बनाया, डिजिटाइज किया, उसकी तारीफ करते हुए एक महत्वपूर्ण MOU जो है वो भारत के साथ इंडोनेशिया ने साइन किया। तो इसी प्रकार से आप अपने आसपास के जब तमाम देशों को देखते हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देशों, साउथ एशिया के देशों, ईस्ट एशिया के देशों, साउथ ईस्ट एशिया के देशों, आज भारत की जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है पूरे विश्व में। और 140 करोड़ की आबादी के घने देश को डिजिटाइज करना सरल काम नहीं था आनंद, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। तो चाहे हमारा आधार हो, जो हमारा बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे अपना UPI हो जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, जिसकी वजह से इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बीच में और अलग अलग मुद्राओं के बीच में भी संभव है। आज 10 से अधिक देशों में अपना UPI स्वीकार्य है। चाहे अपना डेटा शेयरिंग का DEPA हो, जिससे कि डेटा एम्पावरमेंट को और प्रोटेक्शन को बल मिलता है, या ONDC हो जो कि ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए, जिसमें कि बायर्स और सेलर्स को ये एप्लीकेशन आपस में जोड़ती है और एक प्राइवेट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। तो हम फिर इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो हमने योजनाएं चलाई, चाहे जनधन हो, आधार हो, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, तो इससे हमने दो प्रकार के अकम्पलिशमेंट्स अचीव किए। एक तो हमने अपना जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक सर्विसेज थी, उनको ट्रांसपेरेंट किया, इजी किया, सीमलेस किया, और इनको हमने डेमोक्रेटाइज किया। ये जन जन तक हमारी योजनाएं और ये तमाम जो पूरा डिजिटाइजेशन था ये पहुंचा। और दूसरा, हमने तमाम इसके माध्यम से जो बेनिफिट हुए वो एक ग्रास रूट लेवल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है, और आज भारत अपना जो DPI का ब्लूप्रिंट है उसकी ग्लोबल शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग जो देश हैं वो भारत के साथ में ऑफिशियल अग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के DPI की। ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी न सिर्फ फिनटेक को या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं जो लोगों की सिटीजन्स की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उससे जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की यात्रा की थी, तो घाना अफ्रीका में या अर्जेंटीना, ब्राजील को हम लैटिन अमेरिका में देखें, इनको हम अपनी जो हमारा जो ई मेडिसिन संजीवनी की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पर उनकी सर्विसेज को हम ग्रो करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के अग्रीमेंट्स हमने इन दो देशों के साथ भी किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं, तो उनकी जो डिजिटाइजेशन की यात्रा है, इसका ये बड़ा माइलस्टोन है, जिसमें भारत अपने ब्लूप्रिंट को शेयर करके तमाम ये जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं, इसमें इन दोनों देशों को आगे ले जाने का काम करने वाला है।
1: जी, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में चल रहे युद्धों पर भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि संघर्षों का समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को एंडलेस वॉर्स से एंडिंग वॉर्स की दिशा में आगे बढ़ना होगा, और भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है। गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। इन सभी विषयों पर कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है।

0: सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है।
1: त्रिभुवनायक जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर अपनी बात कही, बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के सख्त संदेश दिया। अफगानिस्तान से सटने वाली मध्य एशियाई सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत का ये रुख कितना प्रासंगिक है, जब आप देख रहे हैं कि कई देशों की सीमाएं अस्थिर और अशांत बनी हुई हैं।
2: देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज 25 साल मना चुका है अपने एनिवर्सरी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, इन चीजों के लिए लड़ना और सिक्योरिटी को बढ़ाना किसी तरह से। उनके कुछ रैक्स टाइप के जो बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने। इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही जो है टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ना है। भारत अपने आप लड़ रहा है, दुनिया भर में सबको कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप रखेंगे तो इस बुराई, इस कुरीति और इस तरह के देशों के साथ में कोई भी नहीं कर सकते, उसको सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने इस बार फिर कही और अगले 25 साल की बात हो रही है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि दुनिया जो है अपनी ये डबल स्टैंडर्ड्स, खासतौर से मेंबर कंट्रीज जो है वो ना रखें इसमें। तो भारत पूरी तरह से जब तक अपने आप तो लड़ता ही रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन दुनिया को ये सबक दे रहा है कि अगर आप इससे नहीं लड़ेंगे तो कल आप इसका शिकार बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ईरान युद्ध जो हुआ है, देखिए जितने भी इस तरह के इन्वेजन होते हैं, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल इवल्स वॉज इन्वेजन ऑफ ईरान। ईराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उस वक्त के बाद सारा टेररिज्म बढ़ा, आईसिस आया वहां पे, आईसिस आया, अब आप ईरान के अंदर भी उसी तरह का अटैक कर रहे हैं। तो ये जितने भी उनके ग्रुप्स हैं जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है, 4H, वो सब और ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसके बाद में दोबारा से और ज्यादा इस तरह की बात होगी। तो ये जो सारी सीमाओं का बिल्कुल मतलब नहीं रह जाएगा जब नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा स्टेट्स की तरफ से। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का बड़ा सीधा भाषण था और राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा सीधा, उन्होंने जब पहली बार वर्ड्स में ये कहा कि एंडलेस वॉर को एंड ऑफ वॉर होना चाहिए, और पहले उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, तो मैं समझता हूं कि ये बात और उनकी मुलाकात जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी हुई डॉक्टर परवेज़ कियान से, और तब भी वो बातें हुई हैं। देखिए जब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे, जब तक देश जो है इस तरह का ये दुभाषिया व्यवहार जिसको कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन सब लड़ाइयों से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का 3 पिलर्स वाला विजन दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के इस दौर में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद और संतुलित पार्टनर के रूप में खुद को कैसे स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
3: हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, जब हम दो देशों के या भारत और किसी संगठन की ये संबंधों की चर्चा करते हैं तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए कोई भी वो देश या वो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस बात की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन के लिए, भारत किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब जबकि शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये तमाम देश अस्तित्व में आए और भारत के साथ बहुत लंबे समय से इनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक इनके पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, विशेषकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और जिस तरह की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखते हुए हमने वर्षों से देखा है कि न सिर्फ रशिया के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए ये देश जो है वो जियो पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे, और वही भारत के साथ भी स्थिति है। लेकिन जब इन देशों के, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, इन देशों के जब हम सेंट्रल एशिया में जा करके व्यवहार को या इन देशों के साथ के पारस्परिक संबंधों को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी का जो रुख है वो एक ट्रांजैक्शनल रुख है इन तमाम देशों के प्रति। और वहीं जब हम भारत को, भारत की कूटनीति को देखते हैं तो भारत ने विगत 11 से 12 वर्षों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, विन विन रिलेशनशिप्स को कैसे आगे ले जाते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या किसी भी क्षेत्र की जो क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए आप चाहे कनेक्ट

0: एक्टिविटी की बात करें तो उसमें काम करें, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें काम करें, या जब आप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को आगे ले जाने की बात करें तो उसकी ओर देखें। तो इस बात का संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार के SCO समिट में चीन की मौजूदगी में दिया कि कनेक्टिविटी पर काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी देश की जो संप्रभुता है, विशेषकर उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका सम्मान करते हुए कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना चाहिए। और ये अपने आप में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश था। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है वो बहुत सकारात्मक कूटनीति है। भारत न किसी प्रकार का डेट क्राइसिस या डेट डिप्लोमेसी खेलते हुए किसी देश के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि उसके किसी भूभाग पर जाकर के कब्जा करे या वहां अपनी प्रेजेंस को असर्ट करे। न भारत इस प्रकार की कूटनीति करता है कि अपने फायदे की या अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करने की सोचता है जिसमें कि दूसरे देश का नुकसान हो जाए। न भारत इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा हो। और आज जो भारत की शक्ति की स्थिति है आनंद, वो हम सभी जानते हैं। कल अपनी आर्थिक शक्ति का तो भारत ने पूरे विश्व को परिचय दे ही दिया, तब जबकि अमेरिका के प्यूरिटिव मेजर्स और तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा था, पश्चिम एशिया का संकट बहुत गहराया हुआ था और बाकी के जो देश है, विशेषकर पश्चिम के जो शक्तिवान देश है, उनका जो GDP ग्रोथ है रेट रहा वो 0.5 से लेकर 2% तक का रहा। हमने अपना GDP इस क्वार्टर का जो रिकॉर्ड किया है वो 7.8% का रिकॉर्ड किया। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, उसकी कूटनीति ऐसी, इस प्रकार की डायनेमिक कूटनीति है कि वो सभी मंचों पर एक सामंजस्य बना करके काम करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर के जाता है। ये देश जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात भारत करता है। भारत UNSC में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके नेतृत्व की बात करता है, और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई की बात करता है। इसके साथ ही भारत अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साथ में काम करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज को इंटैक्ट रखते हुए। तो यहाँ पर भारत इन तमाम देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश पर इस प्रकार का भरोसा इन देशों का है कि भारत किसी भी प्रकार की नकारात्मक कूटनीति में ना पड़ते हुए अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर काम करता है।
1: विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी। आइए सुनते हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा।
2: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the Prime Minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
1: त्रिगुनायक जी, कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं उस द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कि भारत विकसित बनने की राह पर और आगे बढ़ सके। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की महायात्रा थी, इसमें कौन से ऐसे पहलू आपको नजर आते हैं जो भारत को विकसित बनाने की तरफ और आगे लेकर जाएंगे।
3: देखिए, भारत हमेशा से विश्वास ये करता है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास जो है वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी उसको साझा किया जा सके। तो जैसा अंशु जी ने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहे, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब नए ढंग से चल रही है। टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सो अफोर्डेबल एक्सेसिबल इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत प्रदान करता है, शेयर करता है दूसरे देशों के साथ में। तो जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% क्लॉक किया है, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो रिश्ते हम बना रहे हैं वो तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी है और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। या तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं, भारत में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से विकसित भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के जरिए दूसरे देशों को जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको फायदा पहुंचाएं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह से भारत हमेशा और सब देशों के साथ में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा साथ रहता है। तो मैं जब देखता हूं कि जब हम विकसित 2047 की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं वो भी हमारे जो ग्रोथ है उसका लाभ उठा सके। तो मैं समझता हूं यही भारत की एक नीति है जिसकी वजह से भारत को लोग एक विश्व मित्र के रूप में देखते हैं।
1: जी, ताशकंद के ऐतिहासिक गलियारों से लेकर बिश्केक की चोटियों तक वक्त का पहिया एक बार फिर घूम चुका है। सदियों पहले जिस रेशम मार्ग पर भारत के ज्ञान, संस्कृति और मसालों की खुशबू महकती थी, आज 21वीं सदी का नया भारत उसी धरती पर अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अटूट सामरिक पहचान का परचम लहरा रहा है। उज्बेकिस्तान में मिला प्रधानमंत्री को सम्मान सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक कूटनीतिक जीत भी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया के दिल में भारत के बढ़ते विश्वास की वो मुहर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिगुणायत जी आपका, प्रोफेसर जोशी आपका और हमारे श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के इस प्रोग्राम में हम यौम पैदाइश की मुबारकबाद दे रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के प्यारे लाल साहब को। आज है उनका यौम पैदाइश। हम लेकर आए हैं इस जोड़ी की मौसीकी से सजे हुए कुछ सोलो नगमे।

मेरे पसंद प्रोग्राम में सामीन, आज हम हैप्पी वाला बर्थडे कह रहे हैं प्यारे लाल साहब को, यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के प्यारे लाल साहब, जिनका आज यौम पैदाइश है। हमारी हिंदुस्तानी फिल्म सनत के हवाले से बात करें तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ मौसिकार कहना उनके फन के साथ शायद नाइंसाफी होगी। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने सिर्फ धुनें नहीं बनाई बल्कि कई नस्लों के जज्बात को गोया आवाज दे दी, ऐसा ही एक अजीम नाम है प्यारे लाल शर्मा साहब का। एक ऐसे मौसिकार जिन्होंने अपनी वायलिन के तारों से लेकर बड़े सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा तक हिंदुस्तानी फिल्मी मौसिकी के तकरीबन हर रंग को छू लिया। और जब उनका नाम आता है तो एक और नाम खुद ब खुद जहन में आ जाता है, वो है लक्ष्मीकांत साहब। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी ने कई दहाइयों तक हिंदी फिल्मी मौसिकी पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, लेकिन आज हम इस मशहूर जोड़ी के दूसरे जो शख्स है यानी उस फनकार की बात करेंगे जिनके वायलिन मौसिकी की समझ और ऑर्केस्ट्रा की तरतीब ने इस जोड़ी को वो अजमत दिलाई दोस्तों, जिसे आज भी याद किया जाता है। यानी ये बात है प्यारे लाल शर्मा साहब की। बचपन से ही उनको मौसिकी से काफी लगाव था और आज ही के दिन सन 1940 में पैदा हुए थे, और उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां मौसिकी से कुर्बत मौजूद थी। उनके वालिद पंडित राम प्रसाद शर्मा खुद एक माहिर मौसिकार और मौसिकी के उस्ताद थे। घर के माहौल में जाहिर सी बात है कि जब उन्हें मौसिकी मयसर आई तो बहुत कम उम्र में मौसिकी की तालीम हासिल होने लगी। खासतौर पर वायलिन पर उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है, यही वायलिन आगे चलकर उनकी शिनाख्त का एक अहम हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि प्यारे लाल ने बचपन से ही मौसिकी की बारीकियां सीखना शुरू कर दी थी। उनके वालिद क्योंकि उन्हें सिर्फ एक साज बजाना ही नहीं सिखाना चाहते थे बल्कि मौसिकी के पीछे मौजूद पूरा जो सिस्टम होता है, सुर ताल और टेक्निक को समझने की तरबियत भी दिया करते थे, और यही तरबियत काम आई थी प्यारे लाल साहब की। और हमें

दोस्ती फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस खराज तहसीन पेश कर रही थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के प्यारेलाल साहब को। आज है उनका यौम पैदाइश।

हमारी श्रेयात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री देश पर। अब सुनिए ड्रामा दरवाजे खोल दो।

0: पिताजी
1: तुम आ गए। पिक्चर देखने के अलावा तुम्हें कोई काम आता भी है?
0: जिसके बाप की 8 बिल्डिंगें हूँ वो कोई काम क्यों करे पिताजी?
1: क्या इसी दिन के लिए तुम्हें विलायत पास कराया था?
0: वो तो जाने हम कैसे पास हो गए हैं, काम तो हम वहाँ भी नहीं करते थे, पर मैं कैसे बैरिस्टर हो गया मुझे खुद भी हैरत होती है। पिताजी मुझे आपसे एक जरूरी काम है।
1: और कोई जरूरी काम नहीं हो सकता आज, सिवाय इसके कि इस बिल्डिंग के तमाम फ्लैट किराए पर उठा दिए जाएं। मिर्जा जी
2: इरशाद,
1: कितने फ्लैट लग गए
2: जी? 20।
1: बाकी कितने?
2: 9।
1: मेरे ख्याल में तो आज ही सब लग जाएंगे, उनके एग्रीमेंट भी तैयार कर लो ना।
2: जी वही कर रहा हूँ।
3: अच्छा
4: है, कपड़े धोने की जगह ही नहीं।
3: छत कपड़े धोनू, कमरा देखकर कितना बड़ा है, वो इसमें तो मुजरा भी हो सकता है।
4: सानू तो मुजरे की पई रही है, पहले घर की गल कर।
3: ठीक है ठीक है। ओ लच्चू घर की गल कर। ओए लाला, घर का मालिक किधर है? उसको बुला के ला।
0: सेठी यही घर के मालिक है, सेठ रामदयाल, पंडित रामदयाल। नई सड़क पर इनकी 8 बिल्डिंग है। इधर आओ सेठ जी, इधर आओ।
1: कहो।
0: इनको आपका सबसे ऊपर का फ्लैट बहुत पसंद आया है, 7 कमरों वाला। ये सेठ 12,000 पगड़ी भी देगा और 1200 भाड़ा भी। जल्दी से एग्रीमेंट टाइप करो साई, अपने में 2 महीने का कमीशन खड़ा होता है 2400 रुपया, वही शर्त टाइप करो, एग्रीमेंट साइन मुंजा।
1: मगर ये सेठ है कौन?
0: बहुत बड़ा सेठ है, दरियागंज में इसका नीलम रेस्टोरेंट है, आसिफ अली रोड पर नीलम रेस्टोरेंट है, कनॉट पैलेस में नीलम रेस्टोरेंट है, चांदनी चौक में नीलम रेस्टोरेंट है, करोल बाग में।
1: बस बस बस, काफी है, लेकिन
0: साईं हम किसी अरे अरे को तुम्हारे पास लाएंगा।
3: नहीं समझती पालू, मकान बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं मकान लगाऊंगा तो ऐसे लगूंगा, जरूर लगूंगा।
4: मकान तो अच्छा है पर कपड़े तो ओंडी थे था ही नहीं।
1: महाशय आपका शुभ नाम?
3: देखो ओए, हमको महाशय मत कहो, हमारे पिशोर में एक ही महाशय था, महाशय घसीटा राम, और वो चोले बेचता था। हमारे पिशोर में महाशय चोले बेचने वाले को कहता है। हाँ हमको महाशय मत कहो वरना हम तुम्हारा जैसी तैसी फेर देगा।
1: किस बात पे खफा हो रहे हैं?
0: मलिक साहब आपका नाम पूछ रहे हैं।
3: ओए, तो यूं बोलो कि तुम हमारा नाम पूछते है। मेरा नाम आफ्ताब राय, मलिक आफ्ताब राय, और ये हमारा बीबी है इकबाल दई, इसका नाम है। हाँ और पूछो क्या पूछते है।
1: मलिक आफ्ताब इकबाल, तो आप लोग पठान?
3: ओए पठान, पठान तो हमें, इधर साढ़े पिशोर में सब पठान, क्या हिंदू क्या मुसलमान सब यही ड्रेस पहनता, मगर हम हिंदू है। ओ लाला, हम जब तुम्हारा फ्लैट लेगा तो ये कमरे में भगवान जी का मंदिर बनाएगा।
1: मंदिर बनाएगा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। मिर्जा जी आजकल ऐसे धर्म कर्म वाले किराएदार कहाँ मिलते हैं, जल्दी से इनका एग्रीमेंट टाइप करो।
2: बहुत अच्छा हुजूर।
3: कितने का चेक काटो?
1: कौन सा फ्लैट लेना है आपको?
3: वही 7 कमरे वाला।
1: मगर आप तो सिर्फ 2 मियां बीवी है ना, 7 कमरों वाला फ्लैट लेकर क्या करेंगे?
3: शाबाश होए लाला, तुमको किसने कहा कि हम 2 मियां बीवी हैं? वो हमारा तो 3 बीवी है और 7 बच्चे हैं।
1: 3 बीवी? हे राम
0: पंडित जी, इसकी 3

0: बीवियां हैं आपकी तो नहीं साईं, जिसकी तीन बीवियां हैं वो संभालेगा, आप क्यों गश खा रहे हैं?
1: तुम ठीक कहते हो, मगर क्यों जी, आप मांस मच्छी तो नहीं खाते?
2: वे वे वे वे वे, कौन कहता है नहीं खाते?
3: मांस मच्छी मुर्गी सब खाते, मुर्ग चुर्ग सब अड़प करते। हम तुम्हारी तरह लाला घास फूस नहीं खाते। हम रात को जब तक दो तंदूरी मुर्ग न चबा ले तो हमको नींद नहीं आते, और फिर लाला तंदूरी मुर्ग के साथ
1: तो तुम पीते भी हो,
3: और उसके बाद थोड़ा सा कव्वाली।
1: कव्वाली भी?
3: और कभी कभी लाला मुजरा।
1: मुजरा भी? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लच्छू
4: पंडित जी,
1: जल्दी से ले जाओ इनको बिल्डिंग से बाहर, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है।
4: चलो सर, चलो यहाँ से चलो।
3: और देखो, ओए लच्छू का बच्चा, वो हम तुम्हारा मच्छू बनाएगा, इस डंडे से तुम्हारा सर तोड़ेगा। वो मकान पर, ये मकान हम जरूर लेगा, जरूर लेके जाएगा।
4: लग गया सर जी, आपके और मेरे आने से पहले अभी लगे।
3: खाना खराब
5: मुफ्त देखे, चलो उठो। चलो,
3: बहुत जानता हूँ मदर बालू, ये मकान बहुत ही अच्छा
5: है। अच्छा तो है, पर कपड़े तो उन्हीं की जगह नहीं।
3: चल कपड़े दोनों।
6: आप भी गजब करते हैं पिताजी।
1: क्यों?
6: ऐसा सेठ रोज रोज मिलता है जो 12,000 पगड़ी दे और 1200 किराया भी दे और 7 कमरे वाले फ्लैट में रहे। ऐसा सेठ रोज रोज नहीं मिलता।
1: मगर तुमने सुना नहीं, वो मांस मच्छी अंडा सब खाता है।
6: उधर फ्रंटियर के इलाके में सब खाते हैं।
1: तो मैं किसी फ्रंटियर वाले को अपनी बिल्डिंग में जगह नहीं दूंगा।
6: सब कश्मीरी खाते
1: हैं। तो मैं किसी कश्मीरी को अपनी बिल्डिंग में रहने नहीं दूंगा।
6: मछली तो बंगाली हर रोज खाते
1: हो, तो मैं किसी बंगाली को यहाँ घुसने नहीं दूंगा।
6: और मछली तो मद्रास में भी खाई जाती है, और मलयाली लोग भी खूब मछली खाते।
1: तो मैं किसी मद्रासी और मलयाली को भी यहाँ नहीं रखूंगा। हाँ,
6: और अक्सर पंजाबी लोग भी गोश्त खाते।
1: तो मैं किसी पंजाबी को। क्या बात है सरदार
7: जी? 11 नंबर फ्लैट के दरवाजे से खिड़कियाँ तो बन गई हैं।
8: एक दिन पहले ही आपने काम खत्म कर दिया। वाह वाह,
7: काम करना ही होया तो एक दिन पहला क्या थे पीछे क्या। पर लाला जी, अब लकड़ सारी खत्म हो गई है, और अलमारियों के लिए और बारड रोग के लिए लकड़ चाहिए जी। बारड रोग के लिए टीक चाहिए, पर अलमारियों के लिए सिल्वर भी चलेगी।
1: मैं अभी सरदार गुरदयाल सिंह को लकड़ी के लिए टेलीफोन करता।
7: जी जल्दी मंगा दियो, देखो हम खाली हाथ बैठे हैं।
8: ये सरदार अपने काम में बड़ा होशियार है।
1: बड़ा खरा और सच्चा बढ़ई है, एक फुट लकड़ी इधर से उधर नहीं करता। मिर्जा जी, बिजली का क्या होगा? बिल्डिंग में अभी तक बिजली नहीं आई है। वो बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर तो आपका मित्र है।
8: कौन? डीसी गुप्ता?
1: हाजी, डीसी गुप्ता नहीं, वो जो नया क्रिश्चियन इंस्पेक्टर आया है, क्या नाम है उसका?
8: अच्छा अच्छा, डिसूजा।
1: हाँ हाँ, इंस्पेक्टर डिसूजा, उसके पास फाइल लेकर जाओ।
8: अभी तो धूप बहुत है।
1: इलेक्ट्रिक हाउस तो बगल ही में है, 10 मिनट में वापस आ जाओगे। चले जाओ ना।
8: अच्छा, जाता हूँ।

0: Ajá. अच्छा मियाँ
1: अमा मुनन तुम यहाँ कहाँ भाई? तुम तो लखनऊ में थे।
0: लखनऊ में थे मगर अब दिल्ली आ रहे हैं। यहाँ दिलशाद जर्दे की ब्रांच खोलने का इरादा है। 40,000 पगड़ी देकर चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान हासिल की है।
1: तो गोया आप दिल्ली में रहोगे?
0: इंशाल्लाह।
1: भाई घर में तो सब खैरियत है, बेगम साहिबा और आपका साहबजादा।
0: माशाल्लाह, अब तो वो 10 बरस का हो गया है। 2-3 बरस के बाद खुदा ने चाहा तो चौक की दुकान संभालेगा।
1: क्यों नहीं अमामुनन, मैंने सुना था कि आप बम्बई जाने वाले हैं और फिल्म कंपनी खोलने का इरादा रखते हैं।
0: माशाअल्लाह, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अच्छा मिर्जा, तुम जानते हो हम लोग 7 पुश्तों से चौक में जर्दा तंबाकू बेच रहे हैं और वही बेचेंगे। तुमको मालूम है इस बीच में शाहजहानी होटल वाले अपना कारोबार बंद करके 5 लाख रुपया लेकर बम्बई गए थे फिल्म कंपनी खोलने के लिए।
1: यानी ये कब का बात है?
0: अभी गुज़श्ता साल का है, जब अपने गोलागंज के नवाब जवान बख्त चंगेजी ने अपने बच्चे की मुसलमानियां की थी। ये लोग अपना सब बेच बाट के बम्बई चले गए और वहां जाके उन्होंने एक फिल्म कंपनी
1: कबाब बनाते बनाते फिल्म कंपनी खोल दी। अरे भाई कैसी चल रही है उनकी कंपनी?
0: अजी क्या चलती, 5 लाख रुपया 5 महीने में चटनी हो गया। 2 लाख हीरो ले गया, 2 लाख हीरोइन, 1 लाख हीरोइन की नानी। अब सुना है चर्च गेट के बाहर खड़े होकर कबाब

0: आप बेचते हैं। पहुंची वहीं पे खान जहाँ का खमीर था।
1: इसलिए अच्छन मिर्जा, हम तो वही अपना जर्दा बेचेंगे। पहले सिर्फ लखनऊ में बेचते थे, अब दिल्ली में भी बेचेंगे। मगर उस्ताद, दिल्ली में रहने के लिए कोई ठिकाना तो होना चाहिए, कोई घर दिलवा दो। सुना है इस बिल्डिंग में बहुत से फ्लैट खाली हैं।
0: अरे जितने चाहो घर मिलेंगे। आओ आओ, तुम्हें सेठ से मिला दूं।

0: पंडित जी, ये हमारे बचपन के साथी और लंगोटिये मियां मुनन हैं। पंडित जी, इनको जरूर एक फ्लैट दे दीजिए।
1: आप तो जानते हैं मिर्जा जी, मैं तो सब बता चुका हूँ मैं कैसे लोगों को फ्लैट देता हूँ। ये तो मुनन मियां हैं।
0: ओ समझा। अरे पंडित जी, ये जो मुनन भाई हैं ना, तो इनका असली नाम है मुनीश नारायण सक्सेना। ये मुनीश से हो गए मुनन, जैसे मैं शाह से हो गया अच्छन। अब समझ में आया।
2: बस बस बस बस कीजिए मिर्जा जी, इस पर भी इनको यकीन ना हो तो चीफ कमिश्नर से शनाख्त नामा लाकर देता हूँ मैं फोटोग्राफ।
1: नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप कहते हैं और मिर्जा जी कहते हैं तो मैं विश्वास किए लेता हूँ और इनके कहने पर मैं आपको फ्लैट दे देता हूँ। मगर मेरी कुछ शर्तें भी हैं। जब तक आप मेरी बिल्डिंग में रहेंगे आपके घर में गोश्त नहीं आएगा।
2: कैसे नहीं आएगा? मैं खुद गोश्त और पोस्त का बना हुआ हूँ, क्या मैं खुद अपने घर में नहीं आऊंगा?
1: मेरा मतलब मांस आहार से है श्रीमान जी। जब तक आप मेरी बिल्डिंग में रहते हैं आपके घर में गोश्त नहीं पकेगा।
2: नहीं पकेगा? बाहर से ले आएंगे?
1: नहीं नहीं, बाहर से भी नहीं ला सकते।
0: कह दो नहीं लाएंगे।
2: अच्छा, बाहर से भी नहीं लाएंगे?
1: और मछली भी नहीं पकेगी।
0: कह दो नहीं पकेगी।
2: अच्छा, नहीं पकेगी।
1: और अंडा भी नहीं?
2: ना सही।
1: और लहसुन भी नहीं और प्याज भी नहीं?
2: गोली मारिए दोनों को।
1: आपके घर में कव्वाली नहीं होगी?
2: नहीं होगी।
1: मुजरा नहीं होगा?
2: नहीं होगा।
1: किसी किस्म का दुराचार नहीं होगा?
2: दुराचार का क्या मतलब? क्या मैं अपने घर में अचार भी नहीं खा सकता?
1: दुराचार का मतलब ये है सक्सेना जी कि मेरे घर में कोई बुरा काम नहीं हो सकता।
2: अच्छा, तब तो शायद आप भी मुझसे इस फ्लैट की 4000 पगड़ी न लेंगे।
1: क्यों?
2: 3 माह का डिपॉजिट न लेंगे, 300 किराया न लेंगे, 2 माह की दलाली न लेंगे। ये सब लूटने के धंधे हैं।
1: मैं लूटने का धंधा करता हूँ?
2: हाँ, और ब्लैक का भी।
1: ब्लैक का भी?
2: आप बड़े भारी दुराचारी हैं। अगर कव्वाली सुनना, अंडा खाना और दाल में लहसुन या प्याज का बघार देना दुराचार में शामिल है, तो 4000 ब्लैक पगड़ी में लेना, 2 महीने की दलाली लेना और इस फ्लैट के लिए 300 लेना, जिसका किराया कायदे से किसी हालत में 60 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे बदतर दुराचार तो मेरे जहन में नहीं आ सकता।
1: मेरी दवाई मिर्जा जी।
3: लीजिए पिताजी, सिर्फ एक खुराक बची है।
0: बेचारी को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है।
3: अब कुछ खाएंगे नहीं तो यही होगा।
0: इस वक्त इन्हें कुछ मत कहो मुनन, मैं किसी वक्त इत्मीनान से इनसे बात करके तुम्हारे लिए घर ठीक कर दूंगा।
2: नहीं मिर्जा जी, आप तकलीफ ना करें, मुझे यहाँ मकान लेना ही नहीं है। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, आप मालिक मकान है कि फूड कंट्रोलर है? अच्छा, मैं जाता हूँ, फिर मिलेंगे।
1: आज तो अष्ट ग्रह का दिन मालूम होता है, कोई ग्राहक भी ढंग का नहीं आता और दवा भी खत्म हो गई।
2: आप भी तो गजब करते हैं पिताजी, आखिर आप इस बिल्डिंग में रखेंगे तो किसे रखेंगे? एक बीवी वाला मुसलमान आप नहीं रखेंगे, 3 बीवियों वाला हिंदू आप नहीं रखेंगे, कवाली सुनने वाला आपको पसंद नहीं, मांस मच्छी खाने वाला आप नहीं चाहते, प्याज लहसुन वाला आप नहीं चाहते, पंजाबी को आप नहीं रखेंगे, बंगाली को आप नहीं रखेंगे, मलयाली को आप नहीं रखेंगे, आखिर आप रखेंगे तो किसको रखेंगे इस घर में? आधा हिंदुस्तान तो जात बाहर कर दिया आपने।
1: इस घर में रह सकता है जो मर्यादावादी है, जिसे हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर गौरव।
2: गौरव तो मुझे भी है और उन सबको है जो इस देश में रहते हैं।
4: समय के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति दोनों बदलते हैं। इस देश में हमसे पहले द्रविड़ आए, फिर आर्य आए, फिर मंगोल आए, मुसलमान आए और अंग्रेज आए। इस दुनिया में भात भात का जानवर रहता है और अपनी अपनी बोली बोलता है, और आप कोई एक रंग, कोई एक ठप्पा, कोई एक धर्म सब पर लागू नहीं कर सकते। हो ही नहीं सकता, चलेगा ही नहीं।
1: मगर इस बिल्डिंग में तो वही चलेगा जो मैं चाहूंगा, जैसे अब तक पुरानी 8 बिल्डिंगों में चला है।
4: मगर ये नई बिल्डिंग है।
5: नमस्कार पंडित जी।
1: नमस्कार इंजीनियर साहब।
5: हेलो कोमल।
6: हेलो मुखर्जी। ऊपर 4th फ्लोर पर फर्श का घिसाई का काम शुरू कर दिया है, चल के देख ले बहन।
1: चलिए कमल, मेरे बाद कोई ग्राहक आया तो

0: संभाल लेना।
1: आप बेफिक्र रहिए, मैं सब ठीक कर लूंगा।
0: और लकड़ी का कुछ करो सरदार गुरदयाल सिंह से। और मिर्जा जी,
2: जी हुजूर,
0: आप जाके इंस्पेक्टर डिसूजा से मिलिए बिजली के लिए।
2: जी बहुत अच्छा।
0: चलिए इंजीनियर साहब।
1: हेलो, कौन? अहमद। अरे अहमद, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यार। हाँ अबे भूल गए, आज हॉकी का फाइनल है। हाँ, तो तुम गाड़ी लेकर आ रहे थे ना? क्या गाड़ी खराब हो गई? अपनी गाड़ी भी 5 दिन के बाद गैराज से वापस आएगी। तो प्यारे एक काम कर, माथुर की गाड़ी ले लो या मकबूल की गाड़ी ले लो और सीधे आ जाओ यहाँ। मैं यहाँ बैठा बैठा सख्त बोर हो रहा हूँ यार। अरे यार अहमद, गजब हो गया, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। हाँ हाँ, अरे नहीं भाई, नहीं आ सकता मैं, पिताजी का हुक्म है, नहीं टाल सकता उसे। हाँ हाँ, तुम जाओ मैच देखो, अपनी किस्मत में तो कोई दूसरा ही मैच है शायद। बाय बाय।
3: डैडी यहाँ है।
1: डैडी? किसके डैडी, मेरे या आपके?
3: डोंट बी सिली, ऑफ कोर्स माइन। क्या तुम मेरे डैडी को नहीं जानते?
1: आपके डैडी को जानने की ख्वाहिश किसको ना होगी, मगर मेरी बदकिस्मती है कि अब तक उनसे मुलाकात ही ना हो सकी।
3: सरप्राइजिंग, उन्होंने मुझसे टेलीफोन पे कहा था कि वो मुझे यहाँ मिलेंगे, कमल कुंज, यही है ना?
1: जी हाँ यही है।
3: ये इश्तेहार आपने दिया था?
1: जी हाँ।
3: दैट्स गुड। दरअसल हमें एक मकान चाहिए। माई फादर इज अ डॉक्टर। हम लोग कलकत्ता से आए हैं।
1: कलकत्ता बड़ा प्यारा शहर है,
3: मगर बड़ा ओवरक्राउडेड है।
1: हाँ, ओवरक्राउडेड तो है
3: और बड़ा नॉइजी है।
1: हाँ, नॉइजी भी है, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं।
3: कलकत्ता गए हैं?
1: हाँ, नहीं नहीं, गया तो नहीं हूँ, मगर वो आते जाते दोस्त बताते रहते हैं कलकत्ते के बारे में।
3: मेरे डैडी को शोरगुल बिल्कुल पसंद
1: है। मुझे भी शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है,
3: लेकिन मुझे है I like Gaiety.
1: Oh, Gaiety. Gaiety की बात ही दूसरी है, रौनक और चहल पहल को कौन पसंद नहीं करता। आई एम ऑल फॉर Gaiety.
3: Oh God, Daddy अभी तक नहीं आए।
1: आ जाएंगे, जल्दी क्या है।
3: उन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा था कि वो यहीं कहीं पर किसी मरीज को देखकर यहाँ आ जाएंगे, मगर आपकी बिल्डिंग में कोई फ्लैट खाली भी है? वरना मैं यहाँ क्यों खामखा वेट करूँ?
4: मोहतरमा, एक नहीं 9 खाली हैं।
3: 9? रियली? यू नॉट जोकिंग?
4: नो।
3: और इन 9 फ्लैट्स में से मुझे एक फ्लैट तो मिल सकता है ना?
4: मोहतरमा, जरूर मिल सकता है।
3: थैंक यू सो मच।
4: मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूं तो?
1: ये बीच में कम वक्त कहाँ से अटक गया। मिर्जा जी, आप तो इंस्पेक्टर डिसूजा से मिलने गए थे।
4: जी हाँ, जाता हूँ।
3: इस दिन से हम दोनों बाप और बेटी इस शहर में फ्लैट ढूंढ रहे हैं। ओह, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू।
4: मुझे अपना खादिम समझिए।
1: ये कम वक्त तो मुझे बात ही नहीं करने देता, अपना ही रौब डाले जा रहा है।
3: आपका नाम?
4: यू तो मेरा नाम मिर्जा इरशाद हुसैन तैमूरी अल मुतखल्लस बासी लखनवी है, लेकिन अगर आप मुझे अच्छन कहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
3: अच्छन? अच्छन? ओह, व्हाट अ स्वीट नेम। और आप कौन है?
4: ये भी नहीं काम करते हैं।
1: जी मैं इस बिल्डिंग के प्रोप्राइटर का लड़का हूँ।
3: How nice, Mr.
1: Kamalkant, Kamalkant.
3: Please, Mr. Kamalkant, for God's sake, मुझे एक फ्लैट दे दो ना।
1: 9 खाली है, आप कोई सा भी पसंद कर लीजिए।
3: मैं बाद में पसंद करती रहूंगी, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो अभी मैं अपना सामान मंगवा लूं होटल से, उधर ही नई सड़क पर है।
1: मगर
3: लुक, आई वॉन्ट टू गिव माई डैडी अ सरप्राइज, वो बहुत खुश होंगे।
1: तो फिर सामान मंगवा लीजिए।
3: थैंक यू।

0: Hello? Hello? Liberty? Give me room number 250. Hello? Coco, right? Rambarose? Uncle, tum jaldi se sara saman bandh kar yahan le aao. Kamal kunj, nahi sarak par. Haha, saman hai hi kitna. Foran pocho.
1: चलिए आपको फ्लैट दिखा दूं।
2: अजी आप क्यों जहमत करते हैं, मैं दिखा दूं।
1: मिर्जा जी, मेरे ख्याल में आप अगर इस वक्त इंस्पेक्टर डिसूजा से मिलाए तो कैसा रहे,
2: और अगर आप सरदार गुरदयाल सिंह की दुकान पर चले जाएं तो।
1: पिताजी ने आपसे बिजली घर जाने को कहा था, आपको याद
2: होगा। आपसे भी तो कह गए थे सरदार गुरदयाल सिंह लकड़ी फरोश से मुलाकात करने के लिए।
1: मेरे ख्याल

0: में आप मेरा मशवरा कबूल कर लीजिए और सबसे पहले बिजली घर चले जाइए, ये लीजिए फाइल
1: जी।
0: और फिर सरदार गुरदयाल सिंह के यहाँ भी चले जाइए, समझे? आइए चलिए देख लीजिए फ्लैट।
2: लेट्स गो।
0: आइए।
1: और हमको कर दिया फ्लैट। जाना था इस नौकरी पर मगर जाना ही पड़ेगा।
3: बिल्लू बिटिया है यहाँ तो कोई नहीं है
4: मगर कमल कुंज तो यही है।
3: यही है कमल कुंज तो फिर सारा सामान यही रख दो। बिल्लो बिटिया कहीं कहीं होगी, अभी आ जाएगी। मजूर के अरे जरा पंखा तो बड़ी गर्मी है। हाँ इस कुर्सी पर जरा सुस्ता लो।
4: बाबूजी पैसे
3: पैसे?
4: हाँ जी
3: ये लो पैसे।
4: बाबूजी ये तो बहुत कम है।
3: कम है? अच्छा अच्छा जाओ और लो, अब तो खुश हो।
4: हाँ मालिक। राम राम।
3: राम राम।
5: तुम यहाँ क्या कर रहे हो
3: डॉक्टर साहब जी?
5: और हमारा सामान यहाँ कैसे आ गया
3: जी? बिल्लो बिटिया ने टेलीफोन किया था सरकार कि सामान लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। मैं आ गया साहब।
5: बिल्लो ने टेलीफोन किया था?
3: हाँ सरकार।
5: तो जरूर उसे यहाँ फ्लैट मिल गया होगा, वो गलत टेलीफोन करने वाली नहीं है। मुझे जरा एक पेशेंट के यहाँ देर हो गई वरना इससे पहले आ जाता। बिल्लो कहाँ है?
3: मालूम नहीं सरकार, मगर कमल कुंज तो यही है।
5: बिल्डिंग तो नहीं है और बाहर से फ्लैट भी अच्छे मालूम होते हैं।
3: हमारी बिटिया कोई बुरा फ्लैट थोड़ी पसंद करेगी
6: जी। साहब अगर तीन दिन में किसाई खत्म हो जाए तो अच्छा है।
7: हो जाएगा।
6: ये सामान किसका है?
5: हमारा है और किसका।
6: और आप कौन है?
5: और आप कौन है
6: ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। पहले आप बताइए आप कौन है और किसने आपको सामान यहाँ लाने की इजाजत दी?
5: सामान तो वही लाएगा जो फ्लैट किराए पर लेगा। मेरी बेटी ने गालिबन यहाँ फ्लैट किराए पर लिया है।
6: गालिबन?
5: गालिबन नहीं यकीनन। वो इस कदर शोर न होती तो मेरे नौकर को टेलीफोन करके सामान यहाँ न मंगा लेती।
6: मगर आपकी बेटी है कहाँ?
5: यही तो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी बेटी है कहाँ?
6: मैं क्या आपकी बेटी का रखवाला हूँ?
5: मगर उसने अभी यहाँ से टेलीफोन किया था, क्यों राम भरोसे?
3: जी हाँ, और तभी मैं सामान लेके आ गया।
5: और तुम कहते हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं। यू विकेड ओल्ड मैन। ठीक ठीक बताओ कहाँ है मेरी लड़की, वरना अभी पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। बताओ।
6: छोड़ो मेरी गर्दन,
5: बोलो।
6: मेरे ही घर में आके
2: जेरी, मैं अभी अभी फ्लैट देख के आ रही हूँ।
5: तो फिर कैसा है फ्लैट?
2: ओह इट्स अ वेरी नाइस फ्लैट, टू बेडरूम्स, टू बिग बाथरूम्स एंड अ बिग हॉल एंड अ बिग किचन एंड अ बिग पैंट्री। ओह इट्स लवली एंड यू नो किराया सिर्फ 700 रुपए।
5: गुड, तो तुमने देख लिया।
2: और ये देखिए फ्लैट की चाबी।
6: कमल
4: जी
6: तुमने फ्लैट इनको दे दिया?
4: हाँ पिताजी।
6: मगर ये है कौन?
4: ये तो मैंने पूछा ही नहीं।
6: नाम तक नहीं पूछा और किराए पर दे दिया?
4: इनका नाम बिल्लो है शायद।
6: बिल्लो?
4: जी
6: बिल्लो। कौन बिल्लो? अरे बिल्लो से बिमला हो सकती है, बिल्लो से बलवंत कौर हो सकती है और बिल्लो से बतूल भी हो सकती है।
4: ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मेरे लिए बिल्लो काफी है, बहुत काफी है।
2: मैं बताती हूँ, मेरा नाम इजाबेला है। इजाबेला कोलियो। और ये मेरे डैडी हैं, डॉक्टर एडवर्ड कोलियो, हिंदुस्तान के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट।
6: एडवर्ड कोलियो?
5: जी हाँ।
6: इजाबेला कोलियो?
2: जी हाँ।
6: तो आप लोग क्रिस्टान हैं?
5: हाँ क्रिस्टान हैं और हिंदुस्तानी हैं।
6: मांस मछली अंडा मटन बेकन हैम सब खाएंगे?
5: खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे।
6: भगवान मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। निकल जाओ बदमाशो, अभी चले जाओ मेरे घर से, निकल जाओ।
4: पिताजी
6: मैं मर जाऊंगा मगर जीते जी इनको कभी अपनी बिल्डिंग में घुसने नहीं दूंगा, सुनते हो? निकल जाओ।
5: जाता हूँ मगर अदालत में तुमसे समझूंगा, तुमने हमारी इंसल्ट की है। मैं तुमसे 50,000 रुपए हर्जाना वसूल करूंगा।
6: तुम 50,000 नहीं 1,00,000 वसूल करो, 2,00,000 वसूल करो, 5,00,000 वसूल करो, 10,00,000 वसूल करो, मगर तुम कभी इस बिल्डिंग में।
8: देखा दौरा पड़ गया।
5: चलो बेटा।
4: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब
5: मेरा हाथ छोड़ दो।
4: डॉक्टर साहब इन्हें दिल का दौरा पड़ गया है।
5: तो मैं क्या करूँ?
4: फॉर गॉड सेक हैव मर्सी ऑन हिम, इन पर दया कीजिए, इन्हें बचा लीजिए।
5: देखो बेटे मैं क्रिस्टान हूँ, मेरे हाथ लगने से तुम्हारे डैडी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा।
4: वापस चले चलिए डॉक्टर साहब, पिताजी को बचा लीजिए, वो बूढ़े आदमी हैं, पुराने विचारों के हैं, मगर मेरे पिता उन्हें माफ कर दो। डॉक्टर डॉक्टर आप तो समझदार हैं, वापस चलो डॉक्टर, एक एक लम्हा कीमती है।
2: चलिए
4: आइए डॉक्टर साहब।
5: आप सब लोग पीछे हट जाएं, मैं देखता हूँ। इन्हें फौरन इंजेक्शन देना होगा। बेटी मेरा बैग
2: रेडी,
5: स्पिट
2: लीजिए,
5: सिरिंज
2: ये लीजिए।

0: डॉक्टर साहब, इंजेक्शन ने तकसीर का काम किया है।
1: मैं
2: पिताजी,
1: मैं कहाँ हूँ?
3: उठिए मत, लेट रहिए,
1: मुझे बैठने दो।
0: डॉक्टर साहब ने आपकी जान बचाई है पिताजी।
4: आप चुप क्यों हैं? क्या आप अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे?
3: इसे कुदरत का एक मौजदा कहना चाहिए। एक मिनट पहले मैंने देखा, आपकी नब्ज बंद थी, दिल बंद था, सांस बंद था, जिस्म हर एतबार से मुर्दा था।
1: मगर मैं मरा नहीं था डॉक्टर। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बहुत लंबे सफर पर जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे अपनी बिल्डिंग की आत्मा मिली।
3: बिल्डिंग की आत्मा?
1: हाँ डॉक्टर, बिल्डिंग की आत्मा। हर बिल्डिंग की आत्मा होती है, जैसे हर इंसान, हर कौम और हर देश की एक आत्मा होती है, उसी तरह हर बिल्डिंग की भी एक आत्मा होती है। और ये आत्मा मुझे रास्ते में मिली और मैंने उससे कहा, आओ इकट्ठे चले, हमारा तुम्हारा रास्ता एक है। वो बोली, इस रास्ते पर चलकर न तुम कभी मंजिल को पहुंच सकोगे न मैं, क्योंकि ये रास्ता पुराना हो गया, अब ये रास्ता कहीं नहीं जाता है। मैंने पूछा, तो आगे जाने की तरकीब क्या है? वो बोली, आगे वही लोग जाते हैं जो अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। इसलिए मैं वापस आ गया तुम्हें ये चाबियां देने के लिए। बिल्लो बेटी, तुम ये चाबियां ले लो और मेरे घर के सारे दरवाजे खोल दो। इस बिल्डिंग का नक्शा एक बंगाली इंजीनियर ने बनाया है, राजस्थानी मजदूरों ने इसमें ईंटें लगाई हैं, मलयालियों ने इसको रंग रोगन दिया है, पंजाबी बढ़ई ने इसके दरवाजे और खिड़कियां बनाई हैं, अब्दुल सत्तार ने इसमें मोज़ेक का फर्श बिछाया है, डिसूजा इसमें बिजली लाएगा और डेविड अब्राहम पानी के नल लगाएगा और रुस्तम नसरवान जी सैनिटरी फिटिंग्स करेगा। ये घर जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी ने मिलकर बनाया है, अगर वो सब मिलकर इस घर में नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे आबाद होगा और कैसे तरक्की करेगा और कैसे इसका झंडा आसमान पर बुलंद होगा? इसलिए मैं वापस आ गया हूं और तुम्हें ये चाबियां देता हूं बेटी। अब इस घर के सारे दरवाजे खोल दो और इसके सारे बेटों को बुला लो, आफताब राय को, मुखर्जी को और डॉक्टर एडवर्ड कोलियो को और सरदार गुरदयाल सिंह को, और जिस किसी ने एक ईंट भी इस घर को दी है ये घर उसका है, और जो कोई इसकी दीवारों से लगकर रोया है ये घर उसका है, और जिस किसी ने इसके सहन में खड़े होकर इंसान और उसकी उम्मीद और उसकी हसरत और उसके दुख और उसकी मसरत और मुस्तकबिल से प्यार किया है ये घर उसका है। अब ये घर अकेले पंडित रामदयाल का नहीं, ये घर तुम सब का।
5: समीन, अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र की कहानी पर मबनी ड्रामा दरवाजे खोल दो, पेशकश अनवर खान की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे एचके वर्मा, सलीमा रजा, राजेश्वर नाथ, अनवर खान, विजेंदर मोहन, राम अवतार शर्मा, जलालुद्दीन, सी एस नागर और उमा शंकर। रेडियो वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

0: मीडियम वेव एक 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमनसब बार्ट डी वेवर के साथ बातचीत जारी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। एक वफाकी जज ने अमरीका में पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत के हक को महदूद करने की ट्रंप इंतजामिया की हालिया कोशिश पर रोक लगा दी है। नेपाल में अचानक आए सैलाब से हुई हलाकतों की तादाद बढ़कर 1250 से ज्यादा हो गई है, जबकि 4000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। खातिन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेवर नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत कर रहे हैं। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। मुज़ाकरात के बाद कई माहदों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। आज सुबह बेल्जियम के वजीर आजम राजघाट गए और महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। बेल्जियम के वजीर आजम कल रात भारत के तीन रोजा दौरे पर राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। वजीर आजम डी वेवर के हमराह बेल्जियम के वजीर दिफा भी हैं। पिछले साल फरवरी में वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है। मौजूद मेहमान कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII के एक कारोबारी प्रोग्राम से भी क्लीदी खिताब करेंगे। ये प्रोग्राम भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहदे के तनाजुर में मुनक्किद किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि उनका ये दौरा भारत और बेल्जियम की शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने और तजारत व सरमायाकारी दिफा व सलामती और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तआवुन को उसत देने का मौका फराहम करेगा। भारत और बेल्जियम के दरमियान तीन सदियों पर मुहित तारीखी ताल्लुकात हैं। बेल्जियम उन अव्वलीन यूरोपीय मुल्कों में शामिल है जिसने सितंबर 1947 में आजाद भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक अहम इक्तिसादी शराकतदार है। 2025-26 में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत 13 अरब डॉलर से तजावज कर गई। हीरों की तजारत दोनों ममालिक की बाहमी तजारत का एक अहम हिस्सा है क्योंकि एंटवर्प दुनिया में हीरों का एक बड़ा आलमी मरकज है। बेल्जियम भारत में सरमायाकारी का भी एक अहम जरिया है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 के दरमियान बेल्जियम से भारत में बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI तकरीबन 4.2 अरब डॉलर रही। साइंस टेक्नोलॉजी और इख्तरा में ताउन दोनों ममालिक की शराकतदारी का एक अहम सुतून है। भारत और बेल्जियम ने काबिल तजदीद तवानाई माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और पायदारी के शोबों में ताउन को फरोग दिया है। दिफाई ताउन भी दोनों ममालिक की शराकतदारी का एक अहम नया पहलू बनकर उभर रहा है जो दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक और सलामती से मुतालिक शोबों तक उसत देने की अक्कासी करता है। बेल्जियम की जानिब से नई दिल्ली में दिफा के अताशी मुकर्रर करना दिफाई ताउन को मजीद उसत देने के उसके इरादे को बखूबी जाहिर करता है। भारत निजात अफराद दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम वसीले की हैसियत

0: परेशानियों का सामना करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात मीडियो वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब हैं। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

अंजना फिल्म का नगमा भी आपने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में सुना। अब सुनिए शागिर्द फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था हाथी मेरे साथी फिल्म से। इससे पहले आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को सुना, फिल्म का नाम था पेड़ा का घर। फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है भगवत गीता।
1: भगवत गीता हिंदुस्तान का मुकद्दस सहीफा भी है और हिंदुस्तानी फलसफे का सरचश्मा भी। दुनिया के अदबियात में गीता का दर्जा बेहद बुलंद है और इसका ये दर्जा उस वक्त तक कायम उदायम रहेगा जब तक इंसान उन चीजों पर गौर व फिक्र करते रहेंगे जो उसके तजर्बे एहसासात और मादे से बालतर हैं। और जब दुनिया में रूह और रूहानियत का तसव्वुर मौजूद रहेगा हिंदुस्तान के इस सहीफे से तमाम अकवाम इस्तिफादा करती रहेंगी। गीता महाभारत के छठे बाब में शामिल है। इसके जमाने तसनीफ के मुतालिक तारीखी शहादतें मौजूद नहीं है इसलिए कि कदीम हिंदुस्तान में तारीख और रवायात में बहुत ज्यादा इम्तिजाज कर दिया जाता था और इस बात को हकीकतन कोई अहमियत भी नहीं है कि कोई वाकया कब हुआ। तारीख साज अवामिल में देखना यह होता है कि कोई वाकया किस तरह हुआ और उससे इंसानियत ने क्या सबक सीखा। ताहम इसकी शहादतें मौजूद है कि महाभारत की जंग जरूर हुई थी और इस जंग के वाकयात बाद में महाभारत की शक्ल में तहरीर हुए और गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। महाभारत के कदीम तरीन तसनीफ के मुतालिक ये अंदाजा लगाया जाता है कि उस वक्त की तसनीफ हो सकती है जबकि अथर्वेद उपनिषदें तसनीफ हुई थी। ये जमाना हजरत मसीह से 1000 साल कबल माना जाता है। एक अंग्रेज मौर्रिख का ख्याल है कि मसीह से निसफ सदी पहले महाभारत की तसनीफ हुई और इसमें बहुत से इजाफे किए गए जो सन ईस्वी तक होते रहे। बहरहाल ये बात यकीनी है कि महाभारत की लड़ाई के सैकड़ों बरस बाद रज़्मनामा महाभारत की तसनीफ की गई। यूनानी मौर्रिखों और कतबात वगैरह में ये मालूम होता है कि हजरत मसीह से 4 सदी पहले ये किताब मौजूद थी। इसलिए वाज़े अल्फाज में ये नहीं कहा जा सकता कि गीता को नज्म का जामा पहनाने के बाद उसे कब महाभारत में जम किया गया। मुहक्किकीन का यह भी ख्याल है कि गीता बाकायदा नज्म है और इस किस्म की किताब है जैसे कदीम उपनिषदें। तर्ज बयान सादा है। जहां तक नफ्स मजमून का ताल्लुक है गीता में वेदों की तालीम की रूह को समेटा गया है। गीता में मरकूम है कि जब अधर्म तरक्की पर होता है और धर्म सिमटने लगता है तो खुदा अपने अवतारों के जरिए से इंसानों की हालत दुरुस्त करता है। इस कौल की रोशनी में कहा जा सकता है कि वेदों के बाद के जमाने की सोसाइटी के लिए भगवत गीता एक मुकद्दस सहीफे के तौर पर तख्लीक हुई। नजात का जो तसव्वुर गीता में पेश किया गया है उसके तीन पहलू हैं। अव्वल बजरिया अमल, दोयम बजरिया इरफान और स्वयं बजरिया इश्क हकीकी। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के दरमियान जो मकालमा है उसमें नजात के इन तसव्वुरात को इंतहाई फलसफियाना अंदाज से बयान किया गया है। अमल के जरिए नजात हासिल करने के लिए ऐसे अमाल की जरूरत पर जोर दिया गया है जो रियाजत और मजहबी उसूलों की पाबंदी के हामिल हो। इरफान के जरिए नजात का तरीका नफ्स हवास को जेर करना है। गीता के मुताबिक इल्म रूहानी के जरिए से मार्फत इलाही हासिल की जाए और इंसान इतना महव हो जाए कि उसकी आत्मा परमात्मा

चालबाज फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज का गाया हुआ। अब सुनिए पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल को फिल्म है दयावान।

0: राम लखन फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है।

0: सरकार ने भारत की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी और मकामी करेंसी जारी करने से मुतालिक दर्जाबंदी को एक दर्जा बढ़ाकर बीबीए प्लस से ए माइनस कर दिया है। जेसीआर ने भारत की कंट्री सीलिंग को भी एक दर्जा बढ़ाकर ए कर दिया है। वजारती खजाना ने कहा कि दर्जाबंदी बढ़ाए जाने से भारत की मजबूत माशी तरक्की की बुनियाद को मजबूत करने से मुतालिक माशी पॉलिसियों की इफादियत और माशी निजाम की बेहतर हालत की अक्कासी होती है। वजारती खजाना ने कहा है कि दर्जाबंदी से मुतालिक ये इजाफा चैलेंजिंग आलमी सूरतहाल के तनाजुर में पेश आया है और इससे पायदार तरक्की, मौसर माशी पॉलिसियों, बेहतर माशी मैयार और एक मजबूत तर माशी निजाम के जरिए भारत की मुसलसल मजबूत होती माशी बुनियाद की अक्कासी होती है। एक वफाकी जज ने अमरीका में पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत के हक को महदूद करने की ट्रंप इंतजामिया की हालिया कोशिश पर रोक लगा दी है। तारिकीन वतन के हकूक के हामियों ने दलील दी थी कि नए हुक्म से अमरीकी आईन की खिलाफ वर्जी होती है, जिसके बाद अमरीका के जिले जज डेबोरा बोर्डमैन ने इब्तदाई हुक्म इम्तनाई जारी किया। यह फैसला अमरीका की सुप्रीम कोर्ट के 30 जून के उस फैसले के कुछ ही अरसे बाद आया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि ट्रंप के 2025 के इब्तदाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आईन की 14वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होती है। 14वीं तरमीम अमरीकी सरजमीन पर पैदा होने वाले बच्चों को उनके वालिदैन की इमिग्रेशन के कते नजर शहरियत की जमानत देती है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1250 हो गई है। इमदादी कारकुन बारिश और मलबे का मुकाबला करते हुए उन अफराद को तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में ख्याल है कि वो भोटेकोशी दरिया के रास्ते में मौजूद सुरंगों और नेपाल में जेर जमीन बिजली घरों में फंसे हुए हैं। वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा कि आलमी बरादरी के सामने इस कुदरती आफत के आबो हवा की तब्दीली से ताल्लुक को भरपूर अंदाज में उठाया जाना चाहिए। इस दौरान पिछले हफ्ते आने वाले सैलाब के बाद लापता मकामी अफराद के अहले खाना ने अलामती तौर पर उनकी आखिरी रसूम अदा की। लापता अफराद में 583 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों, जिनमें नेपाल की फौज भी शामिल है, की मुश्तरका फोर्सेज ने अब तक हेलीकॉप्टरों और जमीनी रास्तों के जरिए 11,993 अफराद को बचाया है। तलाश और बचाव कार्रवाईयों के लिए तकरीबन 21,314 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। खवातीन के क्रिकेट में आज यूएई में दुबई बैनल अक्वामी स्टेडियम में टी20 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप ए के दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगी। मजकूरा मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इतवार के रोज खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड के खिलाफ 94 रन की बड़ी जीत से अपने मुहिम का आगाज किया था। अगर भारतीय टीम हांगकांग के खिलाफ आज मैच में जीत हासिल करती है तो वो 8 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। भारत पहली बार हुंडई आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज की मेजबानी करेगा। ये मुकाबले अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 सितंबर से 9 सितंबर तक मुनाकिद होंगे, जिनमें 20 ममालिक के 100 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमनसब बार डे वेवर के साथ बातचीत कर रहे हैं। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए माइनस कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। एक वफाकी जज ने अमरीका में पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत के हक को महदूद करने की ट्रंप इंतजामिया की हालिया कोशिश पर रोक लगा दी है। नेपाल में अचानक आए सैलाब से हुई हलाकतों की तादाद बढ़कर 1250 से ज्यादा हो गई है, जबकि 4000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हम मनसबा डी वेवर के साथ बातचीत कर रही हैं। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। एक वफाकी जज ने अमरीका में पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत के हक को महदूद करने की ट्रंप इंतजामिया की हालिया कोशिश पर रोक लगा दी है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर अभी तक आपने उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात सुनी। 1:15 होने को है, पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, नरसिम्हा फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था और गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 18 लाख यूनिट बिकने के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक उस वर्ष का 10वां सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। इस फिल्म में सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी जबरदस्त साबित हुई, जिसकी वजह से उन्होंने खूब सराहना मिली। पर ओमपुरी जी की बात ही कुछ अलग थी। खलनायक की भूमिका निभाते हुए ओमपुरी जी ने बुराई को एक अविस्मरणीय चेहरा दिया, मतलब एक्टिंग ऐसी कि किसी को भी देखकर विलन पर गुस्सा आ जाए। श्रोताओं, यही तो होती है असली एक्टिंग, जो किसी भी रोल में रम जाए। और इसी वजह से 37वें फिल्मफेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए ओमपुरी जी ने ये अवार्ड भी जीता।

श्रोताओ, नरसिम्हा फिल्म की कहानी एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय युवक नरसिम्हा यानी सनी देओल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका परिवार एक सांप्रदायिक दंगों में मारा जाता है। इस हादसे के बाद वो टूट जाता है और शराब व अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। वो शहर के सबसे ताकतवर और भ्रष्ट जमींदार बाबजी यानी ओमपुरी का सबसे खास यानी राइट हैंड बन जाता है। परिवार को खोने के बाद उसमें इंसानियत और इमोशंस नहीं बचती और वो बुराई की दुनिया में कदम रख देता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब नरसिम्हा की मुलाकात अनीता यानी डिंपल कपाड़िया से होती है और उसकी सोई हुई

इंसानियत वापस जाग उठती है, खासकर कि तब जब बागजी अपनी बेटी मीनू और उसके प्यार रवि जो अनीता का भाई है उसे मारने का ऑर्डर देता है। जब नरसिम्हा को पता चलता है कि उसके परिवार को मारने वाले दंगे के पीछे खुद बाबजी का ही हाथ था तो वो बाबजी के खिलाफ बगावत करता है और बदला लेता है। अंत में मीनू और रवि एक हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नरसिम्हा और अनीता भी एक हो जाते हैं।

श्रोताओं, फिल्म नरसिम्हा में बाबजी की बेटी मीनू के किरदार के लिए पहले आयशा झुलका को चुना गया था, जो उनकी पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन बाद में उनकी जगह राजेश्वरी सचदेव को लिया गया। यह फिल्म राजेश्वरी की भी पहली फिल्म होने वाली थी। उन्होंने कुछ दिनों तक शूटिंग की, लेकिन शूटिंग के दौरान उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिस वजह से उनकी जगह उर्मिला को ले लिया गया। श्रोताओं, ये दूसरी बार था जब उर्मिला ने सनी देओल के साथ काम किया था। इससे पहले उन्होंने 1987 में रिलीज हुई फिल्म डकैत में उनके साथ काम किया था।

श्रोताओं, नरसिम्हा फिल्म में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा से प्रेरित होकर इस सीन को बेहद भव्य बनाया गया था। बाप जी जब नरसिम्हा को एक खम्बे में चुनवा देता है, तब सनी देओल उस भारी खम्बे को चीरते हुए गुस्से में बाहर निकलते हैं और बाप जी के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर देते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है और फिल्म का अंत हो जाता है जहां अच्छाई की जीत होती है।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपने होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अपने बेल्जियम दे हमरुतबा बार डी वेवर नाल नवी दिल्ली विच दुवल्ली गलबात, कई समझौतियां दे दस्तखत। भारत ते बेल्जियम रखे सहयोग गलबात उच्च पदरी दौरिया सिखलाई ते समर्थन।

0: धीरे दिफा राजनाथ सिंह और बेल्जियम के उनके हम मनसब फ्लो फ्रेंकन ने बातचीत आला सतही दौरों और सलाहियत साजी के जरिए बाहमी दिफाई ताल्लुकात को वसत देने का आग्रह किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में आला सतही कारोबारी गोलमेज में सरमायाकारों से मुलाकात की। उन्होंने ये बात दोहराई, आलमी उथल पुथल और चैलेंजों के बावजूद भारत की तवज्जो इक्तिसादी तरक्की पर है। बिहार में दरियाए गंगा में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिससे नए इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में चेन्नई में भारत के किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। आज भारत और बेल्जियम ने दिफाई इश्तराक के सिलसिले में दिलचस्पी के खत और काबिल तजदीद तवनाई, साइबर जराइम और सिफारती तरबियत के शोबों में मुफाहमतनामों समेत मुख्तलिफ मुआहदों का तबादला किया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज बेल्जियम के अपने हम मनसब बाद दे वेवे के साथ नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल किया। अपने प्रेस बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि दुनिया एक बड़ी उथल पुथल के मरहले से गुजर रही है और दुनिया के कई हिस्सों में लड़ाई जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि यह गैर यकीनी हर शोबे को मुतासिर कर रही है, चाहे वो खुराक हो, ईंधन हो या सप्लाई चेन। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय मईशत इस चैलेंज भरे माहौल में भी अपनी रफ्तार बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि पिछली सहमाही में भारत ने 7.8% की तरक्की दर्ज की। उन्होंने कहा कि आज भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया के लिए एतमाद और नए इम्कानात का एक जरिया बन रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बेल्जियम ताल्लुकात तारीख के सफात में दर्ज हैं। उन्होंने पहली जंग अजीम के दौरान बेल्जियम में हजारों भारतीय सिपाहियों की दलेरी और कुर्बानी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुश्तरका जमहूरी अखबार बाजार और मईशत और अवाम से अवाम के दरमियान राबते भारत और बेल्जियम को फितरी शराकतदार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि दो तरफा इश्तराक के इम्कानात रिवायती शोबों से वसत पाकर दफा और माहौल के लिए साजगार तवानाई जैसे कलीदी शोबों तक पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि माहौल के लिए साजगार तवानाई और पायदार सप्लाई चेन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीहात हैं। भारत और बेल्जियम ने बाहमी तजारत को आइंदा 5 बरस में 2 गुना करने से इत्तफाक किया है।
1: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
0: राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत और बेल्जियम के दरमियान मुस्तहकम और देरीना ताल्लुकात हैं, जो बाहमी एहतराम, जमहूरी अकदार और जवाबित से मुंसलिक आलमी निजाम के मुश्तरक आजम पर मबनी हैं। नई दिल्ली में बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रेंकन्स के साथ अपनी वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वजीर दिफा ने यह बात कही। जनाब सिंह ने कहा कि दुनिया को बड़े जोग्राफियाई और सियासी और इकतसादी उथल पुथल का सामना है और उन्होंने इन चैलेंजों से निपटने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल में बेल्जियम जैसे एक दोस्त और एक अहम शराकतदार से मुलाकात नजरियात और ख्यालात के तबादले का एक मुफीद मौका फराहम करती है। बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रेंकन ने भारत बेल्जियम दोस्ती को वसत देने को उजागर किया। मीटिंग के दौरान दोनों वजरा ने दिफाई इश्तराक से मुतालिक बातचीत आला सतह के दौरों तरबियत और सलाहियत साजी के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को वसत देने से इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत की और भारत और बहरुल काहिल में बहरी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक की जरूरत को तस्लीम किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में एक आला सतह की तजारती गोलमेज मीटिंग में सरमायाकारों के सामने भारत की इसलाह पर मबनी तरक्की को पेश किया। 2026-27 की पहली सहमाही में भारत के इक्तिसादी नमो 7.8 और सरमायाकारी के लिए मौजूं माहौल को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा

0: कि भारत आलमी चैलेंजों और तनाजात के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली एक बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की रहनुमाई में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने इंजबाती यकीन दहानी में इजाफा किया है और फाइलों और कागजी काम को कम किया है। मोहतरमा सीतारमन ने कोविड-19 वबा के बाद से जारी आलमी इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान माली इस्तेहकाम और कायदों के लिए भारत के अज़्म को दोहराया। बिहार में पटना और कई दीगर अजला में गंगा की आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके सबब नए इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। कुदरती आफात से निमटने के महकमे ने गंगा की आबी सतह बढ़ने के तनाजुर में अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक इस नदी की आबी सतह पटना के गांधी घाट पर आज रात सैलाब की सतह को पार करने के इम्कान हैं और मोकामा के हतीडा में कल दोपहर यह सैलाब के खतरे की सतह को पार कर जाएगा। झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता कुछ रोज से शदीद बारिश के पेश नजर बदस्तूर सैलाब और पानी भरने जैसी सूरत हाल जारी है। ताहम बारिश में कमी आने के बाद कुछ दरियाओं में सतह आब में भी कमी आई है, लेकिन इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रांची में गीतल सूद बांध के चार गेट
2: खोल दिए गए हैं। सुवर्ण रेखा दरिया के तेज बहाव के सबब लोगों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। इंतजामिया दरियाओं से मुत्तसिल इलाकों और नशीबी इलाकों में मुसलसल करीबी नजर रखे हुए हैं। इस दौरान रामगढ़ के मगनपुर गांव के गोला ब्लॉक में मुख्तलिफ मकानात गरकाब हो गए, लेकिन आज सुबह से बारिश न होने की वजह से पानी की सतह में कमी आ रही है। इंतजामिया ने दरियाओं के आसपास और नशीबी इलाकों में रह रहे लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और किसी हंगामी सूरत हाल में सरकारी हिदायत पर अमल करने को कहा है। रांची से मुनीश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने आज जोर देकर कहा कि भारत इख्तराब मेयार और कीमतों की बुनियाद पर ऑटोमोबाइल सनत में आलमी नंबर एक दर्जा हासिल करने की सलाहियत रखता है। नई दिल्ली में भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की सोसाइटी SIAM की सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि यह शोबा, जिसकी मौजूदा कदर 22,75,000 करोड़ रूपये से ज्यादा है, मुल्क की GST में तकरीबन 15% का तआवुन देता है और तकरीबन 4 करोड़ बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा करने में मदद देता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि 2025-26 के दौरान भारत की ऑटोमोबाइल बरामदात में 24% का इजाफा हुआ। मरकजी वजीर ने इस बात पर एतमाद का इजहार भी किया कि भारत की इक्तिसादी तरक्की में सनअत का तआवुन जारी रहेगा। बैडमिंटन में भारत के मशहूर खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के आलमी नंबर 9 खिलाड़ी विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स जुमरे के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अगले मैच में श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के ली च्यूक यी से होगा। उधर खवातीन सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया, लेकिन वो जापान की टोमोका मियाजाकी से 17-21, 21-18 और 16-21 से हार गई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बेल्जियम ने आइंदा 5 बरस में दो तरफा तजारत को दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमबनसब बार डे वेवर के साथ दो तरफा ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर बातचीत की। काबिले तजदीद तवानाई, साइबर जराइम और सिफारती तरबियत के शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बेल्जियम के उनके हमबनसब थियो फ्रैंकन ने बातचीत आला सतही दौरों और सलाहियत साजी के जरिए बाहमी दिफाई ताल्लुकात को वसत देने का अज़्म किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में आला सतही कारोबारी गोलमेज में सरमायाकारों से मुलाकात की। उन्होंने ये बात दोहराई कि आलमी उथल पुथल और चैलेंजों के बावजूद भारत की तवज्जो इक्तिसादी तरक्की पर है। बिहार में दरियाए गंगा में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिससे नए इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। बैडमिंटन में शिंजेन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India and Belgium agree to double bilateral trade in the next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi. Agreement signed in areas of renewable energy, cyber crime.

0: विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक

0: रणनीति और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व के नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रूपये है। के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 12% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरूआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर

0: पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
2: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भविष्य रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। यह मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी रेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्र प्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग सुनना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी पहचान ही एक दूसरे के साथ जुड़कर बनी होती है। और वो जोड़ी है संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। लेकिन आज हम इस मशहूर जोड़ी की बात थोड़ी अलग तरह से करेंगे। आज हमारी कहानी का केंद्र है प्यारेलाल शर्मा के प्यारेलाल, जिनके हाथ में वायलिन था, जिनकी उंगलियों में सुर थे और जिनके सामने बैठा पूरा ऑर्केस्ट्रा मानो उनकी धुन पर सांस लेता था।

1963 में आई फिल्म पारस मणि से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी ने फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनानी शुरू की। फिल्म के गीत वो जब याद आए और हंसता हुआ नूरानी चेहरा बेहद लोकप्रिय हुए, लेकिन इस सफलता के पीछे केवल धुन बनाने की कला नहीं थी, इसके पीछे था वर्षों का अभ्यास, संगीत की गहरी समझ और ऑर्केस्ट्रेशन पर अद्भुत पकड़। प्यारे लाल शर्मा का जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ। उनके पिता पंडित राम प्रसाद शर्मा स्वयं प्रसिद्ध संगीतकार और ट्रम्पेट वादक थे, पिता ही उनके शुरुआती गुरु बने। कहा जाता है कि महज 8 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन सीखना

जरा सोचिए, एक बच्चा जो घंटों वायलिन का अभ्यास करता है, उसे शायद तभी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आने वाले वर्षों में उसी वाद्य यंत्र की साधना उसे भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे बड़े नामों में शामिल कर देगी। जानते हैं आप, उन्होंने

वायलिन की शिक्षा महान संगीतज्ञ एंथनी गोंजाल्विस से प्राप्त की थी और उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथनी फिल्म में अपने गुरु एंथनी के नाम से गीत बनाकर उनको समर्पित किया। इसी कारण वे ऑर्केस्ट्रा पर भी अपनी पकड़ बना सके।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: see, such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance.
1: अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, आज देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी
1: गोंसाल्विस। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं प्यारे लाल, और आज मैं आपके साथ हूं अर्चना गोयल। दोस्तों, प्यारे लाल की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। कम उम्र में ही उन्हें वायलिन बजाकर परिवार की मदद करनी पड़ी। स्टूडियो से ही उन्हें फिल्म संगीत की वास्तविक दुनिया को करीब से देखने का मौका मिला। वाद्य यंत्र, रिकॉर्डिंग, गायक, संगीतकार और ऑर्केस्ट्रा, इन सबके बीच उनका अनुभव लगातार बढ़ता गया। इसी बीच उनके जीवन में लक्ष्मीकांत आए। दोनों की उम्र लगभग आसपास थी। दोनों ने संघर्ष देखा था और दोनों में ही संगीत के लिए जुनून था। दोस्ती हुई, संगीत का रिश्ता बना और आगे चलकर यही दोस्ती भारतीय फिल्म संगीत की यादगार जोड़ियों में बदल गई। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, करीब चार दशक तक ये जोड़ी फिल्म संगीत पर छाई रही। दोस्ती, मिलन, दो रास्ते, बॉबी कर्ज, प्रेम रोग, हीरो, रोटी कपड़ा और मकान, तेजाब, राम लखन, खलनायक जैसी फिल्मों के संगीत ने अलग अलग पीढ़ियों के श्रोताओं को अपना दीवाना बना दिया।

0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती

लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही रही कि दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करते थे। प्यारे लाल ने एक इंटरव्यू में अपने और लक्ष्मीकांत के रिश्ते को याद करते हुए कहा था कि दोनों की पहचान एक दूसरे के बिना अधूरी है। यही साझेदारी उनकी सफलता का बड़ा राज थी। लक्ष्मीकांत की धुन, प्यारे लाल ऑर्केस्ट्रेशन और दोनों मिलकर एक ऐसा संगीत रचते थे कि जिसे आज भी सुनते ही पुराने दिनों की खुशबू आने लगती है। प्यारे लाल जी ने एक बातचीत में कहा भी था कि संगीत को अच्छा या बुरा कहने के बजाय ये समझना चाहिए कि अलग अलग समय में संगीत की शैली बदलती है। उनके लिए संगीत खूबसूरत था जैसे रिश्ते खूबसूरत होते हैं। कितनी खूबसूरत सोच है ना।

प्यारे लाल जी को भारतीय फिल्म संगीत में उनके लंबे और महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1998 में लक्ष्मीकांत के निधन के बाद प्यारे लाल ने सक्रिय रूप में बहुत कम फिल्म संगीत किया, लेकिन संगीत से उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। फिल्म ओम शांति ओम के गीत धूम ताना धूम के ऑर्केस्ट्रेशन में भी उनका योगदान रहा। उम्र बड़ी, समय बदला, संगीत की तकनीक बदली, लेकिन प्यारे लाल के हाथों में संगीत की कमान बनी रही। प्यारे लाल के परिवार आज भी चकाचौंध से दूर सादगी भरा जीवन जीता है।

दोस्तों, आज की संगीतमय मुलाकात में हमने जाना उस कलाकार को जिसने सिर्फ धुनों को सजाया नहीं बल्कि धुनों के पीछे एक पूरा संसार खड़ा किया, जिसके हाथ में वायलिन था, जिसके सामने ऑर्केस्ट्रा था और था ये एक ऐसा दोस्त जिसका नाम था लक्ष्मीकांत। दो नाम एक पहचान। कहते हैं संगीत खत्म नहीं होता, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहता है। प्यारे लाल के सुर आज भी हमारे साथ हैं।

साथ हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सामिन, आपको बता दें से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर अपनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम अंदाजे नजर। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

जनाब मोदी ने 10 बरस पहले बेल्जियम के अपने दौरे को याद किया और इस बात पर खुशी का इजहार किया कि गुज़श्ता दहाई में शराकतदारी में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक आइंदा 5 वर्षों में तिजारत को दोगुना करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया एक बड़ी उथल पुथल के मरहले से गुजर रही है और दुनिया के कई हिस्सों में लड़ाई जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि यह गैर यकीनी हर शोबे को मुतासिर कर रही है, चाहे वो खुराक हो, ईंधन हो या सप्लाई चेन। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय मईशत इस चैलेंज भरे माहौल में भी अपनी रफ्तार बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि पिछली सहमाही में भारत ने 7.8% की तरक्की दर्ज की। उन्होंने कहा कि आज भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया के लिए एतमाद और नए इम्कान का एक जरिया बन रही है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत बेल्जियम ताल्लुकात तारीख के सफात में दर्ज हैं। उन्होंने पहली जंग अजीम के दौरान बेल्जियम में हजारों भारतीय सिपाहियों की दिलेरी और कुर्बानी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि दो तरफा इश्तराक के इम्कान रिवायती शोबों से वसत पाकर दिफा और माहौल के लिए साजगार तवानाई जैसे कलीदी शोबों तक पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि माहौल के लिए साजगार तवानाई और पायदार सप्लाई चेन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीहात हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत और बेल्जियम के दरमियान मुस्तहकम और देरीना ताल्लुकात हैं जो बाहमी एहतराम, जमहूरी इकदार और जवाबित से मुंसलिक आलमी निजाम के मुश्तरक आज़म पर मबनी है। नई दिल्ली में बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रैंकन के साथ अपनी वक्त सतह की बातचीत के दौरान वजीर दिफा ने यह बात कही। जनाब सिंह ने कहा कि दुनिया को बड़े जोग्राफियाई और सियासी और इकतसादी उथल पुथल का सामना है और उन्होंने इन चैलेंजों से निपटने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इस सूरत हाल में बेल्जियम जैसे एक दोस्त और एक अहम शराकतदार से मुलाकात नजरियात और ख्याल के तबादले का एक मुफीद मौका फराहम करती है। बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रैंकन ने भारत बेल्जियम दोस्ती को वसत देने को उजागर किया। मीटिंग के दौरान दोनों वजरा ने दिफाई इश्तराक से मुतालिक बातचीत, आला सतह के दौरों, तरबियत और सलाहियत साजी के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को वसत देने से इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत की और भारत और बहरुल काहिल में बहरी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक की जरूरत को तस्लीम किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में एक आला सतह की तिजारती गोलमेज मीटिंग में सरमायाकारों के सामने भारत की इस्लाह पर मबनी तरक्की को पेश किया। 2026-27 की पहली सहमाही में भारत की इकतसादी नमू 7.8 और सरमायाकारी के लिए मौजू माहौल को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत आलमी चैलेंजों और तनाजात के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली एक बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने इंतबाती यकीन दहानी में इजाफा किया है और फाइलों और कागजी काम को कम किया है। मोहतरमा सीतारमन ने कोविड-19 वबा के बाद से जारी आलमी इकतसादी चैलेंजों के दरमियान माली इस्तेहकाम और कायदों के लिए भारत के अज़्म को दोहराया। बिहार में पटना और कई दीगर अजला में गंगा की आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके सबब नए इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। कुदरती आफात से निपटने के महकमे ने गंगा की आबी सतह बढ़ने के तनाजुर में अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक इस नदी की आबी सतह पटना के गांधी घाट पर आज रात सैलाब की सतह को पार करने के इम्कान है और मोकामा के हाथीदा में कल दोपहर यह सैलाब के खतरे की सतह को पार कर जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जनूबी खित्तों के सभी जोन के 30 मकामात पर एक साथ तलाशी की बड़ी कार्रवाई अंजाम दे रही है जिसका ताल्लुक मुंशियात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात से है। ईडी ने कहा है कि तलाशी की ये कार्रवाइयां नशा मुक्त भारत के तहत अंजाम दी जा रही हैं। उसने मजीद कहा कि जिन मकामात पर तलाशी ली जा रही है वो केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में है। ये कार्रवाइयां 8 मुख्तलिफ मामलात के सिलसिले में अंजाम दी जा रही हैं जिनकी काले धन को जायज बनाने की रोकथाम से मुतालिक कानून 2002 के तहत तहकीकात की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में मगरबी बंगाल में कोलकाता के 11 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रही है। इस मामले में कोहिनूर पावर

0: प्राइवेट लिमिटेड मुलविस है। ईडी के एहलकारों के मुताबिक इस कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट पावर प्लांट तामीर करने के लिए बैंकों से कर्ज लिया था। कंपनी ने इस कर्ज को जाती फायदे के लिए दीगर ग्रुप कंपनियों को दे दिया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने आज जोर देकर कहा कि भारत इख्तरा मेयार और कीमतों की बुनियाद पर ऑटोमोबाइल सनत में आलमी नंबर एक दर्जा हासिल करने की सलाहियत रखता है। नई दिल्ली में भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की सोसाइटी SIAM की सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि यह शोभा, जिसकी मौजूदा कदर 22,75,000 करोड़ रूपये से ज्यादा है, मुल्क की GST में तकरीबन 15% का तआवुन देता है और तकरीबन 4 करोड़ बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा करने में मदद देता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि 2025-26 के दौरान भारत की ऑटोमोबाइल बरामदात में 24% का इजाफा हुआ है। बैडमिंटन में भारत के मशहूर खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के आलमी नंबर 9 खिलाड़ी विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल जुमरे के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अगले मैच में श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के ली चिंग यू से होगा। उधर खवातीन सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन वो जापान की तोमोका मियाज़ाकी से 17-21, 21-18 और 16-21 से हार गईं। भारत और फ्रांस ने टेक्सटाइल और फैशन शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर पेरिस में नए मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद आलमी बाजार में भारतीय टेक्सटाइल और हुनरबंदी को फरोग देना है। टेक्सटाइल वजारत में सेक्रेटरी नीलम शामी राव की मौजूदगी में भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और फ्रांस की कंपनी के दरमियान मुफाहमतनामे का तबादला किया गया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और बेल्जियम ने आइंदा 5 बरस में दो तरफा तजारत को दोगुना करने से इतफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हम मनसब बार्ट डी वेवर के साथ दो तरफा ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर बातचीत की। काबिले तजदीद तवानाई, साइबर जराइम और सफारती तरबियत के शोबों में मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बेल्जियम के उनके हम मनसब थियो फ्रैंकिन ने बातचीत आला सतही दौरों और सलाहियत साजी के जरिए बाहमी दिफाई ताल्लुकात को वसअत देने का आज़्म किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में आला सतही कारोबारी गोलमेज में सरमायाकारों से मुलाकात की। बिहार में दरियाए गंगा में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिससे नए इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में शेंजन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में समीर का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया है नदीम शरवन ने। फिल्म है राज़।

अपनी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश आशिकी फिल्म का नगमा कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में, नगमा निगार रानी मलिक, नौशाद नदीम शरवन।

0: तो हम भूल जाते हैं, तो फिर मशीन का सहारा लेते हैं। गोया कि मशीन ह्यूमन होती जा रही है
1: जी,
0: और हम इनह्यूमन होते जा रहे हैं। यानी मशीन जिस तरह ह्यूमन होती जा रही है, तो वो जो ह्यूमन हो रहे हैं, जिसका मतलब ये कुछ अखलाकी कमियां हैं, अखलाकी कुछ महरूमियां हैं, और जो हम उससे भर की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, उस भरपाई के लिए हमारे जहन जाता है तालीमी निजाम की तरफ कि हमारे पास क्या तरीकेकार होना चाहिए, किस तरह से।
1: डॉक्टर सैयद रजा साहब, हम चाहेंगे कि आप इस नजरिए के बारे में क्या सोचते हैं।
2: देखिए, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब का कि उन्होंने पूरी इस गुफ्तगू का एक नहज, एक पैटर्न जो है शो में एक क्लियर कर दिया
1: जी।
2: उससे गुफ्तगू जो है बहुत आसानी से आगे बढ़ सकेगी। सामने जैसे कि एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि बहुत ही मायूसकुन माहौल है अखलाकी अकदार के ताल्लुक से और हमारा जो तालीमी निजाम उसके ताल्लुक से। देखिए, जो हमारा पूरा तालीमी निजाम है, सिर्फ तालीमी निजाम ही नहीं बल्कि जो पूरी हमारी जिंदगी है, जो हमारा पूरा लाइफ स्टाइल है, उसमें अखलाकियात का एक बहुत ही अहम किरदार है। और जब तक कि हमारे तालीमी निजाम में उन वैल्यूज को, उन मोरलिटी को, उन अखलाकियात को हम मद्देनजर नहीं रखेंगे, तब तक जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा शानदार माजी है, उससे हम मुनहरिफ होते जाएंगे। यही वजह है कि जब मौजूदा तालीमी निजाम की बात आती है तो सबसे ज्यादा, चाहे किसी भी तरह की हुकूमतें हों, किसी भी आइडियोलॉजी के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, वो अखलाकी अकदार पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। मौजूदा जो तालीमी निजाम है उसमें सब कुछ है मगर अखलाकी अकदार नहीं है। पुराना जो तालीमी निजाम था उसमें अखलाकी अकदार था, बहुत सारी चीजें नहीं थी। इसकी वजह यह है कि देखिए, हम एक बाजार कल्चर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे एक निजाम में प्राइवेटाइजेशन आ गया है। हम तालीम को ये सोच करके हासिल करते हैं कि इसके बाद हमें रोजगार हासिल करना पड़ेगा। पुराना जो तालीमी निजाम था उसमें ये सब चीजें नहीं थी। उसमें वालदैन अपने बच्चों को जब स्कूल में और कॉलेजेस में भेजते थे तो उनके सामने ये बातें भी जहन में रहती थी कि जो मॉरल वैल्यूज हैं जिंदगी के, उसको वो सीखेगा। और इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आज हिंदुस्तान में, जिनका एक शानदार माजी रहा है अखलाकी अकदार के हवाले से, उन्होंने तालीमी निजाम को भी दुरुस्त किया और साथ साथ अखलाकी निजाम को भी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पूरा एक सिस्टम था इस जमाने में, वो तालीम से ज्यादा वहां के मॉरल वैल्यूज थे, वहां की अखलाकियात थी। वहां जब बच्चे पढ़ करके निकलते थे तो तालीम से भी आरास्ता होते थे, और जो उनका पूरा लाइफ स्टाइल था, उनकी जो गुफ्तगू थी, जो उनका लिबास था, वो भी उनके पूरी अखलाकियात और उनके पूरे माजी का पता बताता था। लिहाजा मौजूदा दौर में आज किसी भी आइडियोलॉजी का आदमी हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, मैं किसी मजहब से इस चीज को महसूस नहीं कर रहा हूं, वो परेशान है। वो परेशान ये है कि बच्चे एजुकेटेड तो हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन वो हमारा जो पूरा अखलाकी निजाम अवदार है उससे वो बहुत पीछे हो गए। जैसा कि प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब ने कहा कि बहुत ही मायूसकुन माहौल है। इस पर सोचने की जरूरत है, इस पर जोर देने की जरूरत है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बन रही है उसमें इस बात को भी सामने रखा जाए कि अगर कोई बच्चा स्कूल में आए, कोई स्टूडेंट कॉलेज में आए, तो वो ठीक है मॉडर्न एजुकेशन भी सीखे, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने अकदार को, वो अपने पूरे सिस्टम को, वो अपनी शानदार माजी को किस तरह से प्रिजर्व कर सकता है, इसको भी सोचने की जरूरत है।
1: डॉक्टर मजूम अहमद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अखलाकी अकदार और हमारा जो तालीमी निजाम है इसके ऊपर?
3: मैं इसे दूसरे पहलू से जोड़ता हूं, और मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा कि ये पेश नजर मौजू जो है इसके अंदर अखलाकी अकदार और हमारा तालीमी निजाम में तीन असलाहत हैं। पहली इस्तलाह जो अखलाकियात है, दूसरी अकदार है, और तीसरी इस्तलाह जो है वो हमारा तालीमी निजाम है। मैं पहलू बा पहलू और एक के बाद एक इसके बारे में, इसकी तारीफ के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि अखलाकियात क्या है या उसकी तारीफ क्या है। देखिए, अखलाकियात समाज का वो अंसुर है जिसकी मौजूदगी में तहजीब याफ्ता समाज की तामीर की जा सकती है। अखलाक इंसान की वो मुनफरिद खूबी है जो इसकी अच्छाइयों को अयां करती है। सही या गलत और अच्छे या बुरे नजरियात का तसव्वुर अखलाक कहा जा सकता है। अखलाकियात ही के पेश नजर हम किसी काम को करने या ना करने का फैसला ले पाते हैं। अखलाकियात की बुनियाद पाकी, ईमानदारी और हकीकत है।

0: की सही आवाज ही अखलाकियात है। मशहूर मौरख और माहिर तालीम मैकाइवर और पेज के मुताबिक अखलाकियात का मतलब उसूलों के उस निजाम से है जिसके जरिए इंसानी जमीर अच्छे और बुरे का इल्म हासिल करता है।
1: जी
0: दूसरी इस तरह इसके अंदर अकदार की थी। अकदार की तारीफ यह है कि किसी भी चीज या काम की अहमियत को वाजा अकदार के जरिए किया जाता है। साथ ही अकदार का मकसद ये जानना भी होता है कि कौन सा काम अच्छा या खराब है या फिर उस काम को करने के लिए कौन सा तरीकेकार बेहतर रहेगा। मैंने के मुताबिक मुल्क जमाना हालात के जिम्न में आम मकसदियत ही अकदार बन जाती है। अकदार आदात और मिसालियात हमारे बर्ताव को हिदायत देते हैं। अखलाकी अकदार यानी पूरी जो टर्म है मैं उसे मिलाकर उसकी तारीफ बताता हूँ कि अखलाकी अकदार क्या होता है। अखलाकी अकदार अच्छे और बुरे अमल का वो मयार है जिसकी मदद से इंसानी बर्ताव को काबू में रखा जाता है। और तीसरी टर्म इसके अंदर ये थी। वहां मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि आजादी से कबल हंटर कमीशन ने अखलाकी तालीम के लिए सबसे पहले अपनी सिफारिशात पेश की थी। आजादी के बाद हायर एजुकेशन कमीशन जो कि 1948 में बना उसने, और उसके फौरन बाद 1952 में मुदालियर कमीशन जिसे हायर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है उसने भी, उसके अलावा 1964 में बने कोठारी कमीशन ने और 1986 की तालीमी पॉलिसी के अलावा मुख्तलिफ तालीमी कमेटियों की सिफारिशात में भी अखलाकी अकदार की तालीम का जिक्र किया गया है और उसकी अहमियत को बहुत ज्यादा वाजे किया गया है। जदीद करिकुलम में बहुत हद तक अखलाकी तालीम पर जोर देने की जरूरत को हमेशा महसूस किया गया है। इसके अलावा तालीमी फलसफे के तमाम फिक्री और नजरियाती मुफक्किरीन मसलन प्रैग्मेटिज्म नेचुरलिज्म आइडियलिज्म के अलावा हिंदुस्तानी माहिर तालीम दयानंद सरस्वती विवेकानंद गांधी जी और महर्षि अरविंद ने अखलाकियात और अकदार की तालीम को बहुत अहम माना है और उसकी जरूरत पर हमेशा रोशनी डाली है। आज की तालीम का मकसद क्या है मैं उस पर भी गुफ्तगू करना चाहूंगा। आजकल तालीम हासिल करने का असल मकसद पढ़ लिख कर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना रह गया। इस जानिब अभी अतीकुल्ला सर ने भी इशारा किया था, और इसके लिए तालीम याफ्ता इंसान कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से करप्शन को आगे बढ़ाने में पढ़े लिखे लोग ही सबसे आगे नजर आते हैं। हमें तालीमी इदारों के जरिए एक ऐसे तालीमी निजाम को पेश करने की जरूरत है जो जिंदगी को जीने की तैयारी का सलीका हमें सिखाए और इब्तदाई मरहले से लेकर स्कूली सतह की तालीम मुकम्मल होने तक मुस्तकबिल में पेश आने वाली परेशानियों से तलबा को आगाह करते रहे।
2: जो हवाले दिए हैं वो बहुत अहम हवाले हैं तारीख के एतबार से भी हमारे यहाँ कब कब किस तरह से इस पर जोर दिया गया, लेकिन अमलन को उसके खास नतीजा नहीं निकला। खुद एनसीईआरटी का भी मेंबर हूं, ये हमेशा जब भी टेक्स्ट बुक्स की बात आती है
1: जी।
2: तो उस वक्त यही सवाल उठता है कि ये अखलाकी सतह पर इसमें हम क्या कमियां रह गई हैं जिनकी हम भरपाई कर सके, ये हमेशा गुफ्तगू का मौजू होता है। इनमें ये भी है कि 71 और 72 में जो नई पॉलिसी कायम बन रही थी उसमें कॉर्नर जो है वो खास उसके नुमाइंदा थे, मेरे दोस्त भी कहलाते हैं, तो उन्होंने भी एक शक के तौर पर रखा था कि अखलाकी सतह पर जो कमियां हमारे टेक्स्ट में है हमारे तालीमी निजाम में है उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो ये आम तौर पर हर दौर में ये गुफ्तगू का मौजू बना रहा है, और आज मेरा ख्याल ये है कि ये इस पर गुफ्तगू से ज्यादा नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि आपने पहली बार ये हिम्मत की है, कोशिश की है सूरत हाल देखकर कि पूरे आलमी सतह पर जो अफरा तफरी का आलम है, जो इंतशार का आलम है, और खानदानी निजाम जिस तरह से टूट रहे हैं, रिश्तों का एहसास जाता रहा है, और जो इज्जत और एहतराम एक दूसरे के लिए होना चाहिए छोटे का बड़े के साथ, बड़े का छोटे के साथ, और ये जो हमारे एक तरह से रोजमर्रा की जिंदगी है सबसे पहले वो सामने आती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। अब इसमें ही यहीं से निकलते हैं वो लोग जो कि आगे चलकर जराइम पेशा बनते हैं, वही लोग जो तशद्दुद पर मायल हो जाते हैं, वही लोग जो कि समाज में अफरा तफरी और इंतशार पैदा करते हैं। अब उनके लिए किसी जाब्ते अखलाक की जरूरत पर जोर दिया गया। अब सवाल यही उठता है कि जाब्ते अखलाक کہ ایک صورت تو وہی جو مذہبی صورت ہے، یہ لفظ جو ہے آیا بھی مذہبی صورت

लव इन टोक्यो, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार थी हसरत जयपुरी, मौसीकार शंकर जयकिशन। और सामने लीजिए सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तेरे नाम फिल्म का ये नगमा।

तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही यार के हंसते ही।

तैयार किए जा। इस फिल्म में नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मुजिकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और समझ लीजिए सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है आया सावन झूम के।

फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, जिसे मुसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और सामने लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में रोटी फिल्म का ये नगमा।

से चक कौन है, यह है उस फिल्म का नाम जिसका नाम हुआ आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है आप तमाम सामईन के लिए, नगमनिगार हसन जयपुरी, मौसिकार शंकर जयकिशन।

0: उन्होंने कहा कि पिछली छमाही में भारत ने 7.8% की तरक्की दर्ज की। उन्होंने कहा कि आज भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया के लिए एतमाद और नए इम्कानात का एक जरिया बन रही है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत बेल्जियम ताल्लुकात तारीख के सफात में दर्ज है। उन्होंने पहली जंग अजीम के दौरान बेल्जियम में हजारों भारतीय सिपाहियों की दिलेरी और कुर्बानी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि दो तरफा इश्तराक के इम्कान रिवायती शोबों से वसत पाकर दिफा और माहौल के लिए साजगार तवानाई जैसे कलीदी शोबों तक पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि माहौल के लिए साजगार तवानाई और पायदार सप्लाई चेन दोनों ममालिक की मुश्तरक तरजीहात हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत और बेल्जियम के दरमियान मुस्तहकम और देरीना ताल्लुकात हैं जो बाहमी एहतराम, जमहूरी इकदार और जवाबित से मुंसलिक आलमी निजाम के मुश्तरक आजम पर मबनी है। नई दिल्ली में बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रैंकिन के साथ अपनी वफ्त सतह की बातचीत के दौरान वजीर दिफा ने यह बात कही। जनाब सिंह ने कहा कि दुनिया को बड़े जोग्राफियाई और सियासी और इकतसादी उथल पुथल का सामना है और उन्होंने इन चैलेंजों से निपटने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इस सूरत हाल में बेल्जियम जैसे एक दोस्त और एक अहम शराकत दार से मुलाकात नजरियात और ख्यालात के तबादले का एक मुफीद मौका फराहम करती है। बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रैंकिन ने भारत बेल्जियम दोस्ती को वसत देने को उजागर किया। मीटिंग के दौरान दोनों उजरा ने दिफाई इश्तराक से मुतालिक बातचीत, आला सतह के दौरों, तरबियत और सलाहियत साजी के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को वसत देने से इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत की और भारत और बहरुल काहिल में बहरी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक की जरूरत को तस्लीम किया। खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में एक आला सतह की तजारती गोलमेज मीटिंग में सरमायाकारों के सामने भारत की इसलाह पर मबनी तरक्की को पेश किया। 2026-27 की पहली छमाही में भारत की इकतसादी नमू 7.8 और सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत आलमी चैलेंजों और तनाजात के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली एक बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड ने इंदिबादी यकीन दहानी में इजाफा किया है और फाइलों और कागजी काम को कम किया है। मोहतरमा सीतारमन ने COVID-19 वबा के बाद से जारी आलमी इकतसादी चैलेंजों के दरमियान माली इस्तेहकाम और कायदों के लिए भारत के अज़्म को दोहराया। माली वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह तरक्की 7.8% बरकरार रहने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बना हुआ है। अमरीका में भारत के सफीर विनय क्वात्रा ने न्यूयॉर्क के नैसडेक में कारोबार शुरू करने के लिए घंटी बजाते हुए ये बात कही। जनाब क्वात्रा ने अप्रैल तथा जून की छमाही में भारत की हालिया GDP शरह तरक्की को उजागर किया और कहा कि मुल्क दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बना हुआ है। जनाब क्वात्रा ने कहा कि मुल्क 2047 तक विकसित भारत के हदफ की जानिब गामजन है। भारत और फ्रांस ने टेक्सटाइल और फैशन शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर पेरिस में नए मुआहदों पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद आलमी बाजार में भारतीय टेक्सटाइल और हुनरमंदी को फरोग देना है। टेक्सटाइल की वजारत में सेक्रेटरी नीलम शामी राव की मौजूदगी में भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन और फ्रांस की कंपनी के दरमियान मुफावतनामे का तबादला किया गया। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन के हमलों और उस पर मगरबी मुल्कों की तरफ से आयद बंदिशों का उसकी मईशत पर खातिर खा असर पड़ रहा है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब अमरीका और यूक्रेन के दरमियान यूक्रेन को जदीद मिजाइल शिकन दिफाई निजाम तैयार करने में मदद फराहम करने के सिलसिले में मुजाकरात जारी हैं। वजीर खारजा रूबियो ने कल एक इंटरव्यू में ईरान के लिए रूस की मदद और यूक्रेन में जंग जारी रखने के बारे में बातचीत करते हुए ये बात बताई। बैडमिंटन में भारत के मशहूर खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कनाडा के आलमी नंबर 9 खिलाड़ी विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल जुमरे के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अगले मैच में श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के ली शिओकियो से होगा। उधर खवातीन सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन वो जापान की तोमोका मियाज़ाकी से 17-21, 21-18 और 16-21 से हार गई। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने आज जोर देकर कहा है कि भारत इख्तरा मेयार और कीमतों की बुनियाद पर ऑटोमोबाइल सनत में आलमी नंबर एक दर्जा हासिल करने की सलाहियत रखता है। दिल्ली में भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की सोसाइटी एसआईएम की सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात बताई। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और बेल्जियम ने आइंदा 5 वर्ष में दो तरफा तिजारत को दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने मनसब बार्ट डी वेवर के साथ दो तरफा ताल्लुक के वसीतर पहलुओं पर बातचीत की। काबिले तजदीद तवानाई, साइबर जराइम और सफारती तरबियत के शोबों में मुफावत नामों पर दस्तखत किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बेल्जियम के उनके हम मनसब थियो फ्रेंकिन ने बातचीत आला सतही दौरों और सलाहियत साजी के जरिए बाहमी दिफाही ताल्लुकात को वसा देने का अजम किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में आला सतही कारोबारी गोलमेज में सरमायाकारों से मुलाकात की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इंडियन में 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सारी शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए
1: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस टीम दी पंजाबी सेवाएं शाम के 5:06 में हो साड़ी दूजी सभा शुरू होती है। सभा की शुरुआत करें सराय के प्रोग्राम के नाल समाचारों झोंक माही दी।

ए ऑल इंडिया रेडियो दासराय की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे किते प्रोग्राम घेन के हाजिर हाँ। कुछ बाता कुछ गीत इस विच असा तुहाडे नाल कुछ फायदेमंद गाला भी करे सा, इस राय के गीत भी तुहा को सुनवे सा। पहला सुनेंदे हाँ जीशम खान रोखड़ी दा गाया गीत।

गीत पसंद आया है ना, ते हुन गाल करें दे हां धरती दी। धरती दी खुशहाली दी, कुदरत वल्लू जो धरती साको मिली है, जिस धरती ते असा टिके थिए हां, इस धरती ते रह के साडी जिंदगी दियां जरूरतां पूरियां थिंदियां पईयां हैं। सब तो पहला इस धरती माँ को सलाम। हुन सवाल है के इस धरती को असा साफ सुथरा किंज रखना है, क्योंकि आबादी बहु देती पई है, ते धरती दे भार वधेंदा पिया है, सफाई भी घाट थी गई है, दरखत कटिंग दे पई है, जिस साल हरियाली घाट दे दी है, ते साडा सारा का ए फर्ज बनेदा है कि धरती को वातावरण को साफ रखें की ते काम थी वे। इंडे वास्ते सरकार बहु कुछ करें दी पई है, पर साडा फर्ज है कि असा बहु गिनती विच दरखत लावने हिन। एक दरखत लावन कीते हर बंदे को अगू आवना चाहिदा है, अपने घर के अपने दफ्तर के चौ चौफेरे हरे पौधे लावन, इस नाल हरियाली थीवे की, कार्बन डाइऑक्साइड घट जासी, ऑक्सीजन की कमी ना थीवे, इंदे वास्ते नीम दे दरखत ते पिपल दे दरखत लावना बहुत चंगा है। तुसी जानदे हो सी कि पिपल दा दरखत 24 घंटे यानी कि देर रात ऑक्सीजन देता है ना बहु वधिया गल। दरखत प्रदूषण को काबू विच करेंदे हिन। आज दे दिया विच प्रदूषण बहु वधेंदा पिया है, जिस नाल साह दिया बीमारियां दिल दिया बीमारियां वधेंदिया पईयां हिन। बंदे दी सेहत चंगी बनी रहवे इस किते साफ हवा विच साह लेना लाजमी है, पर असा की करेंदे पए हां, असा पहला तो लगे दरखत भी कटेंदे पए हां, ते वाला भी कहने लगेंदे इंज किंज।

तुसा महक मलिक दी आवाज विच सुन दे पे हवे। भेनो भेरावो तुसी जानदे हो बाल मासूम थींदे हिन, फूल थींदे हिन, आखा वेंदा कि गिल्ले मिट्टी थींदे हिन, पर जे इन्हा को असा मारदे कुटेंदे हां ता बाला ते बहु माड़ा असर थी सी। इस गाल ते थोड़ा जेहा गौर कीते जावन दी जरूरत है कि बाल मार कुट दा शिकार किथा किथा थींदा है। पहला ता घर विच बहु घरा विच कलेश रहंदा है, लोग गाला कड़ेंदे मार कुट थींदी है ता बाल केदा सहम जासी। घर विच थींदा की है कि बच्चे दी माँ झगड़े का सास नाल, पर कावड़ बच्चे ते मार कुट के कड़ेता। घोट कुवार विच झगड़ा थी गया पर पिता दा कावड़ बाल उत्ते पो गया। बेकसूर बाल इंज कई झावा ते मार कुट दा शिकार थींदा है, पर हिंसा है इंज नहीं थे होना चाहिदा। मजदूरां दे बाला तू मार कुट के मजदूरी करेंदे हिन, ए हिंसा है। इस तरह बाल नाल मार कुट थेवन दिया खबरां वाला बहु जावा तो मिल दिया हिन, पर सोचेंदे हां बाल उत्ते हिंसा दा केदा माड़ा असर पौंदा है। बच्चे दे नरम हां को कड घिनन वाली गल है। मार कुटेन करेंदे रहवन नाल बाल पहला तू भी बहु जिद्दी ते चिड़चिड़े थी वजदे हिन। उन्हां च मार कुटेन करण आले वास्ते डर कावड़ के बदले दी भावना आवा जदी है। बच्चा अपने आप को बेसहारा महसूस करेंदा है, उसका अपने उत्ते भरोसा कि थई गुआच वेंदा है। सब तुम्हारा असर ताई पौंदा है जदन बाल आप वड्या को मित्रों को मारन लगदा है। इस किते बाला नाल नरमी नाल पेश आवना चाहिदा है। उन्हां को मार कुट करेन दी झां ते प्यार नाल समझावो, उन्हां को दुलारो। बाल हिक वारी हथों निकल वंजे ता मुड़ के नहीं आवदे। मैं वाला गाल को दोहरें दी हां कि बच्चे गिल्ली मिट्टी थींदे हिन, जिस तरह दे खिडौने बना घिनो और बन वेंदे हिन। ते हुन प्रोग्राम दे अखीर च सुनेंदे हां एक गीत, आ सजना तेनू अखियां उडीक दियां दिल वाचा मारदा, आजा परदेसिया वास्ताई प्यार दा।

देश में यह प्रोग्राम लेके आशा हाजिर समय आज की इस मसलों तो थोड़ी देर बाद आज की गल पेश की जाएगी। आज की गल तो फौरन बाद यानी पांच बज के 40 मिनट से समय रहेगा प्रोग्राम मजे की महकता। मजे की महक प्रोग्राम तो बाद पंजाबी गीत थोड़ी नजर किते जाएगी।

ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।

ਚੰਡੀ ਕਰਦੇ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਕਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ

राज्य की आर्थिकता का मुख धुरा खेतीबाड़ी है। इथों की उपजाऊ जमीन और नहरी पानी के नैटवर्क सदका खेतीबाड़ी आधारित उद्योगों का वड्डा विकास होया है। अमृतसर तरन तारण की बासमती पूरी दुनिया विच मशहूर है। इस खेत विच सैकड़े आधुनिक राइस शैलर और प्रोसैसिंग यूनिट ने इथों बासमती चौल खाड़ी देशा यूरोप अमरीका विच वड्डे पद्धर ते एक्सपोर्ट किए जाते हैं। गुरदासपुर अते बटाला दे खेतर विच गन्ने दी खेती वड्डी मात्रा विच हुंदी है। गुरदासपुर अते अजनाला वर्गे खेतरां विच सहकारी अते निजी खंड मिलां चल रही ने जो हजारा किसानां अते मजदूरां नूं रोजगार दिंदियां ने। कणक दी भरपूर पैदावार करन माझे विच वपारक पद्धर ते आटा मैदा अते सूजी तैयार करन वालियां वड्डियां मिलां मौजूद ने। डेयरी फार्मिंग अते दुध प्रोसैसिंग पशु पालन माझे दा रवायती धंधा है। वेरका दा मुख प्लांट अमृतसर विच है जो पूरे खेतर विचों दुध इकट्ठा करके दुध दे उत्पाद घ्यो मक्खण पनीर लस्सी तैयार करता है। इस तो अलावा कई प्राइवेट डेयरी प्रोसैसिंग यूनिट भी काम कर रहे हैं।

0: ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
1: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ।
2: ਯੋਜਨਾ ਉਨ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੇ ਲਿਏ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਪ ਜਬ 60 ਸਾਲ ਕੇ ਹੋਗੇ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੜੇ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਗੌਰਵ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿਤਾ ਸਕੋ।
1: ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 9,50,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 3 ਗਾਰੰਟਿਡ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द विवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
4: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का

0: प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तनिषा क्रिस्टो को हार का सामना करना पड़ा। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। आइए श्रोता, आप सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क

0: नामांकन कराए।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। गौतम, अगर बात करें हम आज के कार्यक्रम किसान वाणी की, तो आज हम बहुत सारी चीजें हमारे सभी किसान मित्रों के लिए, सभी सुनने वालों के लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में।
4: बिल्कुल, बहुत सही कहा आरती आपने। और हमारी कोशिश होती है कि किसान भाइयों बहनों को नई नई जानकारियों से अवगत कराना, जिसमें हम बात करते हैं एक योजना के बारे में, उसके बाद अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं विशेषज्ञ को भी, जो कि एक विस्तार से चर्चा करते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को नई नई जानकारी वो मिलती रहे। उसके बाद बाजार भाव, मौसम की भी बात करते हैं,
3: और साथ ही साथ इस समय पर हमारे किसान मित्रों को क्या कुछ अपने खेतों में करना चाहिए, इसके लिए विशेष तौर पर कृषि सलाह भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले एक बहुत विशेष योजना जो आपके बड़े काम की है, हम बात करने वाले हैं गौतम आज एकीकृत कृषि विपणन योजना के बारे में। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और इसका उद्देश्य देश में कृषि विपणन, भंडारण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
4: बिल्कुल, एकीकृत कृषि विपणन से जो किसान हैं वो अपनी उपज को सुरक्षित रखकर उचित समय पर बेच सकते हैं और बाजार की जो सही जानकारी मिलने में आसानी होती है इस योजना के तहत।
3: जी बिल्कुल, और देखिए बहुत सारी चीजें जिससे इनका फायदा वो उठा सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो किसान मित्र है उनको एक बेहतर बाजार उपलब्ध हो जाए, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसका जो मूल्य है वो भी सुनिश्चित हो जाए।
4: बिल्कुल, बहुत सही कहा आरती आपने। और किसान अपनी मेहनत से अनाज, फल, सब्जियां, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों का जो है उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन के बाद अगर उनको उचित बाजार और उचित मूल्य न मिले तो कई बार किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
3: जी बिल्कुल, देखिए योजना का महत्व तो बढ़ ही जाता है, और जब हमारे किसान मित्रों से हम बात करते हैं किस तरह से उनको इसका फायदा मिलता है, तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि उनको जो मार्केटिंग है उसमें काफी सहूलियत मिल जाती है, कि किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना जो सामान है बाजार तक कैसे लेकर जाए, इसकी सुविधा उपलब्ध है, कई जगह पर सब्सिडी भी उपलब्ध है। ये सारी चीजें इस योजना

0: कचरा उत्पन्न होता है उसका उचित प्रबंधन अगर ना किया जाए तो ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। और कृषि अवशेष जैविक कचरे का उपयोग करके कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं, जो आज का हमारा विषय भी है।
1: बिल्कुल सही कहा गौतम, सबसे बड़ी बात यह है कि पराली और कृषि अवशेष का उचित प्रबंधन हो जाता है, वायु प्रदूषण नहीं होता, पराली जलाने की जो समस्या है ये भी बहुत हद तक कम हो जाती है।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने आरती। और विषय कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस कैसे बनाया जाता है, आज के जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर मोहन जी सक्सेना, आप डेयरी विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली में।
2: सक्सेना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि ये CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस ये हमारे जो कृषि के अवशेष हैं या पशुधन में जो गोबर का अंश होता है उसके अवशेष हैं, उनसे फर्मेंटेशन की प्रतिक्रिया के द्वारा, एनारोबिक फर्मेंटेशन कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहती है तो जो उसका कार्बनिक तत्व होता है वो मुख्यतः बायोगैस के रूप में, जिसमें मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, थोड़ी बहुत सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, इसका उत्पादन होता है। और ये हमारे देश में बहुत समय से प्रचलित रहा है कि गोबर के द्वारा उससे ऊर्जा एवं उर्वरक का निर्माण किया जाए।
2: जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये कृषि अवशेष और जो जैविक कचरा है इससे CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है?
3: अब जो हमारे कृषि अवशेष, खास तौर से जो धान की पराली है या शुगर केन टॉप है या और भी ऐसे तमाम सारे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के वेस्ट निकलते हैं, उन सब में ऐसे तत्व होते हैं जिनको फर्मेंट करके गैस बनाई जा सकती है और उस गैस का शुद्धिकरण करके अर्थात उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके मीथेन की मात्रा बढ़ा के करीब 95% तक ले जाते हैं और उसको फिर कंप्रेस्ड कर देते हैं उच्च दबाव पे और उसको सिलेंडरों में भर देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और जहां भी ऊर्जा की आवश्यकता हो वहां पे उसको गैस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और यदि जरूरत पड़े तो उससे वाहन को भी चला सकते हैं, बिजली भी पैदा कर सकते हैं। तो ये पिछले लगभग 5-10 सालों में कंप्रेस्ड बायोगैस जो अभी तक अनुसंधान का विषय था, इसको जो है भारत सरकार ने सतत विद्युत उत्पादन योजना के तहत इसको बहुत बढ़ावा दिया है और आज देश में हमारे ऐसे स्थानों पे जहां पे ये कृषि अवशेष और जैविक अवशेष जिसमें मुख्यतः गाय और भैंसों का गोबर आता है उपलब्ध है या जहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी हुई है या जहां पे शुगर मिल्स लगी हुई हैं उनके यहां से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको कंप्रेस्ड बायोगैस की विधि से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का कार्य बहुत ही जोर शोर से चल रहा है।
2: जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी हमारे कृषि अवशेष जैसे धान की पराली हो गया, भूसा हो गया और जो हमारे पशुओं से निकला हुआ गोबर हो गया या अन्य जो भी जैविक उत्पाद जो घरों से निकलते हैं, क्या ये सभी प्रयोग किए जा सकते हैं?
3: इसमें से मुख्यतः जो कह लें कि हमारे यहाँ आवश्यकता होती है कि कैसे हम ऊर्जा की आपूर्ति करें और साथ ही साथ जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ाएं, तो इसमें जो ये CBG का उत्पादन होता है इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस तो मिलती ही मिलती है, साथ में ही दो तत्व और मिलते हैं। एक जो इसमें से निकलने वाला जिसको कहते हैं कि वॉश, जो लिक्विड निकलता है वो बहुत ही उसमें उर्वरक शक्ति होती है और दूसरा उसका प्रयोग जो इसमें स्लरी निकलती है उसमें से जो ठोस तत्व होते हैं उनको खेतों में डालने का काम होता है क्योंकि उनमें कार्बन नाइट्रोजन का अंश काफी कुछ होता है और ऐसे जैविक कीटाणु होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो आज हमारे यहाँ पराली की भी जो एक पर्यावरण से संबंधित है कि किसान जो है उसको जलाते थे तो अब उनको चूंकि उस पराली के अच्छा मूल्य मिलने लगा है और वो पराली की चाहे ब्रिकेट बना के उसका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में भी होता है और उसको जो है वो पशु के चारे में भी होता है और एक तरीके से देखा जाए कि वापस

0: बस से हम उसी प्रणाली में पहुंच गए जहां पे कोई भी अवशेष बचता नहीं है और सबका सब जो जमीन से लिया कृषि उत्पाद वो जमीन में ही वापस चला जाता है और साथ में हमें ऊर्जा और उर्वरक की प्राप्ति हो जाती है।
1: कहने का मतलब यह है कि पराली का भी ठीक से प्रबंधन हो जाता है और पराली द्वारा जो हमारे किसान भाई कभी कभी उसको जलाते थे, जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता था, उससे भी राहत
0: अब उससे भी राहत मिलेगी और चूंकि उसका उन्हें आर्थिक मूल्य मिलेगा तो इसलिए वो निश्चित रूप से अब उसे जलाने का निर्णय नहीं करेंगे।
1: तो जिस तरीके से आपने सीबीजी की बात करी, उसमें बायोगैस की बात करी, तो इसमें कौन कौन से प्रमुख चरण होते हैं कि जिससे बायोगैस बनती है?
0: इसमें मुख्य तो एक होता है गैस का उत्पादन जी। ये पहला चरण है। उसके लिए फर्मेंटर लगते हैं। उन फर्मेंटर में चाहिए होता है कि हमको जो ईंधन के लिए कृषि के उत्पाद को पल्वराइज करके गोबर को साफ करके उसमें मिलाते हैं और साथ में पानी मिलाते हैं जिससे स्लरी बन जाती है। और ये चैम्बर चूंकि एनरोबिक होते हैं, इनमें हवा कहीं से नहीं जाती, इसलिए यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। अब जो गैस बनती है ये एक दूसरे चैम्बर में जाती है जहाँ ये एकत्रित होती है और उसमें से गैस का शुद्धिकरण होता है जिसमें मॉइस्चर भी हम पाइपलाइन से निकाल लेते हैं और साथ में जो मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड जो लगभग 28 से 32% होती है उसको भी हम इसमें अतिरिक्त दबाव दे के उसको पानी में घोल के निकाल लेते हैं और जो बचती है वो बचती है मीथेन गैस जिसको हम तीसरे चैम्बर में एकत्रित करते हैं और वहां से फिर उसको ले जा करके कंप्रेस करते हैं। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है कंप्रेस्ड बायोगैस। तो एक तरीके से 95% शुद्धता वाली मीथेन गैस को सिलेंडरों में भरते हैं और वो कंप्रेस्ड बायोगैस बन जाती है।
1: तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस का उपयोग क्या सीएनजी के तौर पर भी किया जा सकता
0: है? जिस तरीके से हमारी यहाँ पाइप्ड गैस आती है घरों में या जो गाड़ियों में भरी जाती है नेचुरल गैस, तो वो सिलेंडर्स होते हैं, तो इसको भी सिलेंडर्स में भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और इनको वाहन चलाने में भी प्रयोग किया जा सकता है और प्रयोग तो बड़े सफल हुए हैं। जो संस्थाएं जिन्होंने इसको अपनाया है कि वो दूध लाने वाली गाड़ियां हैं या जो चारा ले जाने वाली गाड़ियां हैं, फीड ले जाने वाली गाड़ियां हैं, वो सब उन्हीं सिलेंडरों से चलती हैं और उसमें एक तरीके से कह लें कि वो पोल्यूशन फ्री फ्यूल है जो कि हमारे को बायोगैस के द्वारा मिलता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बात रही गैस की, लेकिन जब हम कंप्रेस्ड बायोगैस का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ सैलरी भी निकलती है।
0: बिल्कुल।
1: तो वो किसानों के लिए किस तरीके से उपयोगी है?
0: जिन लोगों ने बायोगैस के प्लांट लगाए हुए हैं उनका मुख्य बिंदु था कि हमें बायोगैस बनाना है और उन्होंने अपना सारा आर्थिक दृष्टिकोण बायोगैस तक सीमित रखा, लेकिन उनको फिर अनुभव हुआ कि इसमें तो जो स्लरी निकल रही है और जो सॉलिड निकल रहे हैं टैंक से उनकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है और चूंकि उनकी जानकारी में आया कि इसको खाद बना के इसमें कुछ और तत्व मिला के ये संपूर्ण खाद का काम कर सकते हैं और यदि इसको खेतों में डाला जाए तो उपज बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में बहुत सारी उनको मदद मिलती है और एक तरीके से देखा जाए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कम करना पड़ता है तो उसकी लागत कम हो जाती है। तो अब तीनों आयाम हैं कि बायोगैस मुख्य उसका आर्थिक स्रोत है, दूसरा स्लरी और उसमें से निकलने वाला जो सॉलिड तत्व है वो जो कि कंपोस्टिंग में जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने स्लरी का जिक्र किया, क्या ये जैविक खाद की तरह प्रयोग किया जा सकता है?
0: निश्चित रूप से कुछ लोग केचुए के भी इसमें मिश्र करते हैं जिससे कि वर्मी कंपोस्ट बन जाती है, कुछ लोग इसमें कीटाणु मिलाते हैं, कुछ इसमें जीवाणु का अंश डालते हैं जिससे तरह तरह के खाद बन जाती है जो कि हमारे खरीफ की फसल और रबी की फसल में बहुत ही उपयोगी रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे सभी किसान भाई सीबीजी प्लांट नहीं लगा सकते या सभी के पास बायोगैस संयंत्र नहीं है, लेकिन जो कृषि अवशेष है वो सभी किसानों के पास उपलब्ध रहता है या जो पशु पालते हैं उनके पास भी गोबर रहता है, तो इसको

0: किस तरीके से वो बेच सकते हैं?
1: देखिए, पिछले 5 सालों में ये एक प्रयोग के तौर पे और सरकार के सहयोग से सतत विद्युत उत्पादन योजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय बायोगैस की नीति बनी, इसमें प्लांट लगाए गए और उसके जो परिणाम मिले उसके आधार पे बहुत सारे अवसर पैदा हुए। उनमें एक अवसर ये पैदा हुआ कि हर किसान बायोगैस प्लांट नहीं लगा सकता है, तो क्यों ना वहां पे सर्विस प्रोवाइडर एक सामूहिक रूप पे कोऑपरेटिव मॉडल पे सरकार गांव स्तर पे बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है और युवा लोगों को कि आप गोबर कलेक्ट करें और वहां पे ले जाके उसको दें, आपको भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, आपको भी उससे फायदा होगा और जो बायोगैस प्लांट चलेगा उससे जो आमदनी होगी वो किसान को ही लोगों को, क्योंकि आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 रुपए से लेके 20 रुपए तक किसानों को गोबर का मूल्य मिल रहा है। तो जिसको वो छोड़ देते थे ऐसे ही नाली में बहा देते थे या ढेर लगा के खाद बनती रहती थी, अब उसके प्रति वो बहुत जागरूक हो गए हैं और इसमें सरकार की भी तरह तरीके की योजनाएं आ रही हैं जिसमें न केवल बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है बल्कि उन्होंने ये सर्विस प्रोवाइडर जो एक तरीके से नए नए अवसर रोजगार के कुंभ है। अब जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ काफी विकसित हो रही है तो उनकी जो भी पील है, जो भी चीजें निकलती हैं, उन सब का प्रयोग उस एरिया में, तो बायोगैस तरह तरह के उत्पादों से बन रही है। जहाँ जो चीज उपलब्ध है उस चीज से बायोगैस बनाने का कार्य चल रहा है। जहाँ गोबर है वहाँ गोबर से, जहाँ कृषि उत्पाद और गोबर दोनों है वहाँ पे दोनों से, जहाँ शुगर कैन टॉप भी है वहाँ शुगर कैन टॉप से भी, और जो भी कृषि अवशेष है उससे बनाने का कार्य हो रहा है।
0: तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या छोटे और सीमांत किसान है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं?
1: असल में इसका सही माने में तो लाभ हमारे छोटे किसानों को मिलेगा और आज किसानों को तकनीकी से जोड़ा जा रहा है। उनके गांव स्तर पे ऐसी योजनाएं जा रही हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की और जो जिला स्तर की, कि जहां पे वो किसान आपस में मिलके एक समूह बना के, जिसको कहते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर बन रहे हैं, कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिविजुअली हमारे किसान नहीं अपना सकते उसको सामूहिक ग्रुप बना के और एक केंद्र वहां पे बना के जिससे कि सभी को उसका लाभ मिल सके, तो उनमें से ये बायोगैस की भी योजना है।
0: तो ये सीबीजी प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद कर रही है?
1: बहुत मदद कर रही है, क्योंकि इससे जो ऊर्जा पैदा हो रही है, ये हमारा जो आयात होता है फॉसिल फ्यूल का, कच्चे तेल का जो आयात होता है उस पे इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव है, इसीलिए सरकार ने इस ओर इतना ध्यान इसको बढ़ाने का फैसला किया है।
0: तो क्या इसमें जो हमारे ग्रामीण युवा हैं उनके लिए कुछ रोजगार की संभावनाएं हैं?
1: बहुत संभावनाएं हैं। हमारे जो युवा हैं आज के समय में इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो युवा हैं उनको इस चीज का प्रशिक्षण मिले कि जो गांव में कृषि एवं पशुपालन से बचे हुए अवशेष हैं, जिनमें गोबर भी है, जिनमें पराली भी है, जिनमें गेहूं का भूसा भी है, जिसमें गन्ने की शुगर केन टॉप भी है, उन सब का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से करें और उससे आर्थिक लाभ कैसे पाएं, और अपने यहाँ पानी का किस तरीके से कंजर्वेशन हो और जो अवशेष हैं उनका सही तरीके से प्रयोग हो जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर और आर्थिक उत्थान उनका हो सके।
0: किसी कार्य करने के लिए उसमें चुनौतियां भी होती हैं, तो इसमें
1: निश्चित रूप से चुनौतियां भी होती हैं। चुनौतियां किस तरीके की होती हैं, उनमें तकनीकी से संबंधित होती हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई फ्लॉ है, या बहुत सारी ऐसी होती हैं जो नीतिगत हैं कि पॉलिसी की वजह से इसमें कोई कमी रह जाती है, तो इस तरीके के जो चुनौतियां हैं। और इसमें एक विषय ये भी आता है कि सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन बैंकों का भी होता है बहुत बड़ा रोल कि वो इसके लिए लोन देने के लिए तैयार रहते हैं, तो लोन की गारंटी कौन लेता है। तो ये सारी योजनाएं संपूर्ण रूप से बनाई गई हैं कि अगर टेक्नोलॉजी सही है, इससे प्रोडक्ट सही बन रहा है, तो इस

0: इसको एडॉप्ट कैसे करें हमारे युवा, या जो समूह बना के कर रहे हैं या जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनके लिए भी अवसर इस तरह के हो जिसमें कि उनके चार पैसे बच सके और लोगों को रोजगार मिल सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके और जो हमारे प्राकृतिक साधन है उनका सही तरीके से सदुपयोग हो सके।
1: अंत में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस तकनीक से जुड़ करके अपनी आय बढ़ा सके?
0: हमारे जो किसान भाई और बहनें हैं उसमें दो तरीके के अमूमन हम लोग देखते हैं। एक उसी तरीके से खेती कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने देखा कि उनके माता पिता करते थे, और जो कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, पानी बचाने की बहुत सारी आ गई, सिंचाई करने के लिए ड्रोन आ गए, तो मेरा हमेशा उन सबसे ये आग्रह रहता है, आज का ये युग है, ये तकनीकी का युग है, इसमें ज्ञान विज्ञान और तकनीकी को अपनाएं और इस मुख्य धारा से जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा उपज किस तरीके से ली जाए, ये आज के जो सरकार है इसके प्रति बहुत ही जागरूक है और कर्तव्यबद्ध है कि किसानों को टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन होना चाहिए। बायोगैस उनमें से एक प्रतिक्रिया है, ड्रोन उसी के प्रणाली में है, तो बहुत कुछ एक हमारे गाँव का स्वरूप बदल रहा है।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर मोहन जी सक्सेना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने सुना कृषि अवशेष और जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस किस तरह से बनाई जा सकती है, और इस विषय पर बात कर रहे थे डॉक्टर मोहन जी सक्सेना, डेयरी विशेषज्ञ है नई दिल्ली से। और गौतम, देखिए बहुत खुशियों का माहौल बना हुआ है, कल जन्माष्टमी भी है, तो इस अवसर पर क्यों ना एक कृष्ण भजन सुना जाए चंद्रपाल और साथियों की आवाज में। आइए सुनते हैं।

0: किसान भाइयों बहनों, अभी आप सुन रहे थे चंद्रपाल और साथी की आवाज में ये कृष्ण भजन।
1: और साथियों, अब समय हो गया है कि आप तक जानकारी पहुंचाए मौसम के हाल की। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा और गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है। इस क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर भारी से मध्यम वर्षा होने की आशंका जताई जा रही है।
0: वहीं अगर तापमान की बात करें आरती, अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
1: साथियों, अब आपको बताते हैं मौसम आधारित कृषि वैज्ञानिक सलाह। धान की फसल इस समय मुख्यतः वानस्पतिक वृद्धि बाली बनने वाली स्थिति में है, इसलिए फसल में कीटों की निगरानी करें। तना छेदक कीट की निगरानी के लिए आप फिरोमन प्रपंच 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं।
0: बिल्कुल, वहीं आरती, अगर किसान इस समय अगेती मटर की बुआई कर रहे हैं तो उनके लिए बीज की व्यवस्था कर लें और खेतों को पूरी तरह से तैयार कर लें।
1: साथ ही साथ किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि इस समय सरसों, सापूसा, सागे, मूली, समर लौंग, पालक ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति तथा धनिया पंत हरितमा या सकर किस्मों की बुआई मेड़ो यानी कि उथली क्यारियों पर कर सकते हैं आप।
0: वहीं अगर किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वर्षा से उन लताओं को गलने से बचाया जा सके।
1: तो साथियों, ये थी मौसम आधारित कृषि वैज्ञानिक सलाह। अब जानते हैं आजादपुर मंडी से प्राप्त बाजार भाव।
0: बिल्कुल आरती, बहुत सही कहा आपने। आलू की अगर हम लोग बात करें तो आलू जो है बाजार में 15 से 18 रुपए प्रति किलो। प्याज की बात करें तो 35 से 45 रुपए प्रति किलो। टमाटर की बात करें तो 25 से 35 रुपए प्रति किलो। बैंगन की बात करें तो 20 से 30 रुपए प्रति किलो। और बीन्स की बात करें तो 40 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है।
1: जी गौतम, सब्जियों की बात तो हो गई, आइए जानते हैं क्या है फलों के भाव। सेब 100 से 150 रुपए प्रति किलो। वहीं केले की बात करें तो ये भी 30 से 35 रुपए प्रति किलो। अमरूद की बात करते हैं तो ये 60 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम। मौसम्बी की बात करें तो 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम।
0: तो आरती, अपने किसान भाइयों के साथ बहुत सारी जानकारियों से भी उनको अवगत कराया और अब समय है कि किसान भाई अपना सुझाव और प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा ईमेल आईडी है वो है feedback@gmail.com। आप हमें अपनी सुझाव और प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें।
1: जी साथियों, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज। श्रोताओं अब वक्त है कार्यक्रम गीत और गजल और कवाली का।

जदों भी आपने सुनी एक खूबसूरत सी गजल लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में, और अब वक्त है गजल की दुनिया में एक और ऐसे शानदार फनकार को सुनने का जिनकी आवाज़ में जादू जो है नज़ाकत भी थी, दर्द भी था और मोहब्बत की एक खास मिठास भी। तो चलिए अगली हम आपको जो गजल सुनाने जा रही हैं वो है

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल कवाली का ये कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। अपने नजदीकी डॉक्टर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। केंद्र ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे, इससे सड़क खुदाई और यातायात बाधाएं कम होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित और दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने केंद्रित हितधारक सहभागिता के माध्यम से दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समन्वित और केंद्रीय हितधारक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट हितधारक सहभागिता योजना पर भी चर्चा की और राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने का आग्रह किया। श्री यादव ने राज्यों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके साथ है और वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उनके सकारात्मक प्रयासों को आवश्यक सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। बैठक में सितंबर 2026 से मार्च 2027 की अवधि के दौरान दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों तथा अन्य उपायों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शीतकालीन वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक और बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत कार्य कर रही है। श्री सिरसा ने वायु प्रदूषण के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 24 घंटे जमीनी निगरानी, हॉटस्पॉट केंद्रित हस्तक्षेप और वार्ड स्तर पर सघन निगरानी पर केंद्रीय व्यापक बहुस्तरीय कार्यान्वयन रणनीति की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी तथा पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम DTC के तेखन डिपो में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 50 नई शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली और रेवाड़ी के बीच अंतर्राज्यीय ई बस सेवा की भी शुरूआत की। एक रिपोर्ट।
4: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल समस्याओं की चर्चा करना नहीं बल्कि उनका स्थायी समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि तेखन का 4 लेन वाला स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र वाहनों की उपलब्धता जांच को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगा। इस केंद्र की वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 72,000 वाहन होगी, जिसमें 52,000 भारी या हल्के मोटर वाहन है और 20,000 दोपहिया वाहन शामिल है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि DTC बेड़े में शामिल की गई 50 नई EV बसें सरकार की सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि DTC हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापित

0: होने से क्षेत्र में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की पहुंच बढ़ेगी और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार और अंतिम चरण तक कनेक्टिविटी जैसे कई स्तरों पर काम कर रही है।
1: मैं ये समझती हूँ कि क्लीन मोबिलिटी की ओर ये एक बहुत ही सशक्त कदम है और लगातार दिल्ली सरकार उस दिशा में बढ़ रही है जहाँ केवल समस्याएं नहीं उन समस्याओं को समाधान देने की बात हो रही है।
0: इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली वासी को स्वच्छ, सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद परिवहन देना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और यूट्यूब पर newsonair ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि अब राजधानी में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत कॉरिडोर बनेंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस मल्टी यूटिलिटी डक्ट के निर्माण से बार बार सड़क खोदने और उसकी मरम्मत करने की जरूरत कम होने के साथ साथ यातायात में होने वाली बाधाएं कम होंगी। उन्होंने बताया कि डक्ट का उपयोग तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थानों पर बिजली केबल, पानी और गैस की लाइनों, फायर हाइड्रेंट नेटवर्क तथा अन्य आवश्यक उपयोगी सेवाओं के लिए किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस डक्ट के तकनीकी डिजाइन में हवादार, अग्नि सुरक्षा, रखरखाव के लिए सुगम पहुंच और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी आवश्यक व्यवस्था को भी शामिल किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के लिए जल्द ही विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति गठित की जाएगी। समिति में डिस्कॉम, दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग आदि विभागों के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल को पहले पायलट आधार पर लागू किया जाएगा, जिसके लिए चांदनी चौक में एक्सप्लेनेड रोड पर 310 मीटर और मोरसराय रोड पर 560 मीटर लंबे हिस्से का चयन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मल्टी यूटिलिटी डक्ट पहल अलग अलग एजेंसियों द्वारा अपनी अपनी जरूरत के अनुसार किए जाने वाले बिखरे हुए भूमिगत कार्यों के बजाय समन्वित शहरी उपयोगी योजना की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
2: दिल्ली सरकार ने आज 75 सीएम श्री स्कूलों में ईट वेल लिव वेल पहल की शुरुआत की। इस पहल के माध्यम से करीब 30,000 बच्चों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों में ऐसे व्यवहार, आदतों और कौशल का विकास करना है जो उन्हें स्वस्थ, जिम्मेदार और संतुलित जीवन जीने में सक्षम बनाए।
5: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस पहल के बारे में कहा कि जिस प्रकार से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता बच्चों के सीखने की नींव तैयार करता है, उसी प्रकार बुनियादी कल्याण साक्षरता बच्चों को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने की आधारभूत समझ तथा कौशल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण पर आधारित है। इस कार्यक्रम में 21 व्यक्तिगत आदतों, 7 सामाजिक कौशल और 7 पर्यावरणीय कौशल को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी और दूसरों की देखभाल करने तथा पृथ्वी और पर्यावरण की देखभाल करने के लिए तैयार करना है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
2: दिल्ली विश्वविद्यालय और एक विदेशी बहुराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत के वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ज्ञापन के अंतर्गत विदेशी कंपनी अपना एआई एंगेज डेवलपर प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाएंगे और इसके जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को एआई के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अगले साल तक 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है ताकि वे औद्योगिक उपकरण का इस्तेमाल करके एआई एप्लीकेशन बनाने के साथ साथ उन्हें टेस्ट कर सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज विश्वविद्यालय में बने भारत के पहले कार्बन गार्डन का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित इस कार्बन गार्डन में विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनका पर्यावरण में अहम योगदान होता है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि पर्यावरण की जो समस्याएं लोगों के द्वारा किए जा रहे असंतुलित कार्यों से

0: पैदा हुई हैं उसका समाधान अकेले तकनीक से नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास विधि छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। न्यायालय ने कहा कि विद्यार्थियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई शिक्षा संस्थान की अपने विनियामक नियमों के अनुसार ले सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति मोहना की पीठ ने यह आदेश हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नालसर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के खिलाफ बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की कार्रवाई पर उत्पन्न विवाद से जुड़े मामले पर दिया है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम की लोकतांत्रिक और संवैधानिक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की सुनियोजित प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन हंगामा, अभद्रता, पीठासीन अधिकारी का अपमान और संवैधानिक प्रक्रिया को बलपूर्वक रोकने का प्रयास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
1: खबरों से जुड़े रहिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शहर में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इस दौरान दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर, स्वशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के कार्यालय बंद रहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर तक भारत मंडपम में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की महिलाओं और बच्चों के विशेष पुलिस इकाई की आत्मरक्षा शाखा ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव में 450 राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के लिए एक दिवसीय आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत आयोजित की गई। कार्यशाला में कैडेट्स को आत्मरक्षा की विभिन्न व्यवहारिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह नई सुविधा अस्पताल चेन की लोगों की सेवा के 25 साल के सफर में एक और अहम पड़ाव है। यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के पर्व के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया। यातायात पुलिस के अनुसार रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए कल सुबह 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक यातायात और मार्ग परिवर्तन रहेगा। पुलिस ने लोगों को मधुबन चौक से हेलीपोर्ट तक भगवान महावीर मार्ग और उससे जुड़े मार्गो से बचने को कहा है। कल कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर राजधानी में विशेष पूजा, भजन कीर्तन और दही हांडी के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन द्वारका के भव्य समारोहों से लेकर कनॉट प्लेस के पास स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी कि बिरला मंदिर में जन्माष्टमी में आरती और मध्यरात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारियों सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। राजधानी में आज हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्की वर्षा, आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे, इससे सड़क खुदाई और यातायात बाधाएं कम होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित और

दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम गीत मालिका का, तो क्यों ना शुरुआत करें अभिजीत के गाए इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

साथियों, अभी आपने सुना ये फिल्म ईएफ बॉस से अभिजीत की आवाज में ये गाना और इसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म स्टाइल से, और आवाज रहेगी अभिजीत और हेमा सरदेसाई की।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत मालिका और अभी आपने जो आवाज सुनी वो थी अभिजीत और हेमंत सरदेसाई की। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से, और आवाज है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं मंदिर श्री द्वारिकाधीश के साथ पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व भाव एवं भक्ति के साथ शांति एवं सुचारू रूप से मनाया जा सके, इसके लिए शासन प्रशासन की तैयारियों पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मथुरा श्री चंद्र प्रकाश सिंह।
1: भगवान जी की इस जन्मभूमि मथुरा में 5253वां भगवान जी का जन्मदिवस 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसी दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती 1:55 पर की जाएगी और द्वारिकाधीश मंदिर में भी बहुत ही भव्यता और दिव्यता से भगवान जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। आप स्वयं यहाँ के साक्षी बनिए, पूरा मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना बलदेव गोकुल और नंदगांव को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया संवारा गया है और जो भगवान जी की लीलाओं की झांकियां हैं उनको हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से अन्य माध्यमों से जगह जगह सजाया है। 25 से अधिक स्थानों पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे शहर की सजावट देखने लायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करके इसको बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए हैं। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहाँ आने का अनुमान है। मैं सभी अपने श्रद्धालुओं का खुले दिल से ब्रजवासियों की तरफ से अपनी तरफ से पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनसे अनुरोध है वो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हम लोगों ने तय किया है कि भगवान जी का जन्मदिन प्लास्टिक फ्री मनाएंगे, तो श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि वो पॉलीथिन का सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। उनके रुकने के लिए जहां वो रुके, होटल हो धर्मशाला हो या हमारे शेल्टर्स होम भी तैयार किए गए हैं, और वहां भी एक जिम्मेदारी का परिचय दें। रूट डायवर्जन किया गया है उसका भी ध्यान रखें। पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड करके, जोन में डिवाइड करके लाइन ऑर्डर की ड्यूटी लगी हुई है, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे श्रद्धालु आवें वो ब्रज की जो रज है उसमें आनंद लें, भगवान जी का दर्शन करें। जन्माष्टमी पे जो भी हमारे सारे मंदिर हैं, प्रमुख देवालय हैं, उनमें भी जाएं, लेकिन गरिमा का ध्यान रखें और अफवाहों से बचें। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएं और हम आपकी सेवा के लिए लगातार कृत संकल्पित हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो संदेश जो हम लोगों के जीवन में हम लोगों की रगों में रचा बसा है, जो प्रगति का द्योतक है, जो ज्ञान का द्योतक है, कर्म का द्योतक है, उस पे आगे चलते हुए न केवल अपना जीवन सफल बनाएंगे, अपनों का जीवन सफल बनाएंगे, मानवता को आगे बढ़ाएंगे और स्वयं प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न होने का मौका देंगे। मैं पुनः जन्माष्टमी की अपने सभी साथियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, पूरे मथुरावासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि ब्रज जरूर आए, ब्रज आपका स्वागत करने के लिए आतुर है।
0: इस अवसर पर मथुरा ही नहीं पूरे ब्रज की विरासत के संरक्षण को समर्पित संस्था ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश की सचिव IAS लक्ष्मी नागप्पन ने बताया कि इस वर्ष संस्था द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व को सांस्कृतिक रूप से मनाए जाने पर विशेष तैयारियां की गई हैं।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे हर्ष और उल्लास से पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसी के बांते जनपद मथुरा में भी 2 तारीख से 4 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा। पूरे जनपद में हर जगह पे सजावट कराया गया है और लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है, हॉट एयर बलून्स कराया गया है। 3 और 4 तारीख को पूरे जनपद में 21 अलग अलग जगहों पे जो हमारे जनपद के स्थानीय कलाकार हैं उनकी कला को भी आगे बढ़ाते हुए ये 21 जगहों पर उनके द्वारा भी प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा 3 तारीख को और 4 तारीख को। एक शोभा यात्रा भी वृष्टीर्थ विकास परिषद द्वारा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिला प्रशासन को साथ में लेते हुए ये कराया जाता है। और ये जो शोभा यात्रा है ये श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 3 से शुरू कराया जाता है। इसके अलावा 4 तारीख के रात को 9 से 10 बजे के बीच में पहली बार एक भव्य तरीके से एक ड्रोन शो का भी व्यवस्था कराया गया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है 3 तारीख को श्री हरिदास ऑडिटोरियम प्रेक्षागार जो वृंदावन में वृष्टीर्थ विकास परिषद द्वारा जो निर्माण कराया गया है उसका शुभारंभ और लोकार्पण है। और उस दिन भी 1051 करोड़ का विभिन्न जो लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम भी है। तो इस तरीके से पूरे जनपद में 2, 3 और 4 तारीख को भव्य रूप से ये उत्सव और उल्लास से मनाया जाएगा। अब सभी लोगों से और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि आप लोग जनपद मथुरा आए और इस बार की जन्मोत्सव ब्रज क्षेत्र में ही हमारे साथ ही मनाएं।
0: इस आयोजन में जब लाखों श्रद्धालु पधार रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर आप हैं मथुरा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधा वल्लभ।
3: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोगों के यहाँ जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, 4 जो हमारे यहाँ पे मुख्य है जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पे हमारे यहाँ सारी हेल्थ टीम की व्यवस्था रहती है। बरसाना मंदिर पे सब व्यवस्था रहती है, दाऊजी महाराज पे भी अच्छी खासी व्यवस्था रहती है और इसके अतिरिक्त बांके बिहारी मंदिर पर भी हमारी पूरी टीम से लगभग हमारी 20 टीम्स कार्य करती है इसमें, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स स्टाफ नर्सेज वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ वहां पे है रहता और देख रेख में उनके प्रत्येक जगह पे हमारी टीम्स रहती है।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा।
4: भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले ऐसे विशिष्ट जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए 33 कोटि देवता देव देवादिदेव और महादेव भी स्वयं उपस्थित रहते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है। इस वर्ष भगवान ठाकुर श्री केशवदेव भगवान श्री कृष्ण पंचरत्नी पोशाक को धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 5 रत्न भगवान श्री कृष्ण की इस पोशाक पर उकेरे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। भगवती माँ गायत्री माँ सरस्वती के वाहन राजहंस कलहंस के भाव को हृदयंगम रखते हुए इस वर्ष कलहंस बंगले के स्वरूप में श्री ठाकुर जी के पुष्प बंगले को सजाया गया है। ठाकुर श्री केशवदेव भगवान श्री कृष्ण का यह 5253वां जन्म उत्सव बड़ा विशिष्ट है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान का प्रयास है कि भगवान के गर्भगृह जिसको कंस के कारागार से लोग जानते हैं, भक्त जानते हैं, वहां से भी भगवान के जन्म महाभिषेक के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो। इसके लिए संस्थान सभी आवश्यक उपाय कर रहा है और ठाकुर श्री केशवदेव की कृपा से इस वर्ष श्रद्धालु जन अपने मोबाइल पर अपने टीवी पर भी भगवान के पुण्य पवित्र गर्भगृह में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दर्शन का आनंद ले पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है।
0: श्री जी बाबा आश्रम के व्यवस्थापक श्री रविकांत जी ने इस अवसर पर बताया,
5: भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो उत्तर प्रदेश के इस मथुरा नगरी में इस ब्रज में क्योंकि यहीं ये पैदा हुए, तो उत्सव का हमारा 5253वां जन्मोत्सव ब्रज में इस मथुरा में इस नगरी में 2 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख तक ये चलेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान जितने भी हमारे ब्रज के नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि देश के सभी लोगों पर आपका आशीर्वाद, जैसा आपका नाम है ऐसे ही ये आशीर्वाद सबको बिखरता रहे, यही तो मेरी अभिलाषा है, ये मेरी कामना है।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर स्थानीय निवासियों का उत्साह भी चरम पर है। घर घर में जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ब्रज की लोक परंपराओं एवं रीति रिवाजों के बारे में बताते हुए स्थानीय निवासी,
6: भैया जन्माष्टमी आ रही है, भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी, हमारे ठाकुर जी का जन्म तिथि, जन्म महोत्सव, वर्षगांठ और तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। घरों में रंगाई पुताई कराई जा रही है, मंदिरों को स्वच्छ किया जा रहा है, दरवाजे पर वंदनवार बन रही है, ध्वजा पताका तोरण कलश सजाए जा रहे हैं, और जिनके यहाँ वाहन हैं, हाथी घोड़ा पालकी, हमारे यहाँ गायें हैं, हम गायों को सजा रहे हैं, और नगाड़े तैयार हो रहे हैं, धुंधवी तैयार हो रही हैं, ढोल ढप मृदंग झांझ झड़ताल ये सब बजेंगे, और जो कवि जन है वो नित्य नई नई बधाइयां रच रहे हैं कि मैं ये बधाई गाऊंगा, मैं ये बधाई गाऊंगा, और घरों में पंजरी की तैयारी है, भगवान को पंजरी का भोग लगाया जाएगा, सात प्रकार की पाग बनेंगी, बादाम की पाग, पाग माने एक तरह की बर्फी होती है हमारे ब्रज में जिसको पाग कहते हैं, जो जच्चा को भोग लगाया जाता है कि यशोदा के लाला हुआ है, तो जच्चा और बच्चा ये दोनों का भोग लगाने का ये सामग्री है पाग, तो खरबूजे के बीज की पाग, मिंगी की पाग, काजू की पाग और चिरौंजी की पाग, ऐसे सात प्रकार की ये पाग बन रही हैं। लोग नए नए कपड़ा बनवा रहे हैं, जो गोपियां हैं, महिलाएं हैं, वो तरह तरह के लहंगा ओढ़ना चुनरी पहनेंगी, अनेक प्रकार के गहने धारण करेंगी, सोले और श्रृंगार करेंगी, और जो पुरुष हैं वो जामा पाजामा बनवा रहे हैं, पगड़ी बनवा रहे हैं, सिर पे बांधेंगे, माला पहनेंगे, कड़े कंठा पहनेंगे, और ठाकुर जी को सोने के पालने में विराजमान किया जाएगा। 5253वां भगवान का ये जन्मगांठ है, जन्म महोत्सव है, तो पूरे मथुरा में और तो सरकार के द्वारा चौराहे सजवाए जा रहे हैं, सड़कें सजवाई जा रही हैं, जगह जगह रासलीला दिखाई जाएगी, भगवान की लीला दिखाई जाएंगी, जगह जगह सेल्फी पॉइंट जो आधुनिक व्यवस्था है वो की जा रही है, कहीं कहीं कृष्ण लीला होगी, और घर घर में तैयारियां हो रही हैं।
7: तो हम लोगों को बड़ा ही उल्लास रहता है क्योंकि हम लोग ब्रजवासी हैं, तो घर को स्वच्छ करना, घर को सजाना और ठाकुर जी के मंदिर को सजाना, उनके पर्दे पलना ये सब कुछ तैयार करना, उनकी ड्रेस लाना, पोशाकें लाना, उनके लिए श्रृंगार का सामान लाना।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पुनीत अवसर पर दूर दराज से लोग मथुरा पधार रहे हैं, अपने आराध्य की एक झलक पाने को लोग लालायित हैं। ब्रज में पधारकर वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और स्थानीय तौर पर नगर निगम प्रशासन तथा पुलिस व्यवस्था के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए बाहर से आए कुछ श्रद्धालु,
8: जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे यहाँ दर्शन करने आए थे, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार यहाँ आए थे और चाहेंगे कि हम बार बार यहाँ आए, यहाँ बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा।
9: मैं मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से हूँ और मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष में कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित और भी जो विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए मैं यहाँ आया। तो मुझे भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित बहुत ही आनंद यहाँ प्राप्त हुआ, पूरा मथुरा ये मान के चलिए कृष्णमय है और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है, हर जगह मैं ये कहना चाहूंगा कि कृष्णमय है।
0: अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर संजय सारस्वत का था, प्रस्तुति संजीव कुमार व्यास की एवं संयोजक थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार किया गया।
10: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया और आइए अब सुनते हैं कुछ कृष्ण भजन।

श्रोता हूँ, अभी आपने मीरा बाई द्वारा रचित ये भजन सुना और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से ये भजन।

वाह, ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल यही तो मैं पूछा करता। अच्छा तो मैया क्या जवाब देती थी? जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हें तो जादू डाला है मुझ पे।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना ये गीत, और आइए अब सुनवाते हैं आपको जगजीत सिंह की आवाज में ये कृष्ण भजन।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार, फिर इंग्लिश में और फिर उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है

0: और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिडी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
4: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
5: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के

0: दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
1: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिया से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाये रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाज

0: जी का फैसला किया। अनार सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनार ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील रिलस को 2-1 से हराया। किदम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 ड्रोन आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में दी गई श्रीकृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रूपये पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defence cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from barrages caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kyiv welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. And now the news in detail. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both the leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identify

सामिन आदावर्स, ये आकाशवाणी है। शब के 9:15 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस के तीसरे मजलिस की नशियात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम करता है आपका मेजबान नहीं। उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के अलावा डीडी हेरिटेज पर। आगे एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। इस मजलिस में 9:20 पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 9:45 पर आप खबरें सुनेंगे और 9:55 पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। रात 10:00 मार्केट मंत्र प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे और 10:30 फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा तामिले इरशाद। तामिलिशाद प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम 11:00 आप सुनेंगे खबरें बरे सफेद से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। सुर्खियों में ये प्रोग्राम आप सुनेंगे शब के 11:30 पर और 11:45 पर क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम बजने मौसीकी में आप आज सुनेंगे उस्ताद शराफत हुसैन खान का राग बसंत में गाया ख्याल और तराना। शब के 12:00 आलमी खबरें नशे की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी में आप सुनेंगे हफीज अली खान का सरोद पर बजाय राग मियां की मल्हार। 12:30 आखिर शब प्रोग्राम में हम आपको की नजर करते हैं चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शब के 1:00 उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं तलत अजीज। समाप्त कीजिए चंद गैर फिल्मी गजलें और गीत।

0: Hello and good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amrish Saxena.
1: Namaskar. श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अमरीश जी।
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू अमरीश। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एक्सटेंड लूजिंग स्ट्रीक, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,900। India and Belgium agree to double the bilateral trade in next five years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज भी गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,900 अंक से नीचे बंद हुआ। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।

0: And before we begin the program and give you details of the top story, here's a disclaimer for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों के मुख्य सूचकांक लगातार चौथे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 417 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 41 अंक यानी 0.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। इससे पहले विदेशी मुद्रा बाजार में मजबूत प्रवाह से सकारात्मक धारणा के चलते बाजार बढ़त के साथ खुले। हालांकि कारोबार के दूसरे हिस्से में बाजार शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख सके। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण निवेशक सतर्क रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में प्रमुख सूचकांकों की तुलना में मजबूती देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.4 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।
0: Benchmark domestic equity indices declined for the fourth consecutive session today. The Sensex shed 417 points, or over 0.5%, to close at 76,153. The Nifty fell 41 points, or 0.2%, to settle at 23,873. Earlier, the markets opened on a higher note amid positive sentiment, supported by strong foreign exchange inflows. However, markets failed to hold their initial gains during the second half of the session as elevated crude oil prices and global yields kept investors cautious. On the other hand, the broader market at the National Stock Exchange showed resilience. The Nifty Mid-Cap 100 index rose 0.4%, while the Nifty Small-Cap 100 index jumped 1.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.2 प्रतिशत, ट्रेंट 1.9 प्रतिशत और आईटीसी 1.6 प्रतिशत नीचे रहे। दूसरी ओर एक्सिस बैंक में 0.9 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स में 0.8 प्रतिशत और एशियन पेंट्स में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged upward. Among the top performers, realty rose 2.4%. Housing finance and capital goods gained

0: declined around 1%, and mid-small private banks added 0.9%. In contrast, focused IT and IT declined 1%. Consumer durables fell 0.6%, and auto lost 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,545 companies advanced. Shares of 1,778 companies declined, and shares of 223 companies remained unchanged.
1: और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रूपये पर बंद हुआ। निजी जैसा बाजार का हाल हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है। कौन से आपको ऐसे खास कारण लगते हैं जिसकी वजह से बाजार बार बार कोशिश करता है लेकिन फिर कहीं फिसल जाता है?
2: तो ऋषि, आज के बाजार की खास बात है कि जो हेडलाइन नंबर्स है यानी इंडेक्स को यदि हम देखें तो वहां पर सेंसेक्स में काफी भारी गिरावट है लेकिन निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं थी। और यदि हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखें तो वहां पर हमने अच्छी बढ़त देखी है। स्मॉल कैप में तो 1% इंडेक्स में बढ़त देखी, तो ये काफी मिला जुला सा बाजार है। और ये कहना मुश्किल है कि ये बाजार में इनहेरेंट मंदी थी, जबकि एडवांस डिक्लाइन में भी हम देखते हैं एडवांसिंग स्टॉक्स काफी अच्छे थे। तो हेडलाइन नंबर्स तो हमें बता रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर व्यापक बाजार को देखता हूं, ब्रॉडर मार्केट को देखता हूं, तो मुझे उतनी कमजोरी नहीं लगती। दूसरा ये मैं कहूंगा कि जो भारतीय बाजारों के जो इंटरनल फंडामेंटल्स हैं, खासतौर से दो बड़ी बात मैं कहूंगा। पहली बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs की जो डेटा हमारे सामने आना शुरू हुआ है वो बहुत अरसे के बाद पॉजिटिव आना शुरू हुआ है। थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है, बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन सेलिंग नहीं है सबसे बड़ी बात। और दूसरा है कि मामूली देखते हैं बाइंग हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है बाजारों के लिए। और दूसरा, जो FCNRB जो डिपॉजिट स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया था ये सोचकर कि हमें अपने जो मजबूत जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उसको और मजबूत करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चौंकाने वाली है। 127 बिलियन डॉलर्स, पहले अनुमान आया था 20 बिलियन डॉलर का, उसके बाद बहुत ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट आए थे 50 बिलियन डॉलर के, और उसके सामने जो परफॉर्मेंस आई है, और वो भी जब ये स्कीम एक महीने पहले बंद कर दी गई। एक्चुअली ये स्कीम 30 सितंबर तक चलनी थी लेकिन इतने ज्यादा फॉरेन फ्लोज थे कि RBI को वो स्कीम एक महीने पहले बंद करनी पड़ी। उसके बावजूद 127 बिलियन डॉलर जो हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा है वो भारत में आए, तो ये कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में हमको बाजारों की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए।
1: जी, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि जल्दी इस स्कीम को बंद किया गया और हम देख रहे हैं रुपए में जो मजबूती आई है, तो क्या कारण था कि अगर ज्यादा इनफ्लो आ जाता तो क्या उससे प्रॉब्लम होने वाली
2: है? देखिए, दो प्रॉब्लम इसकी होती है। पहली प्रॉब्लम यह है कि जो आप जिस स्कीम के तहत ये लेकर आ रहे हैं उसकी थोड़ी कॉस्ट RBI के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि RBI ने जो एक्सचेंज का जो रिस्क है, जो प्रीमियम है, वो RBI ने लिया, तो उसकी वजह से थोड़ी कॉस्ट ऑफ फंड्स RBI को उसमें ज्यादा पड़ेगी। थोड़ा आप देखेंगे जो आने वाला समय है RBI की बैलेंस शीट पे इसका असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। दूसरा, जो ये 130 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो हुआ है, इस वजह से आज ही के आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको कि बैंकिंग सिस्टम में 10 लाख करोड़ रुपए सरप्लस लिक्विडिटी हो गई है। और जो ओवरनाइट रेट है, जो ओवरनाइट बैंकिंग रेट कहलाता है, ओवरनाइट बैंकिंग रेट रिजर्व बैंक के एक टारगेट रेट होता है कि रिजर्व बैंक एक राइट रेट मेंटेन करना चाहता है, उस रेट के नीचे आ गया है ओवरनाइट रेट। यानी बैंकों को ऊपर ये बर्डन पड़ेगा, उनको जो पैसा सरप्लस बैंक में है वो डिप्लॉय इतनी फास्ट तो देखिए कर नहीं सकते। 10 लाख करोड़ रुपए आप इमीडिएटली आप उधार नहीं दे सकते, डिप्लॉय नहीं कर सकते, और वो बैंकों की ट्रेजरी में वो पड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट पड़ रही है बैंक के ऊपर। बैंक ने ऊपर रेट में बोरो किया हुआ है, 6.5% FCNRB में बैंक को रेट दिया है उन्होंने, तो इसका असर नेगेटिव पड़ता है कि ज्यादा पैसा भी और जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे उसका नुकसान होता है, और यही कारण है कि RBI ने ऐसा कदम उठाया है।
0: पुनीत, यू नो markets, of course, like we said, saw today, it's the fourth day that the markets, this week at least, that the markets have, you know, ended in red, closed in red. But this is not a one-off. You know, we've been seeing this volatility for a few months now, over a period of time. Now, for those of the investors, for those people who do not have the appetite to invest in a stock market, who are risk averse, at this moment, if they do not want to, you know, venture into the stock market, or if they are already invested in the stock market, but they are looking at other avenues, what are the other options, especially given the kind of geopolitical

0: weakest since March 2022. How do you look at it?
1: So, Anubha, if you really look at it, so you can really look at it from different perspectives.
0: Okay.
1: One, of course, is the fact that the absolute number, if you look at the 53.3 below long-term average, means that there is some inherent underperformance vis-a-vis business activity.
0: Okay.
1: But when I look at it in context of the challenges that the economy has, so this was a very difficult period for Indian economy. Then you had the war in West Asia, you have war in Europe, commodity prices have gone through the roof, inflationary pressures are there. The story itself mentions that the input cost pressures have really gone up. When I look at all this, it gives me a lot of satisfaction that our business activity continues to be robust.
0: Right.
1: It continues to expand.
0: Yeah.
1: Many other countries have seen huge challenges. And here I might mention the fact that China is facing a crisis in manufacturing.
0: Okay.
1: There is a lot of talk right now that China has to come out with a stimulus to boost its... And this is despite China having the highest possible exports, highest numbers of exports in the last many, many years. That means China's domestic economy is not doing well at all because export numbers are very, very large. So clearly, I think given these challenges and the context of the geopolitical difficulties we have, I think these numbers are pretty good. And the moment the inflation pressures go down and I think the war sooner or later comes to an end, I think we'll do well.
0: Right.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और भरोसेमंद सप्लाई चेन दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आज हुए समझौता ज्ञापन से आपसी सहयोग की निरंतरता को नई गति मिलेगी.
3: क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है. इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे. बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है. हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है. हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे.
2: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया. पुनीत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और बेल्जियम के बीच में और बेल्जियम दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. और अगर इसको हम इस नजरिए से देखें कि भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, तो इन समझौते के क्या मायने?
1: देखिए, भारत ने, जैसे आपने कहा कि भारत अपना जो ट्रेड बास्केट है वो एक्सपैंड कर रहा है बहुत तेजी से. तो एक तरफ हम देखते हैं कि एफटीए हम यूके से साइन करते हैं, ईयू से साइन करते हैं, अफ्रीका में साइन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से साइन करते हैं. तो बेल्जियम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी में बेल्जियम का बहुत बड़ा योगदान है. और जैसे हम जानते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होगा भारत की प्रगति में, तो मुझे लगता है ये जो एक समझौता है उस लक्ष्य से जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा.
2: और एक और अच्छी खबर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की. उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने की दिशा में मजबूत आधार देंगे. उन्होंने दुनिया भर में भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों के अधिकतम उपयोग की दिशा में देशव्यापी और समग्र प्रयास करने का आह्वान किया. तो पुनीत जी, जैसा आप अभी जिक्र ही कर रहे थे कि जो मुक्त व्यापार समझौते हैं इनके माध्यम से भारत अपने व्यापार को काफी विस्तार दे रहा है और जो अभी हमारी जीडीपी की फिगर्स आई है उसमें छोटे और मध्यम उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डाला पीयूष गोयल जी ने, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहें।
1: देखिए, जो भारत को अपनी जगह बनानी है अगर इंटरनेशनल ट्रेड में, हमारा

0: भी जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है, करीब करीब 2% से भी कम हमारा जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, और वो हमें 5% का हमारा लक्ष्य है, प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही है। और मुझे लगता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक जो कॉम्प्लेसेंसी थी, एक हम बिल्कुल बैठे थे आराम से कि देखिए कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा एक धरे पे चला आ रहा था पिछले 50-60-70 वर्षों से, वो एक शेकअप हुआ है। और इसलिए ये जो बास्केट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खास तौर से मैं कहूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और समझौता हूं आपको, इसका असर आपको 5 वर्ष के बाद मालूम होगा। ये अभी ये एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, इसका असर अगले 6 महीने में या 1 साल में आप नहीं देखेंगे। जो नंबर्स हैं उसमें 2 से 3 वर्ष 4 वर्ष लगेंगे, फिर आप इसका असर देखिएगा।
1: और अभी तो जैसा गोयल जी ने कहा है कि कनाडा, मेक्सिको, चिली और तमाम और देशों के साथ भी भारत इस तरह के समझौते करने वाला है।
0: 50 ऐसे FTAs इन द वर्क्स हैं भारत के लिए, और ये बहुत बड़ा एक नंबर है। देखिए भारत जैसी अर्थव्यवस्था ही अफोर्ड कर सकती है, छोटे देश तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इस पोजीशन में है कि हम ऐसे एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं, ये भी एक उपलब्धि है।
2: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी टूडे एम्फसाइज दैट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर वन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रिवन बाय इनोवेशन, क्वालिटी एंड कंपेटिटिव प्राइसिंग। एड्रेसिंग द 66th Annual Convention of Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, in New Delhi, Mr. Gadkari said the sector, currently valued at over 22.75 lakh crore rupees, contributes nearly 15% of the country's GST collections and supports around 4 crore direct and indirect jobs. He highlighted that India's automobile exports grew by 24% during 25-26. The Union Minister also expressed confidence that the industry's contribution to the country's economic growth will continue to expand. Puneet, you know, like I just read that the auto sector is really very, very important for us. It contributes to our GDP in a very big way. The exports have grown by 24% in 25-26. What is the way forward? What are the areas where we need to work in this sector?
0: So, Anubhav, like you said, I think for any country, any economy, automotive sector is central to growth, because it is not only the direct taxes or the employment that it provides, the indirect mobility, the indirect momentum it provides to the economy. So unless the transportation sector grows, you can't have an economy which is growing. So clearly it is that important. However, in India, this industry is transforming because of the way the fuel sector or the energy sector is transforming. So now you have a whole spectrum of vehicles, from electric vehicles to hybrids, to ethanol driven, to mixed fuel. I think that is the way forward. The industry has to adapt to these new technologies in terms of fuel, in terms of mobility, and that is how we can grow. Also, if you look at exports, if you look at new technologies, I think innovation in automotive sector will be the way forward for
2: us. So R&D is one area where we need to really work for.
0: Absolutely. And I know personally, I know a lot of people who are working in this area, and innovation and technology and research is the heart of this. If we don't do it, we will lag behind for sure. Right.
1: और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 0.3% बढ़ा, जबकि जापान का निकेई 225 0.2% गिरा। जी आप क्या कहेंगे आज के बाजारों की परफॉर्मेंस के बारे में?
0: एशिया यूरोपीय बाजारों में हमने देखा है कि काफी वॉलिटिलिटी बहुत रही है पीछे, खासतौर से सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि स्टॉक्स की बहुत ज्यादा वेटेज है कोरिया में, जापान में, ताइवान में, तो वहां पर काफी वॉलिटाइल वो रहा है। और अमेरिका में भी थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयरों में गिरावट हमने देखी है पिछले दिनों, तो ये एक रिस्क फैक्टर रहा है इकोनॉमीज के लिए। पर मुझे लगता है कि गिवन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये वॉलिटिलिटी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। आप देखेंगे कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, और इसके मुकाबले भारत तो काफी स्टेबल है।
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices erased earlier losses and hovered near six-week highs after fresh U.S. strikes on Iran and renewed Israeli threats against Tehran heightened concerns about supply disruptions. Brent crude was trading 1.6% up at $97.17 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 2.2% higher at $93 per barrel when reports last came in.
1: और सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1.8% बढ़कर 1,00,000

0: 51,941 रूपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1.8% बढ़कर 232,533 रूपए प्रति किलोग्राम थी। पुनीत जी, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बार फिर से हमें तेजी दिखाई दे रही है सोने चांदी में आज।
1: अमरीश जी, देखिए जैसा शेयर मार्केट में तेजी मंदी चल रही है, काफी वॉलिटिलिटी चल रही है, ऐसे ही करेंसी मार्केट्स में यील्ड में हम देख रहे हैं, वैसा ही माहौल कुछ सोने चांदी के बाजारों में लग रहा है। काफी वॉलिटाइल है, परसों बाजार काफी जोर के गिरे थे, फिर वहां पर फिर बढ़त आई। ये भी न्यूज ड्रिवन है, सेंटिमेंट ड्रिवन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी ये माहौल रहेगा। तो पूरा एक वॉलिटिलिटी का माहौल या इनस्टेबिलिटी का माहौल मार्केट्स के अंदर और इकोनॉमी में भी चल रहा है और उसी का ही रिफ्लेक्शन है। बट देखिए, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत मंदी है, वो 1-2% के रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा ही रहेगा शायद।
2: अ वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू पुनीत, यू नो द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे वी कैन लाइक वी सॉ दैट every day it's a you know volatility, but given the fact that we were earlier discussing our foreign exchange reserves are very comfortable, so it's a good news for us given the way the oil prices are moving.
1: So Anubha, oil prices of course are a matter of concern and it really hurts the Indian economy, no doubt about it. We wish it were lower. However, it is very political right now, right. And I don't think this is going to sustain. So this may be a short-term challenge for us, but longer-term, I think we'll be in a happy place.
0: पुनीत जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद अमरीश जी।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next 5 years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Monitor. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: अभी आप प्रोग्राम मार्केट मंत्र का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

दोस्ती फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। सुनने के ख्वाहिशमंद थे दिग्रस यवतमाल महाराष्ट्र से किरण शिंदे और हनुमानदास साहू। इसी नगमे की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका खोरवाल ने। और आप हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, विशाल सपकाल, शास्त्री नगर बीड शहर से। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर थे रामगंज खंडवा एमपी से विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू। और ये फरमाइश ईमेल मौसूर हुआ पटेल नगर मालोट से डॉ रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया की जानिब से। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर थे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंजोलिया, प्रियंका पंजोलिया, संप्रीत और उनके अहले खाना। और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा की जानिब से। और आप हैं अलीगढ़ डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी। नई दिल्ली से इंद्रजीत छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, रविन्द्र छाबड़ा। टैगोर गार्डन से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई। और रघुनगर दिल्ली से इस वक्त हमें सुन रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानू, अलीजा नायाब। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज की फरमाइश भी थी और इसी नगमे को सुनना चाहते थे।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, और ही फरमाइशी मेल मौसूला कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा का। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर करते हैं। फिल्म है पारसमणि, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, नगमा निगार असद भोपाली। सुनने के ख्वाहिशमंद भोला कॉलोनी घरौंदा करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी और गुंजन, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, रोबिन राणा। फारूक अली खान फैजी फराज की फरमाइश है कस्बा गुन्नौर यूपी से, और आप हैं अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और अहले खाना। अगला ईमेल मौसूल है आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी का, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से, राष्ट्रपाल गजबी, तनमी का, तन्मय गजबी और साथ में राधिका डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी और डॉक्टर प्रियंका मोदी, और आप हैं दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं बरकाकाना से अफजालता, शाहीन सुल्ताना और सोनू तस्नीम। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, बहुत जल्दी इसको करते हैं हम साइडलाइन। और जाकिर मुलानी, सलमा और मुमताज की फरमाइश है फूल चंचोली पंधरपुर से। अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं, आप हैं मुबारकपुर आजमगढ़ यूपी से दिलशाद हुसैन और अहले खाना। अगला ईमेल मिला है बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम का। और जाफरगंज जहानाबाद बिहार से इस नगमे को सुनने के इंतजार में है इंतजार अंजुम और आलम आरंग।

अपनी यादों का लश्कर रात भर सोने नहीं देता, गजब का बोझ पलकों पर लिए हर सुबह आती है। इंतजार की घड़ियां कैसे गुजरती हैं, ये उससे पूछे जो इश्क का बीमार है। चलिए जनाब, ताबिशात प्रोग्राम के अगले पायदान पे कदम रखते हैं और आपको एक और खूबसूरत नगमा दिलकश आवाज रफी साहब की, नाइट इन लंदन फिल्म का नगमा आनंद बख्शी का लिखा हुआ मौसीकी लक्ष्मीकांत पैरेलाल की, और इस खूबसूरत नगमे की फरमाइश की गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं आकले दीवान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, मीनाक्षी और उनके बहुत सारे साथी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से फरमाइश की है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी ने। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या और हेमलता, और आप हैं के आर साहू, गन्नूलाल रचक, मुरली छत्री, देवरी भाटापारा से। अगला ईमेल मौसूल हुआ है सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली पथिक, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं वारसी क्लब। अच्छा, मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख और उनके बहुत सारे साथी। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। बहुत जल्दी रिपीटेशन का सिलसिला शुरू हो जाते, थोड़ा सा ध्यान रखा करें दोस्तों। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, और ये फरमाइश मिली है शाहनगर यतमाल से राहुल मनवर, सल्ला मनवर, बेबी प्रियांशी की। इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं हमारे कुछ और दोस्त छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश और उनके कुछ और साथी। और अगला ईमेल किसका है थोड़ा सा अपडेट करते हैं, उसके बाद बताते हैं। आप हैं आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर और सहदेव दामोदर शशिकला और सुमित की फरमाइश है बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से। और आज गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी सामाईन जरूर मेरा साथ देंगे और आखिर तक मेरे साथ रहेंगे। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर और पुन्नू वडतकर, शाहरुनूर अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी हैं। हररपुर मटकली बरेली से आपकी फरमाइश मिली है। और शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर भी हैं साथ में शामिल। और आज थोड़ा सा जल्दी शामिल हो रहे हैं वो जिनकी धड़कनें अक्सर बढ़ जाती हैं। ईमेल में कहते हैं कि हमारी धड़कनें आप बढ़ा देते हैं और हमारा इम्तिहान लेते हैं। चलिए, तो इम्तिहान की घड़ियां खत्म हुई। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से हैं एमपी से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत और राशि रक्षित, सतीश अनेजा साथ में उनके बिमला अनेजा, चंडीगढ़ सिटी से आपने फरमाइश मिसाल की है। और एक लाइन ईमेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी करते हैं साइड लाइन। सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद और बन्नू निषाद हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, और ये फरमाइश मिली सभी तरह के विद्यार्थी बुल्केवाली फल्लाजा, और साथ में राधे कुमार विद्यार्थी आपने गोकुल चौक गंगचला सहरसा से फरमाइश मिर्साल की है। सरलाही सोकना नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा और पंजाब रामटेके यशोधरा शिवा की फरमाइश है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से। तो आइए सुनते प्रोग्राम का अगला नगमा मोहम्मद रफी की आवाज, बहुत ही खूबसूरत वसीयत है ये मोहब्बत की।

0: से दो गाने को पसंद किया था, दादा बाबू रोड गेटी झारखंड से साइमा नवाज, हसन नवाज और एले खाना ने। मजूबा टीला दिल्ली से फरमाइश की थी कमल बालूचा, मधु बालूचा और सागर बालूचा ने। और आप हैं भाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या। मुझे लगता है कि शायद ये पहले हम शामिल कर चुके हैं, नहीं हुआ है तो बता दीजिएगा, दोबारा कर लेंगे। सुब्रत चौधरी कोलकाता से सुन रहे हैं स्वच्छता मिले शायद प्रोग्राम। और बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत निशु हैं मुक्तसर पंजाब से। और शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद हैं नांदेड़ा येताला महाराष्ट्र से। और विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे की फरमाइश थी आकोट से, इसी नखमे को सुन रहे थे। बेगम गेट कासगंज से अहमद असलम सैफी, जेबू निसा बेगम, सद्दाम सोनी और ये फरमाइश मिली है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेरा जहां के आजाद नगर लखतर हरिद्वार से। और आप हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, गाड़िया नगर यवतमाल से। और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और एहले खाना। तामिलेश्वर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। दोस्तों ये प्रोग्राम जारी है, आइए पहले सुनते हैं खबरें बरे से गई से का उर्दू न्यूज बुलेटिन, उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा आपके पसंदीदा प्रोग्राम का।
1: ये आकाशवाणी है, बरे सगीर की खबरों के साथ मैं अब्दुल हफीज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बार्ट डी वीवर ने मजबूत कलीदी शराकत दारी की जरूरत पर जोर दिया। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की। भारत और बेल्जियम ने दिफाई ताउन के सिलसिले में माहदे पर दस्तखत किए। अगले पांच वर्षों में बाहमी तजारत को दुगना करने और सेमी कंडक्टर, अहम मदनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में ताउन को बढ़ाने से इत्तफाक किया। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सैमाही में 7.8% GDP की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में MSMEs की सताइश की। बहुत तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में सैलाब आ गया है। वज़ीर आज़म ने वाराणसी में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की।

0: 55 लाशें नवल परासी ईस्ट से 218, नवल परासी वेस्ट से 208, जिसमें भारत से बरामद की गई 18 लाशें शामिल हैं और जिन्हें नवल परासी वेस्ट के सुपुर्द किया गया। नीज नुआकोट से मिली 177 लाशें शामिल हैं। इस तरह रसुआ जिले से 127 लाशें, गोरखा से 69, धादिंग से 60 और तनहू से 38 लाशें बरामद की। चीन की जानिब से सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। नेपाल सरहद की नजदीक तिब्बत में ग्योरंग काउंटी इस सैलाब से मुतासिर हुआ और कल तक की खबर के मुताबिक यहां से 541 लोग लापता हैं। मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में अहलखाना ने कुशा घास से पुतले बनाकर अपने उन रिश्तेदारों की आखिरी रसूम अदा कर रहे हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन और रूस के माबैन जारी तनाजे को खत्म करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने यूक्रेन के अपने हमनसब एनडी सिबिहा से भी मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत मुसलसल अपने मौकिफ पर कायम है कि यह दौर जंग का दौर नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह के तनाजात के दौरान तजारती बाहरी जहाजों पर हो रहे हमलों के मसले को उजागर किया और कहा कि इससे आलमी जनूब के कई ममालिक पर मुख्तलिफ एतबार से असर पड़ा है, जिसे तेल, खाद और खाने की अशिया की कमी हुई है। भारत को एक आलमी ताकत करार देते हुए यूक्रेन के वजीर खारजा एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को खत्म करने की गई अपील का खैर मकदम करता है। चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत आज सिंजोन में मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी ली चोक यी का सामना करेंगे। श्रीकांत ने कल कनाडा के आलमी नंबर 9 खिलाड़ी विक्टर लाई को 21-18, 21-19 से शिकस्त दी। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल मध्य प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और शिमाल मशरकी खित्तों में कुछ मकामात पर कल तेज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, जेली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और अंडमान व निकोबार जजायर में अगले दो दिनों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। इसी तरह का मौसम कल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में रहने का इम्कान है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बार्डी वीवन ने मजबूत कलीदी शराकतदारी की जरूरत पर जोर दिया। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की। भारत और बेल्जियम ने दिफाई ताउन के सिलसिले में मुआहदे पर दस्तखत किए। अगले 5 वर्षों में बाहमी तजारत को दोगुना करने और सेमी कंडक्टर, अहम मदनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबों में ताउन को बढ़ाने से इत्तफाक किया। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सहमाही में 7.8% जीडीपी की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में एमएसएमईज की सताइश की। बहुत तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में सैलाब आ गया है। वजीर आजम ने वाराणसी में सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के अलावा डीडी फ्रीडिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों प्रोग्राम जारी है तामिले इरशाद। अगला नगमा आप तमाम सामाइन की समातों की नजर है।

धरती कहे पुकार के फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। सुनना चाह रहे थे पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन, और ये फरमाइश मिली करनाल से बलविंदर सिंह सोडी साहब की। इसी नगमे को सुनने के मुंतजर थे बेगम गुलनाज सलमा हाशमी, सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी, दरगाह अजमेर शरीफ राजस्थान से। और ये ईमेल मिला नथुराम शर्मा, ललित शर्मा और इंदिरा शर्मा का, मंडी हरजीराम मलोट से। रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान की फरमाइश हनुमानगढ़ राजस्थान से थी। और विनोद वंडलकर, वीना वंडलकर और विविधा की फरमाइश थी रायपुर छत्तीसगढ़ से। और राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और साथ में उनके बिट्टू कुमार। भंडारा रोड क्रू माना महाराष्ट्र से हर्षल पाटिल, कुंज बिहारी और राधा पाटिल की फरमाइश थी। और अगला ईमेल मिला दिलीप रामेकर, हर्ष रामेकर, अक्षय रामेकर का, राहड़गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। और आप हैं अनिल ताम्रकार, अमृत ताम्रकार, दिलीप वर्मा, शिवानी चौक कटनी से, शिवाजी चौक माफ कीजिएगा। और ये फरमाइश ईमेल मिला है सांगली जत शहर से अल्ताफ हुजे सैफुल्ला सबाहत का। और

पट्टी मधुबन विहार से अरविंद कुमार, भव्य कुमारी और उनके अहले खाना, छिंदवाड़ा एमपी से उदयभान ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे की फरमाइश थी। और आप हैं सावरा नगर अमरावती महाराष्ट्र से रेखा संगर और संजय संगर, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा हैं। आपने राज पैलेस मऊनाथ भंजन से फरमाइश मेरे साल की। और अगले मेन विलाय सुनील पाठक, कमल पाठक, कव्य मल्होत्रा का अनारकरी बाजार जगराव से, और तंगौरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगौरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और उनके अहले खाना, और नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल की फरमाइश भी थी। इसी नगमे को सुन रहे थे नगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज केतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीदेवी गोस्वामी, साथ में थी मीनाक्षी और मास्टर लिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल की फरमाइश। नर्मदा पाक मंगल वेड़ा महाराष्ट्र से थी और इसी नगमे को सुनना चाहते थे नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबे जुबैर और अंजुमन खान, उनके कुछ और साथी, और मुनव्वर अल्ला पीरजादा, नसीम मिर्जा, अरबाज शहबाज की फरमाइश थी पश्चिम थोक गंज दंडवारा से। आइए सुनते प्रोग्राम का अगला नगमा, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में नगमा, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म है आए दिन बहार के।

बेकरार तो हमारे वो दोस्त भी हैं जिनके नाम अभी शामिल नहीं हुए हैं, और इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए शामिल करते हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, साथ में कुलदीप सिंह होरा, संजय ढींगिया नमन ढींगिया पाढींगिया बागपत यूपी से हैं, और प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली कंवर कॉलोनी बड़वा खरगोन से, और ये फरमाइश मिली है संबल से छोटे अंसारी अलव अंसारी असद अंसारी की, और आप हैं वंजारा नागपुर महाराष्ट्र से अनिल कोहले छाया कोहले और प्रियांश कोहले।

महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी सिडको संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुनील सामग और साथ में अंजलि सुनील और ये फरमाइशी ईमेल उन दोस्तों का जिनके नाम हो गए शामिल, तो आगे बढ़ते हैं। ये ईमेल मिला है अमीर खुसरो रोड गंज टंडवा से भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीर हसन बेगम शबनम अनवार का, शेख अल्लाह बख्श बेगम रावे शेख शेख रहीमुल्ला तेलंगाना निजामाबाद से हैं, और मास्टर विठल सुरोशी मायरा सुरोशी सुषमा सुरोशी काटा रोड वाशिम से, इम्तियाज इमाम आतिश ताहिर परवीन आतिश साथ में डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा बिशनपुर गेडी झारखंड से, और पंसी बुजुर्ग से हैं विजय शेगांवकर रेणु शेगांवकर और ऋषिकेश और उनके कुछ और साथी, तालाब डुमरा से फरमाइशी वलीउल अंसारी अस्मना अंसारी मोहम्मद सुल्तान अंसारी ने, और बेनजीर कौसर मोहम्मद हसन पवार के साथ में मोहम्मद रफीक पवार ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से, और सुशांत प्रिया मास्टर निवेश कुमार लड्डू कुमारी टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर नई दिल्ली से, और ये फरमाइश मिली है अनवर सावरी शन्नू सावरी मुदस्सिर की दाऊसराय सहारनपुर से, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा भूमिका अरोड़ा पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से, और अब है अगले नगमे की बारी। बहुत जल्द लता मंगेशकर की आवाज में अगला नगमा आप तक पहुंचेगा, और इस नगमे की जहां तक बात है दाग फिल्म से हमने इसका इंतखाब किया, साहिर लुधियानी साहब ने इस नगमे को कलम किया, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और जहां तक फरमाइशों की बात है तो उनको भी शामिल करना चाहेंगे। मोहम्मद यूनुस खती है, मोहम्मद सादिक खती है, अयुब खती है शिपा कॉलोनी खंडवा से, और ये फरमाइशी मेल मिला है गगनदीप थांडी तृप्ता कुमारी थांडी प्रियंका थांडी का टोरवाल नवाज शहर से, और गंगाधर सावनकर विजयलक्ष्मी है साथ में राजेश राकेश भी हैं रामरतन टॉकी कुंडलवाड़ी से, बटेना पाटन दुर्ग से हैं बलकरण वर्मा अंजनी और ज्योति वर्मा, और धर्मिन छिपा कपिल छिपा पूजा परिहार की फरमाइश भोपालगढ़ राजस्थान से मिली है, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा साथ में अलका मिड्ढा और अश्वनी चुग, ये तो पहले हम शामिल कर चुके हैं जनाब 100%, और के संजीव डाबेराव डॉक्टर रसिका डाबेराव डॉक्टर कौस्तुम डाबेराव की फरमाइश विदर्भ आकोट से मिली है, ओम प्रकाश है उषा राय अमित कुमार है कोटवा नारायणपुर बापट्टी बलिया से, और ये फरमाइश मिली है बल्लारपुर चंद्रपुर से हेमंत कुमार भारशंकर प्रिया भारशंकर साथ में है मास्टर ओमी भारशंकर गुलाबदास मानिकपुरी रायदास मानिकपुरी रानी मानिकपुरी लेवाई छत्तीसगढ़ से हैं मधुसूदन भट्ट आरती भट्ट और साथ में प्रयागराज भट्ट जयराज प्लॉट राजकोट से बाबूभाई भारती देवी उदयपुर से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता वंश है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है किशोर वानखेड़े उषा वानखेड़े विशाल वानखेड़े का गांव चंदूर बिस्वा बुल्डाना महाराष्ट्र से, और किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास आशा देवी और वर्षा सुमन। आइए नगमा सुनते हैं, जैसे वक्त रहेगा तो आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे।

उमा उगान का डुगू ने और आप हैं उदोस जो शामिल हो चुके हैं, तो इनको साइडलाइन कर देते हैं। ये फरमाइशी मेल मौसूल है मोहनपुर कमालगंज फरुखाबाद से तस्नीम अहमद फारूकी की जानिब से, और इसी नकमे को सुनना चाहते थे कल्पना मदनजा मानक मानव और मयंक नरोली फाटक बिलार्ड वापी गुजरात से, और आप हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कोई मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी लड्डू कुमारी, साथ में टुक टुक को। और ये फरमाइश मिली है धनवंत तेलीवाला से निशा सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया की जानिब से, और मोहम्मद हसैन पवार हसू बाबा और सफिया है मैं वो अच्छा खंडवा एमपी से इनकी फरमाइश में मौसूल हुई है, और मारारा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, और बड़े रवि चौराहा वाराणसी से हैं अरुण कुमार मालवेदर, सरिता मालवे, और इसी नगमे को सुन रहे हैं वरुण जोड़ से मैं सरकटे विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे। और डाक फिल्म के इस नगमे की आपने भी फरमाइश की अहमद भाई फूल वाले इकबाल अहमद इमरान अहमद छोटी बलिया करजत मुंबई से, और कोली नांदेड़ से रायन नारायण गायकवाड़, दया नंद गायकवाड़, साथ में ओंकार गायकवाड़, और मोहम्मद मुजीब शेख, जैना नावे शेख, बेबे अमीरा हैं आशियाना अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई से। और ये फरमाइशी ईमेल शाम की टेबन्ना के टेफ कार्तिक टेका राठ गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से ये ईमेल हमें मौसूल हुआ है, और आप हैं राजकुमार टूडी, प्रमोद कुमार टूडी, पुष्पेंद्र कुमार टूडी, गांव फरासी हिसार से।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

इसने हमें की फरमाइश की जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभास कोटेचा, हंसा कोटेचा और आशीष कोटेचा ने, और जय मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, साथ में उनके हैं आस्था अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। और इसी नकमे को सुन रहे हैं शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान गंज टंडवारा से, और ये फरमाइश मिली पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और मधु नायक की। और आप हैं अस्तुबरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजी बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, और ही फरमाइशी मेल मिला है बालकेश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और वीर चौरसिया की जानिब से, और राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र भाई रुद्र और साथ में रानी मुकेश गुप्ता। और इसी नकमे को सुन रहे हैं चौटल हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, रानी बापू से इलियास मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी, साथ में बाबा जैद तो कुरैशी और उस्मान शेख फौजी, साथ में सायरा बानो करिश्मा भी हैं। हिपर सोगा लातूर से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है। और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, साथ में मोहम्मद रिहान और उनके अहले खाना। यवतमाल विदर्भ से संतोष खट से, विनोद खट से और अहले खाना, और ये फरमाइश मौसूल हुई है। मुंडाला महाराष्ट्र से उन दोस्तों की जो शामिल हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं जनाब। और अनंतनाग तरुणा भगत सुलोचना है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से, राहुल मनमर सरला बेबी प्रियांशी हैं, आपने राहुल नगर श्याम नगर यवतमाल से फरमाइश हमें साल की है। जब्बार मोहम्मद साथ में, नजीब खान।

जोशी खान जी पीर उदयपुर से और ये फरमाइश मिली है, गांधीराम गृह से प्रवीण सोनी, कलवती सोनी और प्रथम सोनी की जानिब से, और जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, विली से, जनकपुरी सहारनपुर से, और ये फरमाइश रेलवे रोड गंज टुंडवारा से है, मोहम्मद कलीम जख्मी, साथ में नजमा बेगम, नाज बेबी, फातिमा जावेद और उनके कुछ और साथी, और पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, साथ में योगेश शर्मा भी हैं। बहुत खूबसूरत ईमेल आपने भेजा, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश गांव दुलापुर मुरादाबाद से हैं, और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। बाबा साहेब अडोदे आदि चर पे चंद्र प्रभा है जरूड़ वरुड़ से, और ये फरमाइश ईमेल मिला है उन दोस्तों का जिनके नाम हो चुके हैं शामिल, जयराम सिंह अड़कर, दिशांत और अर्पिता की फरमाइश बुहाली यवतमाल से मिली है, और अजीत भावसार, साथ में प्रमिला भावसार विरमगाम गुजरात से, और भटिंडा रोड मंडले वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, साथ में मोहित नारंग, और साईनगर आर्य महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शन मिर्गे, डॉक्टर प्रियंका काल पांडे की फरमाइश भी थी, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, साथ में हेमलता, और व्हाइट हाउस से हैं भारत भूषण और अहले खाना, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुए उन दोस्तों का जिनके नाम हो गए शामिल, विनोद कुमार ढवले, विनुताई और प्रथमेश कुमार ढवले की फरमाइश रालेगांव अयोध्या नगर से मौसूल हुई थी, और विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक मोड़त, बोरखेड़ा उज्जैन से इसी नगमे को सुन रहे थे, पीएस ना होकर, निर्मला ना होकर, विशाल ना होकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, और ये फरमाइश ईमेल बक्सर बिहार से मिला शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खतून अंसारी, सुमित रमेश साहू का, और आप हैं अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे, और ये थी तमिल शाद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और बेल्जियम के बीच सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभुदयाल और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भारत की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री श्री थियो फ्रैंकिन और अधिकारियों व बिजनेस लीडर्स का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन भी भारत आया है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह पहली भारत यात्रा है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर प्रभुदयाल। अम्बेसडर दयाल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अम्बेसडर दयाल, बेल्जियम के प्रधानमंत्री की मौजूदा यात्रा के संदर्भ में क्या आप हमें भारत बेल्जियम संबंधों की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि बता सकते हैं?
3: बेल्जियम यूरोपियन देशों में बिल्कुल पहले स्तर पर है जिन्होंने भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना की थी सितंबर 1947 में, जब भारत जस्ट आजादी हुआ था। और इस तरह से धीरे धीरे करके एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बन गई दोनों कंट्रीज में, जो कि स्थापित है डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और प्लूरलिज्म के आइडियाज पे। तो ये एक हिस्टोरिक फाउंडेशन है जिसके बैकड्रॉप में बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर बार्ट डी वेवर अभी भारत आए हुए हैं, और उनकी जो यात्रा 2-4 सितंबर की है, ये एक तरह से माइलस्टोन है बायलैटरल एंगेजमेंट्स में। जो भारत और ईयू का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है हाल में, उसके साथ एक तरह से ये कोइंसाइड करती है। तो कई डिकेड से जो इकोनॉमिक टाइज हैं भारत और बेल्जियम के, वो बहुत अच्छे रहे हैं, और बायलैटरल ट्रेड $13 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन बायलैटरल ट्रेड के अलावा जो हमारी रिलेशनशिप है, ये बड़ी

0: डाइवर्सिफाइड है और कई क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब में हमारे जो रिश्ते हैं फैलते जा रहे हैं और अब तो कुछ स्ट्रेटेजिक डोमेन्स जैसे स्पेस, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन, इन तक भी हमारे संबंध अब बढ़ गए और जो हमारे कई स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको और ताकतवर बनाने की कोशिश है। जैसे भारत की जो एक कोशिश है परमानेंट मेंबर बनने की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका बेल्जियम हमको हमेशा से सपोर्ट करता है। तो इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण।
1: अम्बेसडर दयाल, हम कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बेल्जियम संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में क्या कहा।
2: फ्रेंड्स, इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज हमने इन संभावनाओं को ठोस परिणामों में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फ्रेंड्स, बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है। हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है। हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे।
1: अम्बेसडर दयाल, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना ज्वाइंट प्रेस वार्ता में, तो दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और गहरा करने का एक संकल्प लिया है और दोनों नेताओं का ये मानना है कि अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना किया जा सकता है। जैसे कि आपने अभी बताया कि दोनों देशों के बीच में $13 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है और दोनों नेताओं का ये मानना है कि अगले 5 वर्षों में उसको दुगना किया जा सकता है। आपके विचार में ये कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिन पर दोनों देश साझेदारी को दुगना करने के लिए और अपना ध्यान दे सकते हैं?
0: अभी तक जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत हद तक डायमंड ट्रेड पे बेस्ड रहे हैं, लेकिन अब जो है हम कोशिशें कर रहे हैं कि ये कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तक फैल जाएं और जो हमने स्पेसिफिकली टारगेट किए हैं सेक्टर्स वो हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र है, इसमें बेल्जियम का जो एक आईमेक इंस्टीट्यूट है वो भारत के इकोसिस्टम में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो रहा है। तो इसके अलावा दोनों कंट्रीज हैं वो फोकस कर रही हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे, फार्मास्यूटिकल्स, लाइफ साइंसेस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसको फिनटेक कहते हैं, मैरिटाइम, पोर्ट लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम्स पे भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है दोनों देशों की तरफ से। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से ब्लूप्रिंट है, ये भारत और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उससे उसको बहुत बढ़ावा मिला है और साथ ही साथ हमारे जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बनाए गए उनसे कोशिश है कि क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट तेजी से हो सके।
1: अम्बेसडर दयाल, आगे बढ़ते हुए आपने कार्यक्रम की शुरुआत में इंडिया ईयू एफटीए का जिक्र किया था, तो इसी में आपसे मैं थोड़ा और विस्तार से ये जानना चाहूंगी कि आखिर भारत ईयू पार्टनरशिप जो एफटीए में हुई है उससे भारत बेल्जियम के आर्थिक साझेदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
0: देखिए, जो इंडिया और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे जो भारत और बेल्जियम के बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस है इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे ट्रेड बैरियर्स हटते हैं और ग्रोथ की नई दिशाएं खुलती हैं, नए रास्ते खुलते हैं। अब जो भारत का ईयू के साथ ट्रेड बढ़ रहा है उसमें बेल्जियम जो है वो दूसरे स्थान पर है। जो हमारे ईयू कंट्रीज के साथ ट्रेड है उसमें बेल्जियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, नंबर 2 पे आ रहा है और इसकी वजह से बेल्जियम को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर टैरिफ कम होते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी पे, केमिकल्स और मशीनरी पे, इन सब से जो ये बायलैटरल ट्रेड बहुत बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो ये ईयू और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे जो कस्टम्स ड्यूटीज कम हुई हैं दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी और ईयू की तरफ से, और जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस थे वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इसकी वजह से जो ट्रेडिंग प्रोसीजर्स है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, वो बहुत बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा देखिए, जो ओवरऑल पार्टनरशिप जैसे तंदुरुस्त होती है, तो जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं जैसे डायमंड ट्रेड, इनको ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ावा मिलता है और इनकरेज मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये एक लीगल फ्रेमवर्क ज्यादा अच्छे होने की वजह से, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और बेल्जियम का, इससे जो सप्लाई चेन है उसको तंदुरुस्ती मिलेगी, और साथ ही साथ जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट जो है इनके लिए भी बहुत अच्छा रास्ता खुलेगा।
1: अम्बेसडर दयाल, आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि कई सारे एमओयू पे भी हस्ताक्षर किए हैं दोनों ही नेताओं ने, डिफेंस के क्षेत्र यानी कि रक्षा के क्षेत्र और ऊर्जा के क्षेत्र में। तो आप क्या हमें संक्षेप में दोनों ही एमओयूज के जो महत्वपूर्ण विभिन्न पहलू हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं?
0: देखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, इसमें दोनों नेशंस ने एक बड़ा महत्वपूर्ण विस्तारित क्षेत्र से संबंधित एमओयू साइन किया है, जिसमें कोलैबोरेशन होगा ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन्स के संबंध में, और साथ ही साथ जैसे ऑफशोर विंड, सोलर एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और स्टोरेज प्लांट्स ऐसे जो पंप स्टोरेज से यूज करते हैं, इन सब से संबंधित कोऑपरेशन की बात है। तो ये जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है, ये जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो जैसे हम बना रहे हैं, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट और एक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो दोनों देश मिलकर स्थापित हमने की है आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा में, तो इसके साथ ही जो डिफेंस सेक्टर, इसमें हमारे दोनों देशों ने बड़े इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं जिनका फोकस है इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप पे, और साथ ही साथ मिलिट्री एक्सचेंजेस पे, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे और एजुकेशन पे। अब जैसे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट डिफेंस कोऑपरेशन के क्षेत्र में ये है कि दोनों कंट्रीज साथ मिलके कंबाइंड एफर्ट से एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर बनाएंगे, खास तौर पे बेल्जियन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भारत के मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोलैबोरेट करके एक टैंक बनाएगी जिसका नाम रखा गया जोरावर लाइट टैंक। तो ये जो टैंक प्रोजेक्ट है, जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन की जो स्थापना की गई है और जो हम इसमें बढ़ावा देख रहे हैं, इस संबंध में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर का कहना है कि वो दिसंबर में ब्रसेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को और गहराई मिलेगी और मजबूती मिलेगी, और उनके साझा भविष्य की ओर एक मजबूत कदम होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: मिस्टर मोदी, बिफोर आई कंक्लूड, लेट मी से हाउ मच आई लुक फॉरवर्ड to welcoming you in Brussels in December, and maybe Antwerp. It would be such a great honor to receive you on an official visit on the occasion of the signing of the EU-India Free Trade Agreement. Your visit would provide an excellent opportunity to continue our conversation. India and Belgium have a shared history that reaches back centuries. Today we have shown that we also share a future. I came to New Delhi because I believe the best of our relationship is yet to come. And after our conversation today, I'm even more convinced of that. Thank you very much, Prime Minister, and thank all of you.
1: आखिर में अम्बेसडर दयाल, बहुत ही संक्षेप में आपसे आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। जब हम किन्हीं दो देशों को देखते हैं तो उनके बीच में पीपल टू पीपल टाइज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो जब हम भारत और बेल्जियम को देखें जिनके इतने पुराने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो आपके विचार में भारत और बेल्जियम के पीपल टू पीपल टाइज कितने प्रगाढ़ हैं और कैसे इनको मजबूती मिल रही है?
0: देखिए, जो पीपल टू पीपल टाइज है इंडिया और बेल्जियम के बीच में, इनकी जो स्थापना इस संदर्भ में और महत्वपूर्ण होती है कि हमारा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, लगभग 35,000 नागरिकों का, जो बेल्जियम में रहता है और वहाँ काम करता है। साथ ही साथ हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो हमारे रिश्ते हैं वर्ल्ड वॉर वन तक पहुँचते हैं, जहाँ लगभग 130,000 भारतीय सैनिकों ने लड़ाई की थी बेल्जियम में, बेल्जियम बचाने के लिए। इसकी वजह से वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है जिसको कहते हैं मेनिनगेट मेमोरियल, बेल्जियम में है। साथ ही साथ देखिए, आज के युग में एंटवर्प में जो ग्लोबल डायमंड ट्रेड है, जिसमें भारत के बिजनेसमैन वहां हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।

0: एजुकेशनल एक्सचेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, भारत से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स अब बेल्जियम में हैं, जैसे सिटीज खासतौर पे उनको आप देखेंगे ब्रसल्स में और ल्यूगो में एवरी ईयर वो जाते हैं, और इसकी वजह से जो लोकल टेक वहां है और एकेडमिक सेक्टर्स उनको बड़ा फायदा होता है। साथ ही साथ देखिए दोनों कंट्रीज को जो कल्चर से बहुत प्यार है, कल्चरल फेस्टिवल से बेल्जियम में भारत की जो मूवीज है बॉलीवुड की इनको बहुत चाहा जाता है, और इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स जो है वहां पर बड़ी पॉपुलर है, और इससे ये हमेशा जो कल्चरल टाइज है इनको बहुत बढ़ावा मिलता है। तो मेरे विचार में ये पूरी जो टोटल पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज के बीच में ये बहुत तंदुरुस्त और अच्छी है और सही दिशा में बढ़ती जा रही है।
1: अम्बेसडर दयाल, आप आज आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने इतने विस्तार से हमें भारत बेल्जियम द्विपक्षीय संबंधों पर जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और बेल्जियम के बीच सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभुदयाल और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। बजने मौसीकी मेरी जब सुनी उस्ताद शराफत हुसैन खान का गाया राग बसंत में ख्याल और तराना।

0: और खुदकार दरवाजों वालों सहूलत से लैस नई नस्ल की मजाफाती ट्रेनें मुतारफ कराने के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम कर रहा है। जनाब वैष्णो ने कहा कि मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए लागत के रेलवे प्रोजेक्टों पर काम जारी है। जनाब वैष्णो मुंबई से सिंधुदुर्ग के दरमियान चलने वाली ट्रेन को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। भारत और फ्रांस ने टेक्सटाइल और फैशन शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर पेरिस में नए माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद आलमी बाजार में भारतीय टेक्सटाइल और हुनरमंदी को फरोग देना है। टेक्सटाइल की वजारत में सेक्रेटरी नीलम शामिराव की मौजूदगी में भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और फ्रांस की कंपनी के दरमियान मुफाहमत नामे का तबादला किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान कृष्ण की जिंदगी और तालीमात ने भारतीय सकाफत और फलसफियाना विरासत में नई रूह फूकी है। चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत आज शेंजेन में मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी ली चियोक यू का सामना करेंगे। श्रीकांत ने कल कनाडा के आर्मी नंबर 9 खिलाड़ी विक्टर लाई को 21-18 21-19 से शिकस्त दी। खवातीन के क्रिकेट में यूएई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप ए के दूसरे मैच में भारत ने हांगकांग को 137 रन से शिकस्त देकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 194 रन के हदफ का ताकुब करते हुए हांगकांग की पूरी टीम 16.2 ओवर में महज 56 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन की टीम ने मुकर्रा 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए। इसमें स्मृति मंधाना ने सिर्फ 64 गेंदों पर 124 रन की तूफानी इनिंग्स खेली, जिसमें 14 चौके और 7 छक्के शामिल थे। अपने शानदार इनिंग्स के दौरान उन्होंने कई आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ डाले, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हममनसब बार्ट डी वीवन ने मजबूत कलीदी शराकतदारी की जरूरत पर जोर दिया। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की। भारत और बेल्जियम ने दिफाई ताउन के सिलसिले में मुआहदे पर दस्तखत किए। अगले 5 वर्षों में बाहमी तजारत को दोगुना करने और सेमीकंडक्टर अहम मदनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबों में ताउन को बढ़ाने से इत्तफाक किया। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सीमाही में 7.8% जीडीपी की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में एमएसएमई की 27 की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के सदर से मुलाकात की। कीव की जानिब से रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की वजीर आजम की अपील का खैर मकदम किया गया। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फेडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए अब सुनिए उस्ताद हफीज अली खान का सरोद पर बजाय राग मियां की मलहर।

0: اسلامی کے ساتھی آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ عبدالحفیظ سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب بارٹ ڈی ویون نے مضبوط کلیدی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا. بیلجیم نے دہشت گردی کے خلاف بھارت کی لڑائی کی حمایت کی. بھارت اور بیلجیم نے دفاعی تعاون کے سلسلے میں معاہدے پر دستخط کیے. اگلے 5 میں باہمی تجارت کو دگنا کرنے اور سیمی کنڈکٹرز، اہم معدنیات اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے سے اتفاق کیا. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے پچھلی سہ ماہی میں 7.8% جی ڈی پی کی شرح ترقی حاصل کرنے کے سلسلے میں ایم ایس ایم ایز کی ستائش کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے یوکرین کے صدر اولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی. کیف کے رنگ سے روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی وزیر اعظم مودی کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا. اور خواتین کے کرکٹ میں یو اے ای کے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ اے کے دوسرے میچ میں بھارت نے ہانگ کانگ کو 137 رن سے شکست دے کر ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اب وہ خبریں تفصیل سے. بھارت اور بیلجیم نے کل دفاعی تعاون کے لیٹر آف انٹینٹ اور قابل تجدید توانائی کے شعبے میں مفاہمت ناموں سمیت کئی معاہدے کیے تاکہ بین ملکی جرائم سے نمٹا جا سکے. ان میں سائبر کرائم اور سفارتی تربیت کے معاہدے شامل ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے پریس کے لیے اپنے بیان میں زور دے کر کہا کہ چیلنجوں سے بھرے اس ماحول میں بھی بھارتی معیشت نے اپنی رفتار برقرار رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلی سہ ماہی میں بھارت میں 7.8% شرح ترقی ریکارڈ کی گئی. انہوں نے مزید کہا کہ آج بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کے لیے اعتماد اور نئے مواقع کا ایک وسیلہ بنتی جا رہی ہے. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ باہمی تعاون کے امکانات روایتی شعبوں سے بالاتر ہو کر اس عت اختیار کرتے ہوئے کلیدی شعبوں جیسے دفاع اور صاف توانائی تک رسائی حاصل کر چکے ہیں. پریس کے لیے اپنے بیان میں بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویون نے بھارت کو سب سے بڑی جمہوریت اور تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت کہہ کر اس کی ستائش کی اور بھارت کو اپنا ایک اہم اتحادی قرار دیا. بھارت اور بیلجیم نے تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اپنے عزم کی توثیق کی. وزیر اعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب بارٹ ڈی ویون نے نئی دلی میں دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد جاری بھارت بیلجیم مشترکہ بیانیے میں باہمی تجارت کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تنوع کا خیر مقدم کیا. دونوں لیڈروں نے بھارت بیلجیم کلیدی مذاکرات کے آغاز کا بھی خیر مقدم کیا. بھارت اور بیلجیم نے اگلے 5 میں باہمی تجارت کو دگنا کرنے کے امنگوں سے بھرا ایک ہدف بھی طے کیا ہے. دونوں ملکوں نے ادویات سازی، لائف سائنسز، سیمی کنڈکٹرز، دفاعی ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ، اہم نوعیت کی معدنیات، قابل تجدید توانائی، بندرگاہوں، لاجسٹکس، خلا اور جدید ترین ٹیکنالوجیز میں تعاون کے خاطر خواہ امکانات کی بھی نشاندہی کی. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے 7.8 شرح نمو حاصل کرنے میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے اہم رول کی ستائش کی ہے. نئی دلی میں کل ایف ٹی اے کے آؤٹ ریچ پروگرام سے متعلق قومی ورکشاپ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گوئل نے یہ بات کہی. انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کی بدولت ملک کے بڑے برآمدکار بننے کی راہ ہموار ہوگی. جناب گوئل نے دنیا کے ساتھ ملک کی تجارت کو فروغ دینے کی خاطر آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے ملک گیر جامع کوشش کی اپیل کی. جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اگلے کچھ سالوں میں کینیڈا، میکسیکو، چلی، جنوبی امریکی ممالک، جنوبی افریقی کسٹم یونین، خلیجی تعاون کونسل اور اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کو حتمی شکل دے گا. جناب گوئل نے مزید کہا کہ اس قدم کے ذریعے اپنی بات منوانے کی بہتر اہلیت کی بنا پر بھارت کو عالمی تجارت کے 75% حصے تک رسائی حاصل ہو جائے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کل یوکرین کی راجدھانی کیو میں یوکرین کے صدر اولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین اور روس کے مابین جاری تنازع کو ختم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے یوکرین کے اپنے ہم منصب اینڈری سیبیہا سے بھی ملاقات کی. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत मुसलसल अपने मौकिफ पर कायम है कि यह दौर जंग का दौर नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह के तनाजात के दौरान तजारती बाहरी जहाजों पर हो रहे हमलों के मसले को उजागर किया और कहा कि इससे आलमी जनूब के कई ममालिक पर मुख्तलिफ एतबार से असर पड़ा है, जिससे तेल, खाद और खाने की अशिया की कमी हो गई है। भारत को एक आलमी ताकत करार देते हुए यूक्रेन के वजीर खारजा एंड्री सिलिया ने कहा कि उनका मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को खत्म करने के लिए की गई अपील का खैर मकदम करता है। तबाकुन नेपाल तिब्बत सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1252 हो गई है। कुदरती आफात के खतरात में कमी और बंदोबस्त से मुतालिक नेपाल की अथॉरिटी एनडीआरआरएमए की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक 4216 अफराद अब भी लापता हैं। अथॉरिटी ने बताया कि चितवन जिले में 355 लाश है, नवल परासी ईस्ट से 218, नवल परासी वेस्ट से 208, जिसमें भारत से बरामद की गई 18 लाशें शामिल है और जिन्हें नवल परासी वेस्ट के सुपुर्द किया गया। नुआकोट से मिली 177 लाशें शामिल हैं। इसी तरह रसुआ जिले से 127 लाशें, गोरखा से 69, दादिम से 60 और तरुआ से 38 लाशें बरामद की। रेलवे के वजीर अश्विनी अश्विन ने कहा कि रेलवे का महकमा सलाहित में इजाफे, सिग्नलिंग में बेहतरी और खुदकार दरवाजों वालों सहूलत से लैस नई नस्ल की मसाफाती ट्रेनें मुतारफ कराने के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम कर रहा है। जनाब अश्विन ने कहा कि मुंबई में 18,000 करोड़ रूपये लागत के रेलवे प्रोजेक्टों पर काम जारी है। जनाब अश्विन मुंबई से सिंधुदुर्ग के दरमियान चलने वाली ट्रेन को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। भारत और फ्रांस ने टेक्सटाइल और फैशन शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के खातिर पेरिस में नए माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद आलमी बाजार में भारतीय टेक्सटाइल और हुनरमंदी को फरोग देना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान कृष्ण की जिंदगी और तालीमात ने भारतीय सकाफत और फलसफियाना विरासत में नई रूह फूंक की है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि श्रीमद भगवद गीता के जरिए दी गई भगवान कृष्ण की तालीमात वक्त की गर्द से पाक इंसानियत की तरगीब का जरिया बनी रहेंगी, जिससे इंसानियत को मुश्किल घड़ी में अखलाकी अकदार पर साबित कदम रहते हुए दानिशमंदाना फैसले करने मुमकिन हो सकेगा। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार रवादारी, खिदमत और फर्ज के तई वक्फ होने जैसे अकदार के तई तरगीब देता है। खवातीन के क्रिकेट में यूएई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप ए के दूसरे मैच में भारत ने हांगकांग को 137 रन से शिकस्त देकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 194 रन के हदफ का ताकुब करते हुए हांगकांग की पूरी टीम 16.2 ओवर्स में महज 56 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे कल पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने सिर्फ 64 गेंदों पर 124 रन की तूफानी इनिंग्स खेली, जिसमें 14 चौके और 7 छक्के शामिल थे। अपने शानदार इनिंग्स के दौरान उन्होंने कई आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत आज शेंजेन में मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी ली चू यू का सामना करेंगे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बार्ट डी वीवर ने मजबूत करीबी शराकतदारी की जरूरत पर जोर दिया। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की। भारत और बेल्जियम ने दिफाई ताउन के सिलसिले में माहदे पर दस्तखत किए। अगले 5 वर्षों में बाहमी तजारत को दुगना करने और सेमी कंडक्टर, अहम मदनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शुबे में ताउन को बढ़ाने से इतफाक किया। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सहमाही में 7.8% जीडीपी की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में एमएसएमईज की सताइश की। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन के सदो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। और खवातीन क्रिकेट में यूएई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप ए के दूसरे मैच में भारत ने हांगकांग को 137 रन से शिकस्त देकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजा चाहता है। हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
3: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। वित्त मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार

0: नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। श्री सोनोवाल ने कल गुरुग्राम के ऊर्जा और संसाधन संस्थान के ग्वाल पहाड़ी परिसर का दौरा किया और हरित नौवहन से जुड़ी विभिन्न पहलों की समीक्षा की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इससे त्रिपुरा के किसानों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में राजघाट समाधि स्थित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजघाट स्मारक के रखरखाव, साफ सफाई और प्रबंधन की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium exchanged several agreements including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement yesterday, Prime Minister Modi emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. Home Affairs Ministry will make available the services of Central Forensic Science Laboratories, State Forensic Science Laboratories and National Forensic Sciences University Laboratories in India for DNA profiling of first-degree biological relatives of persons who remain missing following the flash flood in Nepal. External Affairs Ministry said in a statement that first-degree biological relatives residing in India, father, mother, son, daughter or sibling, may have their biological samples collected and DNA profiles prepared at certain facilities. As advised by the Nepal police, autosomal STR DNA profiling may be undertaken for the purpose of identification, subject to the technical requirements communicated by the Nepali authorities.

0: गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है अधिकार, आवाज दी है मोहम्मद रफी ने और संगीत है आरडी बर्मन का।
1: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो

आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम को अच्छे करना सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना मोहब्बत में लुट जाना, मोहब्बत दो खजाना है कभी जो कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत

लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म शिक्षा से। आवाज दी है यशुदास ने, संगीत है पप्पी लाहिरी का और गीतकार हैं कौहर खानपुरी।

अभी आपने सुना प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, हंसी बर्मन का संगीत था। इसे सुनते हैं अगला गीत फिल्म स्वामी से, आवाज लता मंगेशकर की है और संगीत है राजेश रोशन का।

जहां अपने आप सर छुप जाते हैं उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाता है, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। तो अगर तेरे कारण ये पुराना मंदिर तीर्थ स्थान बन गया है और हजारों हजारों आंखें ऊपर उठ रही है प्रकाश की ओर, तो फिर तुझे चिंता क्यों? सर झुका ले और शांत होकर बैठ जा। समझ ले कि करने वाला कोई और है तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले और जो सौंपा गया है उस काम को कर।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत है प्यारा सा गीत। लीजिए सुनिए स्वयंवर फिल्म का अगला गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज है।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना

0: किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के लिए है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के आयोजनों को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेम में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi from today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues relating to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Suryakant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. He will meet judicial leaders from Russia, China, Egypt, Indonesia, the UAE, Belarus, Kazakhstan, South Africa, Iran and Uzbekistan. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday called upon the automotive industry to deepen localization, expand exports and prepare to serve global markets. Addressing the 66th Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, annual convention in New Delhi, he urged the industry to seize the opportunities emerging from India's expanding trade partnerships, growing domestic market and global shifts in manufacturing. He said that the automotive sector would be one of the most important drivers of India's growth story in the years to come. He stated the industry had demonstrated strong growth and that rising incomes and aspirations offered considerable scope for this growth to continue. Government e-marketplace, GEM and Textiles Committee have signed Memorandum of Understanding to boost procurement of recycled and upcycled textiles. The initiative will promote recycled and upcycled products made from pre- and post-consumer textile waste, scrap and second-hand clothes through public procurement, creating new market opportunities for enterprises in the circular textile economy. Ministry of Commerce and Industry said that MOU will create a waste-to-value-to-market ecosystem, enabling textile waste, scrap and second-hand clothes to be transformed

किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर दर्शी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों के गीले आंसू।

की बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर

दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, ना कोई खेलने वाला है बाजी और ना कोई जान सकता है।

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए AI Live News 24x7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइन न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंट्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की 4 किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप

पहली बार एक गजल पेश कर रहा हूं जो उर्दू बहर या मीटर के बजाय हिंदी छंदों के वजन पर है। उम्मीद है ये तजुर्बा आपको पसंद आएगा। मुलाहिज़ा फरमाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। श्रोताओं कुछ ही पलों में सुबह के 4 बजने को हैं, अब आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुनेंगे।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, सुबह के 4:20 हो चले हैं। ये समय है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का, जिसमें आज आप सुनेंगे सीरगाजी गोविंदराजन का राग कल्याणी में गायन। आदितान में निबद्ध रचना श्रीरंगम रंगा स्वामी पिल्लई की है। वॉल्यूम पर आपका साथ दिया है थिरुप्पर कडल S. वीरा राघवन ने।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 4:20 होने को हैं।

इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म आज यहीं पर संपन्न होता है। कुछ ही पलों में सुबह के 4:50 होने को हैं। वंदे मातरम।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और श्रोताओं आगे बढ़ने से पहले आपको प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। प्रातः 6:10 का समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें हम लेकर आते हैं भजन, शबद, नाथ और देशभक्ति संगीत। समय रहेगा प्रातः 6:10 का। वह 6:40 का समय रहेगा चिंतन का, जिसमें आज आप सुनेंगे गीता में योग का बहुआयामी अर्थ। समय रहेगा प्रातः 6:40 का। हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस आप सुन सकते हैं प्रातः 6:45 पर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 38।

छह बजकर 55 मिनट का समय रहेगा संस्कृत में समाचार का, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार के बाद 7 बजकर 10 मिनट का समय रहता है कार्यक्रम संगीतिका का। आज के इस कार्यक्रम में आप कृष्णा भजन सुनेंगे।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 7:30 पर। समाचार प्रभात समय रहेगा 8 बजे का और मॉर्निंग न्यूज आप सुन सकते हैं 8:15 पर। उर्दू में खबरों का समय रहेगा 8:30 का और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुबह सुन सकते हैं आप 8:45 पर। आज आप सुनेंगे विजय कुमार का राग गुजरी तोड़ी में बांसुरी वादन।

0: मेथी सुबह की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में
1: दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर हर सह कुर सह चटिया तुद डठे सचे पातशाह बाल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पातशाह सुशाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है सवना दिशाह सजन सचा पातशाह सुशाह

Oh, I'm gone.